0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है, जो कि दोपहर के 12 बजे तक निरंतर जारी रहेगी। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तदनुसार 14 मई 2026, आज दिन गुरुवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार, जो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है, उन्हें जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। जो व्यक्ति क्रोधित विचारों से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। चाहे आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ लें, पवित्र शब्द बोल लें और पवित्र विचार क्यों ना सुन लें, वे आपका कभी भी भला नहीं करेंगे जब तक आप उन पर अमल नहीं करते। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए कभी भी अहंकार ना करें। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वो व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। अपने उद्धार के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं प्रयत्न करें। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।
0: मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक सूक्तों पर आधारित अक्षय निधि कार्यक्रम। 7:15 पर सुने भक्ति संगीत और सुबह के 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम। आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन पर केंद्रित होगा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम बाल सभा। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे दादी नानी की कहानियां, जिसे प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी और बाल कलाकार मात्रिका। सुबह 9 बजे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज हम भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर आधारित कार्यक्रम का द्वितीय भाग सुनेंगे। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। सुबह 9:30 पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर विशेष कार्यक्रम। और सुबह 10 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है भारतीय वायुसेना आकाश के विजेता। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे दीपक नेमा और भगवती सक्सेना। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी निर्मला देशपांडे पर केंद्रित होगा। सुबह 11 बजे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम और 11:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 111 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
4: दक्षणर्थम सुवृतम विद्मनाप सस्तक्षणहरि इंद्रवाहा वृषण वसु दक्षण पितृभ्या मृभवो युवद वयस्य क्षण वत्साय मातरम सचा भुवम। कुशल विज्ञानी ऋभु देवों ने उत्तम रथ को अच्छी प्रकार से तैयार किया। इंद्रदेव के रथ वाहक घोड़े भी भली प्रकार प्रशिक्षित किए। वृद्ध माता पिता को श्रेष्ठ मार्गदर्शन देकर तरुणोचित उत्साह प्रदान किया तथा माता को बच्चे के साथ रहने के लिए तैयार किया। आनो यज्ञाय तक्षत ऋभुमद्वयः कृत्वे दक्षाय सुप्रजावतीमिषम् यथा क्षयाम सर्ववीरया विषातन्नः शर्धाय धासथा स्विंद्रियम्। हे ऋभुदेवो, हमें यज्ञीय सत्कर्मों के लिए तेजस्विता प्रधान जीवनी शक्ति प्रदान करें। श्रेष्ठ कर्मों और बल संवर्धन हेतु प्रजा को समृद्ध करने वाले पौष्टिक अन्न हमें प्रदान करें। संगठन के लिए हम में पर्याप्त शारीरिक सामर्थ्य पैदा हो। आ तक्षत सातिमस्मभ्य मृभवः सातिम रथाय साति मर्वते नरः सातिम नो जैत्रीम सम महेत विश्वहा जामी मजामिम प्रतनासु सक्षणम्। नेतृत्व करने वाले हे ऋभुवो, आप हमारे लिए वैभव, हमारे रथों के लिए सुंदरता तथा अश्वों के लिए बल प्रदान करें। समर क्षेत्र में हमारे निकटस्थ संबंधी या अपरिचित जो भी सम्मुख हो, हम उन्हें पराजित करें। हमें विजय योग्य विभूतियां प्रदान करें। ऋभुक्षण मिंद्रमा हुव ऊतय ऋभून वाजान मरुतः सोमपीतये उभा मित्रा वरुणा नूनमश्विना तेनो हिन्वन्तु सातये धिये जिशे। हम अपनी सुरक्षा के लिए ऋभुओं के साथ रहने वाले इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। ऋभु वाज मरुत दोनों मित्र और वरुण तथा अश्विनी कुमार इन सभी देवों को सोमपान के लिए आवाहित करते हैं। वे धन श्रेष्ठ बुद्धि और विजय प्राप्ति के लिए हमें प्रेरित करें। ऋभुर्भराय सम शिशातु सातिम समर्य जिद्वाजो अस्माम अविष्टु तन्नो मित्रो वरुणो माम हंता मदितिहि सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। ऋभुगण हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर दें। युद्ध में विजय दिलाने वाले वाजादि देव हमारे संरक्षक हों। मित्र वरुण आदिति सिंधु पृथ्वी और द्युलोक आदि देव हमारी कामना में सहायक हों।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 111 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: अभी आप सुन रहे थे वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। जीवन में कभी कभी चुनौतियां इतनी कठिन लगती है कि हम हार मानने के करीब होते हैं, परंतु यदि हम इन कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखें तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ऐसे ही सुंदर सकारात्मक विचारों के साथ हम शुरू करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तभी दुनिया आप पर विश्वास करती है। आत्मविश्वास सफलता का मूल आधार है। स्वयं पर विश्वास असंभव को संभव बना सकता है। खुद पर विश्वास से कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है।

क्या आपको पता है कि हर दिन सिर्फ 1% सुधार करने से हम एक साल में 36 गुना बेहतर हो सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 5 मिनट अतिरिक्त मेहनत करता है तो वो एक साल में 30 घंटे अधिक काम कर चुका होगा। ये छोटी आदतें ही बड़े सफलता की वजह बनती है।

सफल होने के लिए सिर्फ सपने देखने से ही कुछ हासिल नहीं होता, असफलता से सीखकर काम करने से ही सफलता मिलती है।

हमें सिर्फ भलाई के काम करते हुए ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। सारी बुराइयां ठीक उसी तरह दूर हो जाएंगी जैसे बहते हुए पानी में कचरा किनारे आ जाता है।

जब तक समस्याओं के हल नहीं खोजेंगे तब तक हल मिलेगा ही नहीं। लक्ष्य कभी भी बिना काम के पूरा नहीं हो सकता। हर स्थिति में काम करना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है।

जो व्यक्ति मुश्किलों से दुखी नहीं होता, सावधानी के साथ अपने काम करता है और दुखों को सकारात्मकता के साथ सहन कर लेता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर पर केंद्रित है।

0: नमस्कार, वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनकी, जिनके बारे में स्वयं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार किया था कि उन्हें विश्व के संविधानों और भारतीय कानून का अद्वितीय ज्ञान था। ये हैं विश्व प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और अर्थशास्त्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जो भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। वे संविधान की मसौदा समिति के भी प्रमुख सदस्य रहे थे और नागरिकता और मौलिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर उन्होंने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी उन्हें संविधान निर्माण में अपने से बेहतर और योग्य व्यक्तियों में से एक बताया। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का जन्म 14 मई 1883 को आंध्र प्रदेश के पुद्दूर नामक गांव में एक तेलुगु परिवार में हुआ। मद्रास शहर, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, वहां उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई कर वकालत की डिग्री प्राप्त की और मद्रास उच्च न्यायालय में एक प्रमुख वकील बने। 1929 से 1944 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने काम

अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान सभा की 9 समितियों में भागीदारी की, जिसमें मसौदा समिति और नागरिकता तथा मौलिक अधिकारों पर बनी उप समितियां शामिल थीं। अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। उस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीयों के आत्मनिर्भर विकास को बढ़ावा देना था। अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर ने अपने खाली समय का उपयोग कानून की कक्षाएं लेने के लिए भी किया था। 1930 में उन्हें दीवान बहादुर बना दिया गया। जब 1946 में उन्हें भारतीय संविधान का सदस्य चुना, तब भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता भी की थी, उन्होंने अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर को अपने से बड़ा, बेहतर और अधिक सक्षम मित्र बताया। साथ ही मसौदा समिति के सबसे योग्य और बेहतर सदस्य भी कहा था। अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करें तो वे दुबले पतले थे और उनकी ऊंचाई भी अधिक नहीं थी, किंतु संविधान सभा में उनकी मौजूदगी उनकी शारीरिक संरचना से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। संविधान सभा में जब वे बोलते थे, तब उनकी वाक्पटुता और शब्दों के चयन के साथ अपनी बात रखने के उनके अंदाज पर नियंत्रण देखने और सुनने लायक होता था। साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष के आर श्रीनिवास के अनुसार, उच्च न्यायालय की इमारत में वे अपना अलग ही प्रभाव बिखेरते थे और साथ ही कानून के क्षितिज पर उनकी चमक बिखरी रहती थी।

पल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बार के प्रमुख सदस्य और महाधिवक्ता होने के साथ एक प्रसिद्ध विधि वेत्ता भी थे। साझेदारी और माल विक्रय कानून में संशोधन के लिए वे भारत सरकार की समिति में नियुक्त किए गए थे। वे नए नए वकीलों को बहुत प्रोत्साहित करते थे और साथ ही उन्होंने अपना पुस्तकालय भी सभी के लिए खुला रखा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सक्रिय राजनैतिक जीवन नहीं था, वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल नहीं थे, परंतु संविधान सभा में नियुक्त होने के समय वे एक पूर्णकालिक अधिवक्ता थे। संविधान सभा में चुने जाने के बाद सभा में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रारूप समिति और मौलिक अधिकारों पर उप समिति सहित 9 समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने नागरिकता, मौलिक अधिकारों और आपातकाल की घोषणा पर बहस में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। संविधान सभा में अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया और 3 अक्टूबर 1953 को भारतीय संविधान के निर्माण में अपना अहम योगदान देने वाले इन विधिवेत्ता ने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पुत्र कुप्पू स्वामी ने अपने पिता की जन्म शताब्दी के मौके पर 1983 में अल्लादी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। ये ट्रस्ट संवैधानिक कानून से संबंधित विषयों पर व्याख्यान आयोजित करता है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संवैधानिक इतिहास में एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता और उदारवादी दृष्टिकोण से संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी अल्लाह दे कृष्ण स्वामी अय्यर को समर्पित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: कालीकट के अवांछित अतिथि। क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की तथाकथित खोज वास्तव में महान विजय के बजाय गहरे भ्रम और कूटनीतिक शर्मिंदगी की कहानी थी। मई 1498 में लिस्बन से 316 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वास्को डी गामा ने मालाबार तट पर अपना लंगर डाला। हालांकि पश्चिम के इतिहास में इसे एक महान उपलब्धि माना जाता है, लेकिन पश्चिम और पूर्व की इस पहली मुलाकात की हकीकत तार्किक रूप से बेतुकी थी। पुर्तगाली दल हिंद महासागर के धार्मिक राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह अनजान था। यात्रा के इतिहासकार अल्वारो वेल्हो ने दर्ज किया कि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि कालीकट शहर ईसाइयों द्वारा बसा हुआ था। पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को, चर्च, स्थानीय सामाजिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। वे अपनी शुरुआती रिपोर्टों में हिंदुओं या बौद्धों का उल्लेख तक करना भूल गए। गलतियों का ये सिलसिला तब और बढ़ गया जब गामा ने अपने पहले दूत के रूप में जोआओ नुनेस नामक एक सजा याफ्ता अपराधी को तट पर भेजा। नुनेस का सामना किसी आदिम स्थानीय व्यक्ति से नहीं बल्कि ट्यूनीशिया के दो व्यापारियों से हुआ जो कॉलिस्टिलियन और जेनोइस भाषाएं बोल सकते थे। उन्होंने पुर्तगाली दूत से जो पहला सवाल पूछा वो इतिहास में शाही अहंकार पर सबसे प्रसिद्ध प्रहार बना हुआ है। शैतान की कसम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जब गामा कालीकट के सामुद्री राजा जामोरिन से मिलने पहुंचे तो उनकी बेरुखी और बढ़ गई। पुर्तगाली अपने साथ उपहारों के धारीदार कपड़े, टोपियां, मूंगे की मालाएं, हाथ धोने के बर्तन, तेल और शहद लाए थे। ये उपहार इतने मामूली थे कि स्थानीय अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने गामा को बताया कि मक्का का सबसे गरीब व्यापारी भी इससे कहीं अधिक प्रभावशाली उपहार पेश करता है। राजा के अधिकारियों ने तिरस्कार के साथ कहा कि पुर्तगाल के राजा के पास इतने अमीर शासक को देने के लिए कुछ नहीं है। अंततः गामा को एक शक्तिशाली दूत के बजाय भ्रमित यात्री के रूप में देखा गया। पुर्तगालियों को अत्यधिक संदेह की दृष्टि से देखा गया। खुद गामा ने हमले के डर से अपनी यात्रा के दौरान जमीन पर पैर रखने से मना कर दिया। आपसी अविश्वास इतना गहरा था कि कोई भी स्थिर व्यावसायिक संधि नहीं हो सकी। अगस्त 1498 में जब बेड़ा रवाना हुआ तो वे समुद्र के स्वामी के रूप में नहीं बल्कि अवांछित घुसपैठियों के रूप में निकले। इस पहले संपर्क ने उस विरोधाभास को उजागर किया जिसने शुरुआती पुर्तगाली एशिया को परिभाषित किया। उन्होंने ऐसी दुनिया को खोजा था जो कभी खोई ही नहीं थी बल्कि उनकी आमद के प्रति उदासीन थी और उनके शहद और बर्तनों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर,
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे दादी नानी की कहानियां, जिसे प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी और बाल कलाकार मातृका।
0: ये प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है दादी नानी की कहानियां।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते, और बच्चों के मम्मी पापा को भी मनीषा का नमस्कार। बाल सभा जैसे ही शुरू होती है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रेडियो के थोड़ा सा और करीब आ जाते हैं ये सोचते हुए आज कौन सा विषय है। आज बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारा और बहुत जानकारियों से भरा हुआ विषय है बच्चों। आज हम आपकी दादी नानी की कहानियों की बात करने वाले हैं, और आज मैंने इसीलिए बच्चों के मम्मी पापा को भी नमस्ते किया है, क्योंकि ये हर उम्र के इंसान से जुड़ा हुआ विषय है, जिसे सुनते ही हमारे मन में बचपन की ढेर सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और आज का विषय है नानी दादी की कहानियाँ। अब देखिए ना दोस्तों, समय कितना बदल गया है। पहले शाम होते ही घरों में बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी, आंगन में चारपाइयाँ डाली जाती थी, रसोइयों से रोटियों की खुशबू आने लगती थी, और रात का सबसे सुंदर समय होता था जब बच्चे अपनी दादी, अपने दादा या फिर नाना नानी के आसपास बैठकर कहानियां सुनते थे। कोई बच्चा दादी की गोद में सिर रखे होता था, कोई तकिए को पकड़कर बैठा रहता था, कोई बीच बीच में सवाल पूछता था, फिर क्या हुआ, और दादी भी कहानी ऐसे सुनाती थी जैसे सब कुछ ना उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। ऐसे बताती थी हर बात को, लगता था जैसे सामने आकर खड़े हो गए हैं किरदार। लेकिन आज वही घर, वही बच्चे, पर माहौल बिल्कुल बदल गया है। अब रात को बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है, कानों में ईयरफोन होते हैं, आंखों के सामने स्क्रीन होती है। कहानियां अब सुनाई कम जाती हैं, दिखाई ज्यादा जाती हैं। पर क्या सचमुच मोबाइल किए ये छोटे छोटे वीडियो उस अपनेपन की जगह ले सकते हैं जो दादी की आवाज में होता था? क्या कोई कार्टून उस एहसास को दे सकता है जो नानी की गोद में सिर रखकर मिलता था? या कोई पीछे से एक आवाज मोबाइल में ऐसी आ सकती है, अच्छा जरा पास में आ जाओ, आज कहानी सुनाने के बाद तुम सबको बेसन के लड्डू दूंगी, है ना? नहीं आएगी ना ऐसी आवाज, नहीं आएगी, क्योंकि इंसानी रिश्तों में और मशीनरीज में कुछ बेसिक अंतर होते हैं बच्चों। और आज हम इन्हीं बातों पर लंबी और प्यारी बातचीत करेंगे। और आपको पता है, इस बातचीत में मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में भी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, मेरी दोस्त मातृका मौजूद है। मातृका, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्ते दीदी, और बाल सभा सुन रहे सभी दोस्तों को मेरा भी बहुत सारा प्यार। दीदी, आज का विषय सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से अपने नानी के घर पहुंच गई हूँ। मुझे आज भी याद है, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होते ही मैं सबसे पहले यह पूछती थी कि हम नानी के घर कब जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पहुँचते थे लगता था जैसे पूरी दुनिया बदल गई। ना कोई जल्दी, ना कोई टेंशन, बस खेलना, हंसना और रात को कहानी सुनना। मेरी नानी हर रात नई नई कहानी सुनाती थी। मैं कई बार सोचती थी कि आखिर उनके पास इतनी सारी कहानियाँ आती कहाँ से हैं? कभी राजा रानी की कहानी, कभी जंगल की कहानी, कभी अपने बचपन की बातें। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वो हर कहानी को इतने भाव से सुनाती थी कि लगता था जैसे सब कुछ हमारे सामने हो रहा है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो मातृका तुम। मुझे तो लगता है कि ये दादी नानी की कहानियाँ सिर्फ शब्दों में गुथी हुई पूरे संसार भर के लिए एक माला के समान है। एक ऐसा संसार है जहाँ बच्चे कल्पना करना सीखते हैं, जहाँ एक छोटी सी कहानी के जरिए जीवन की बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा दी जाती हैं। और मुझे तो याद है, पता है क्या?
3: क्या दीदी?
0: मेरी दादी रात को खाना खिलाने के बाद सबको बोलती थी, सारे भाई बहन मेरे पास आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके इधर आइए सब लोग। फिर हम लोग भी भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ भड़ सारा काम खत्म करते थे। और अगर किसी दिन दादी ने ये कह दिया कि वो बहुत थक गई हैं और वो कल कहानी सुनाएंगी, तो बस हम सब के चेहरे लटक जाते थे मातृका। और फिर हम उन्हें मनाते थे, दादी प्लीज छोटी सी कहानी सुना दीजिए, छोटी सी दादी, छोटी सी। और फिर बस दादी मुस्कुरा देती थी, अच्छा चलो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, ज्यादा पीछे मत पढ़ना। लेकिन पता है बच्चे, वो छोटी कहानी भी इतनी मजेदार होती थी कि कब वो आधा घंटा निकल जाता था हम लोग को पता ही नहीं चलता था।
3: दीदी मुझे लगता है कि कहानियों का सबसे सुंदर हिस्सा ये होता था कि उनमें सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था, हर कहानी कुछ सिखा कर जाती थी। जैसे मेरी नानी एक कहानी सुनाती थी दो दोस्तों की, एक दोस्त हमेशा मेहनत करता था और दूसरा काम से बचता था। शुरू में तो आलसी दोस्त को बहुत मजा आता था, लेकिन बाद में जब मुश्किल समय आया तो वही मेहनती दोस्त सबकी मदद कर पाया। उस दिन नानी ने हमसे कहा था, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और सच बताऊं दीदी, उस कहानी के बाद जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, मुझे वही कहानी याद आ जाती थी।
0: अच्छा चलो, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, पर मैं बताऊं मेरी दादी का क्या स्टाइल था।
3: क्या दीदी?
0: उनका स्टाइल ये था, वो अमिताभ बच्चन की तरह धीरे से भारी आवाज में कहती थी, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। आवाज बनाकर बोलती थी तो हम लोग हंसने भी लगते थे, लेकिन बस तुरंत सब भागे भागे जाते थे। मुझे आज भी याद है मातृका, कई बार ऐसा होता था कि छत पे हम लोग लेटे हुए हैं, नींद आ नहीं रही है, मच्छर काट रहे हैं, मच्छरदानी में और गर्मी लग रही है, माँ को कह रहे हैं माँ प्लीज पंखा चला दीजिए, लेकिन लाइट ही नहीं है, क्या करें। तब फिर वही दादी की आवाज आती थी, कहा ना मैं कहानी सुना रही हूँ। तो मैं कहती थी, दादी अपनी आवाज में बोलिए ना, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चों के साथ समझाते हुए, डांटते हुए, बहुत प्यार से वो कहानी ऐसे सुनाती थी कि अगर तो घर में किसी बच्चे की झूठ बोलने की आदत है तो वो मन ही मन ऐसी कहानी बना देती थी कि झूठ बोलने की आदत बुरी है, हमें ये पता लग जाता था। अगर घर में किसी बच्चे को डर लग रहा है ना, तो हमारी दादी फटाक से बहादुरी की कहानी सुना देती थी। और कहानी सुनाते सुनाते वो हमेशा हमको एक मंत्र भी सुनाती थी। सुनाऊं तुमको?
3: हाँ प्लीज दीदी।
0: वो हमेशा एक मंत्र सुनाती थी, जय बाबा हनुमान, 12 वर्ष के जवान, हाथ में गदा मुंह में पान, जिधर देखो हनुमान ही हनुमान। तो जब मैं ये मंत्र सुनती थी तो मैं कहती थी, अच्छा हर तरफ अगर ईश्वर है तो फिर तो हमें डर नहीं लगना चाहिए। तो ये हमने कहानी से ही सीखा कि कैसे बातों ही बातों में बहादुरी की कहानी सुना दिया जाए। ऐसी कोई बच्चा अगर घर में लालच कर रहा है, जैसे गर्मियों की छुट्टी में क्या हुआ मातृका, सब बच्चे इकट्ठे हुए है ना, अब कोई चीज़ खाने की आई तो कोई बच्चा कह रहा है ये मैं ज़्यादा लूँगा, कोई बच्चा कह रहा है मुझे कम मिला, फिर पता चला थाली के ऊपर ही सब इकट्ठे झपट पड़े। तो हमारी दादी तुरंत उसी रात को ना एक लालच वाली कहानी सुना देती थी, तो हम सब बड़े शर्मिंदा होते थे कि अरे हम सुबह ही तो आम पे इतना झगड़ा कर रहे थे। तो कुल मिला के वो कहानियाँ नहीं थी दरअसल बेटा, वो क्या थी, वो अपने परिवार को करीब लाने का एक साधन भी थी। और आजकल तो तुमने भी देखा होगा ना मातृका, ऐसा कई बार होता है कि एक ही घर के सब लोग साथ होते हैं फिर भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता, तुमने देखा है ऐसा?
3: हाँ दीदी, आपको पता है मेरे जब कजिन्स मिलते हैं, हम लोग सब साथ में बैठते हैं, तो कोई कजिन मोबाइल चला रहा होता है, कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है। मेरी दादी आती हैं, जब उनसे बोलती हैं कि मोबाइल रख दो, दो बार बोलने पे नहीं सुनते, वो तीसरी बार सुनते हैं और मुझे इतना बुरा लगता है।
0: ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपके बुजुर्ग, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी अगर कुछ बोल रहे हैं तो बताइए मातृका ने कितनी बड़ी बात कही कि एक बार में नहीं सुन रहे हैं, दो बार में नहीं सुन रहे हैं, तीसरी बार उन लोगों को कहना पड़ रहा है। कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। पर अब क्या, अब तो हम लोग वहां पहुंच गए हैं जहां हम मातृका से कोई कविता सुनेंगे। तो मातृका आज तुम क्या सुनाने वाली हो?
3: दीदी आज मैं कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है मातृभूमि।
0: ठीक है
3: दीदी, क्या मैं अपनी कविता शुरू करूं?
0: बिल्कुल मातृका, स्वागत है आपका।
3: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमन छटा निराली पग पग ठहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंश पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
0: वाह वाह मातृका, गौरव का भाव भर रहा था जब तुम ये सुना रही थी तब तुम्हारे मन में?
3: हाँ दीदी, बहुत ज्यादा।
0: और यही खास बात है जो हम कविताओं से और कहानियों से सीखते हैं कि जब हम किसी ऐसी ओजपूर्ण कविता को सुनाते हैं तो हमारे कहने का तरीका अलग हो जाता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, कितना अच्छा लगता है जब हम देश की बात करते हुए गर्व से भर जाते हैं। मातृका, बहुत अच्छी कविता सुनाई तुमने। अब हम आगे अपनी बातों पर आए, उससे पहले मैं हर सप्ताह अपने बच्चों को कुछ सुना रही हूँ, तो आज बचेंद्री पाल जी के जिस अध्याय पे हम पहुँच गए हैं वो है भागीरथी सात बहनें। सुनोगी?
3: हाँ दीदी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी यह सुन के।
0: तो फिर अब शुरू करते हैं। बच्चों, आप भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे, ये मुझे पता है। जिस ढंग से मेरा पर्वतारोहण का जीवन ढल रहा था मैं उससे प्रसन्न थी, लेकिन इससे मेरी या मेरे परिवार की आर्थिक कठिनाइयों का समाधान नहीं हुआ। तब फरवरी 1983 में नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन NAF के निदेशक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नेहरू संस्थान के प्रशिक्षकों के लिए एक साहसिक कोर्स चलाने के लिए उत्तरकाशी आए और उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए मेरे सहित सात स्थानीय और शिक्षित महिलाओं का चयन किया। मैंने इस प्रतिष्ठित दक्ष तथा वरिष्ठ पर्वतारोही में भरोसा कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया कि मेरे माता पिता परिवार के आर्थिक बोझ को कम करने की दृष्टि से मुझ पर विवाह करने के लिए दबाव डाल रहे थे। मैंने उनसे ऐसे लोगों के लिए जो निर्धन और जीविका रहित थे कुछ रास्ता निकालने के लिए कहा, ताकि पर्वतारोहण में हमारी रुचि और प्रतिभा का उपयोग हो सके। सुना मातृका?
3: हाँ दीदी।
0: कि कैसे एक ऐसी बच्ची जो खुद गरीबी में अपने जीवन को गुजार रही है वो दूसरे बच्चों के लिए भी साथ साथ सोच रही है और ब्रिगेडियर जो आने वाले थे उनसे ये बात साझा करना चाहती है। दूसरे दिन प्रातः ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने हमें भागीरथी सेवन सिस्टर एडवेंचरस क्लब शुरू करने के लिए NAF के आवेदन पत्र भरने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि ये लड़कियों और महिलाओं की एक अलग प्रकार की संस्था होगी जो जोखिम के कार्यों में लगी लड़कियों की सहायता करेगी। उन्होंने वादा किया कि यह योजना प्रशिक्षित लड़कियों और महिलाओं की आर्थिक चिंताओं का ध्यान रखेगी और इस बात से हमारा मनोबल आसमान छूने लगा और मैं मन लगाकर गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण कार्य में जुट गई। सात बहनों में से प्रत्येक ने अच्छा नाम कमाया। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बताया, हमारा प्रदर्शन पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर था। हमारे प्रवास के अंतिम दिनों तक ब्रिगेडियर हमारे लिए एक पिता की तरह हो चुके थे और मेरे सुझाव पर हमने उन्हें छोटे चाचा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जब छोटे चाचा ने 28 फरवरी 1983 को उत्तरकाशी छोड़ा, तब हम सब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने 3 महीने के अंदर लौट आने का वादा किया, जिससे वो हमारे साहसिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए मदद कर सके। उसी दौरान हमें स्थानीय बच्चों को चट्टानों की चढ़ाई के लिए ले जाने के लिए कहा गया। हमारे अपने कार्यक्रमों को चलाने की संभावना काफी रोमांचकारी थी। मैं इसकी तैयारी कर चुकी थी। नकुरी से लेकर तेखला में चट्टान आरोहण क्षेत्र तक घूमने और जॉगिंग का अभ्यास करती थी। ये रास्ता एक तरफ से 18 किलोमीटर पड़ता था। इस अभ्यास ने मुझे आरोहण की भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाने में सहायता की। वायदे के अनुसार ब्रिगेडियर जून में आ गए। वो अपने साथ हमारे लिए शिविर लगाने और ट्रैकिंग उपकरणों के 25 सेट साथ लाए, जिससे कि लड़कियों के लिए 2 साहसिक कोर्स साथ साथ चलाए जा सके। सेना की सहायता से उन्होंने तेखला में एक छोलदारी शिविर लगाने की व्यवस्था भी की। पहले समूह में जमशेदपुर से आई 13 लड़कियां थीं। दूसरे दल में मेघालय से आई शिलोंग की 15 चुस्त खासी लड़कियां थीं। प्रत्येक कोर्स में छात्रवृत्ति के आधार पर स्थानीय लड़कियों को सम्मिलित कर 20-20 के समूह बनाए गए। मुझे कोर्स के निदेशक और विजया पंत को उपनिदेशक बनाया गया। क्वार्टर मास्टर तथा चिकित्सा सहायक के कार्य बारी बारी से दूसरी 7 बहनों को सौंपे गए। कोर्स में काम करने के लिए हमें कुछ मानदेय भी दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्नता थी। चट्टान आरोहण के लिए 3 दिन रखे गए थे, 1 दिन इसके बाद नदी पार करने के लिए तथा शिविर के लिए था। इसके अतिरिक्त पर्वतारोहण की रस्सियों का उपयोग, रसोई बनाना तथा बीहड़ जंगल में सुरक्षा प्रदान प्राप्त करना भी सिखाया गया। हमारे साथ एक वन्य रेंजर था, जिसने हमें उस क्षेत्र की वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया। 2 छोटी और 1 लंबी यात्रा सहित हमने लगभग 150 किलोमीटर का रास्ता तय किया और 2500 से 3000 मीटर तक की चढ़ाई की उतराई की। लंबी यात्रा के दौरान हमारा सर्वोच्च शिविर लगभग 3000 मीटर पर प्राकृतिक सौंदर्य स्थली डोडी ताल में था। यहाँ पर ठंडे पानी और मछलियों से भरपूर एक सुंदर झील के चारों ओर आकर्षक इंद्रधनुषीय आभा लिए लंबे घने हरे

0: तथा आरोहण संबंधी विभिन्न विषयों पर उनकी बातें। जब भी छोटे चाचा चिल्लाते, लड़कियों एक और कहानी सुनो, देखो फिर वही बात आ गई। मातृका जो ब्रिगेडियर जी थे, है ना, ज्ञान सिंह जी, जिन्हें ये छोटे चाचा कहती थी, वो भी इन्हें कहानियां सुनाते थे। किसकी? पर्वतों की कहानियां। और खास बात देखिए बच्चों, मैंने बात की जब शुरुआत की थी तब आपसे कहा था कि जो दादी नानी हैं वो हमेशा आपके व्यवहार को देखकर तुरंत कहानियां भी बना लेती थी, है ना, कि अगर कोई बच्चा लालच कर रहा है तो ऐसी कहानी जिसमें लालच दूर हो जाए, कोई डर रहा है तो ऐसी कहानी जिससे डर दूर हो जाए। आप ये देखिए कि उन लोगों की सोचने समझने की क्षमता और बच्चों को समझाने का तरीका कितना अच्छा था। वैसे ही ये जिन्हें छोटे चाचा कह रही हैं, उन्होंने भी क्या किया कि ऐसी कहानियां सुनाई जो पहाड़ और पर्वत के अनुकूल हों। जुलाई 83 के मध्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, प्रसिद्ध पर्वतारोही चंद्रप्रभा अटवाल, विजया पंत और मुझे लेकर दिल्ली गए। इस समय तक चंद्रा दीदी भागीरथी सेवन सिस्टर्स एडवेंचरस क्लब की अध्यक्ष और मैं उपाध्यक्ष चुन ली गई थी। राजधानी में छोटे चाचा ने टेलीविजन के लोकप्रिय कार्यक्रम घर बाहर में हमारे इंटरव्यू की व्यवस्था कर दी। 3 राष्ट्रीय दैनिक पत्रों में भी हमारा साक्षात्कार आया। हमारे फोटो सहित ये साक्षात्कार और लेख दूसरे दिन सवेरे के अखबार में छपे। और जब हम जनपद में खरीदारी कर रहे थे तब अनेक युवाओं ने रोका और पूछा, क्या मैंने तुम्हें टीवी पर नहीं देखा था? अथवा क्या तुम वही महिला हो जिनके चित्र मैंने अखबार में देखे हैं? हमारे छोटे से क्लब भागीरथी सेवन सिस्टर एडवेंचर क्लब ने राजधानी में पहले से ही रंग जमाना शुरू कर दिया था। तो ये था वो अध्याय जो आज आपको मुझे बछेंद्री पाल का सुनाना था। अब मातृका, पहले ये बताओ कि तुम्हें बछेंद्री पाल की ये कहानी कैसी लगी, पर्वतारोहण की, वो जो मेहनत कर रही थी, कैसे उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियों से लड़ा, कैसा लगा?
1: दीदी, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे इससे एक सीख भी मिली कि हमको कभी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए।
0: और मेहनत के बीच में यदि आपकी आर्थिक स्थिति बच्चों आए ना, तो कभी हमें झिझकना नहीं चाहिए आपको सही व्यक्ति देखकर। क्योंकि देखिए बच्चों, एक और बात इस कहानी से हमें सीखने को मिली कि ब्रिगेडियर को उन्होंने छोटे चाचा पहले दिन से कहना शुरू नहीं किया था। ब्रिगेडियर को उन्होंने छोटे चाचा बहुत दिन बाद कहना शुरू किया, वरना पहले तो सर कहती होंगी, है ना। जब उन्हें लगा कि इनसे रिश्ता भी अच्छा है और इन्हें हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बता सकते हैं, तब बछेंद्री पाल ने यह निर्णय लिया होगा कि उन्हें छोटे चाचा कहकर अपने घर की आर्थिक स्थिति बताई जाए। और देखिए, अगर उस वक्त बछेंद्री पाल शर्मा जाती तो क्या होता? तो क्या वो बनती पर्वतारोही? क्या वो सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच पाती? नहीं, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति उनके आड़े आ जाती। लेकिन वो इसको सही व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई शर्माई नहीं, कोई झिझकी नहीं, बल्कि सही वक्त सही व्यक्ति देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे ये बात इन्हें बता देनी चाहिए। तो आपकी जिंदगी में कहानियां छोटे छोटे अनुभव से लेकर बड़ी बड़ी समझदारी तक बहुत काम आती हैं बच्चों। अब वापस लौटे मात्र का विषय पर।
1: हाँ दीदी, बट विषय पर लौटने से पहले मैं विषय की ही बात करना चाहूँगी।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई। बताओ क्या कहना चाहती हो?
1: दीदी, आपने जो मुझे वो जय बाबा हनुमान वाली वो मंत्र बताया था ना, आपने मुझे एक इतना बड़ा सल्यूशन दे दिया, मतलब मैं क्या बताऊं। मुझे हमेशा जब मेरी मम्मी ऑफिस जाती है या फिर कहीं काम करने जाती हैं, तो मुझे हमेशा डर लगता है कि कोई चोर ना घुसाए, कोई भूत ना आ जाए, मुझे ऐसे बहुत डर लगता है। और आपने तो मुझे आज इतना बड़ा सल्यूशन दे दिया, अब मुझे जब भी डर लगेगा, मुझे तो आपने बता दिया कि हमारे आसपास भगवान जी रहते हैं, तो अब मुझे जब भी डर लगेगा मैं बोलूँगी जय बाबा हनुमान, 12 वर्ष के जवान, हाथ में गदा मुँह में पान, जिधर देखो हनुमान ही हनुमान।
0: बिल्कुल बच्चों, आपने भी यही करना है कि आप जिनकी भी पूजा करते हैं, है ना, आप जिनसे भी हिम्मत का जो भी आपके लिए स्रोत है, आपके माता पिता हों, आपके दादी बाबा हों, या ईश्वर, या कोई ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें आप बहुत कुछ मानते हैं, आप उनको याद करिए और सच मानिए, आपका डर रफू चक्कर हो जाएगा। तो मातृका, अच्छा लगा मुझे कि तुमने स्टूडियो में बैठकर सिर्फ इस कार्यक्रम में ही हिस्सा नहीं लिया बल्कि अपनी लाइफ के लिए कुछ सोल्यूशन भी लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज बच्चों हम जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ना, उतनी ही तेज़ी से कहीं ना कहीं रिश्तों की गर्माहट थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। शायद यही वजह है कि आज बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बच्चों के मुंह से सुनती हूँ मातृका कि उनको ना अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि पेरेंट्स ऑफिस में हैं और वो लोग अकेले हैं। ऐसे में जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं ना, तो हम दिमागी रूप से थकने लगते हैं, अकेले पढ़ने लगते हैं, या फिर हम पूरे टाइम टीवी देखते रहें। इसलिए बेहतर होता है हम कहानी की किताब पढ़ें। अगर हमारे पास कोई नहीं है ना बड़ा बुजुर्ग सुनाने के लिए, तो बच्चों आप एक और काम कर सकते हैं कि आप कहानियों की अच्छी अच्छी किताबें खरीदिए, और आप जब वो कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और गर्मियों की छुट्टी में ये तय कीजिए कि आपको अपने दादी दादा के पास या फिर नाना नानी के पास ज़रूर जाना है, ताकि आप उनसे वो कहानियाँ, वो वक्त देख सको, सुन सको, जो हम सब ने देखा है कि अगर लाइट चली गई तो कहीं से एक दिया जला लिया या लालटेन जला ली, और फिर सब आसपास बैठ गए, पीछे से झींगरों की आवाज़ आ रही है, कभी हवा चल रही है, कभी मज़े आ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। और हाँ, रात में सब लोग नीचे गए, जल्दी से कोई नमकीन चूड़ा ये सब ले आए और फिर खाने लगे। तो ये सब चीज़ें ना आपको साथ रहने का मज़ा, आनंद, ये सब कुछ कहानियाँ सुनते सुनाते आता है।
1: हाँ दीदी, और सबसे मज़ेदार बात ये होती थी कि डर भी लगता था और मज़ा भी बहुत आता था। मेरी नानी भी कभी कभी ऐसी कहानियाँ सुनाती थी कि मैं रात को पानी पीने भी अकेले नहीं जाती थी, फिर मैं मम्मी को उठाकर ले जाती थी।
0: बिल्कुल ऐसा तो हुआ ही होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि अगर हमारे जो भाई बहन हैं जो बाहर से आते हैं, बुआ के बच्चे हैं या ताऊ जी के बच्चे हैं, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा शरारती बच्चा ज़रूर होता था जो कहता था मैंने भूत बंगला देखा है। भले ही वो कुछ नहीं होता हो, लेकिन वो सब बच्चों को डराने का काम करता था। एक और बात बहुत अच्छी होती थी मातृका की, इससे हमारी भाषा बहुत सुधरती थी, हम सुनना सीखते थे, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, हमारे दादी दादा ने, हमारे नाना नानी ने हमको संवेदनशील बनाया है, हमें सुनने की आदत डाली है, हमें दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने के तरकीब सिखाई है। क्योंकि कहानी सुनते सुनते बच्चा हर किरदार के साथ जुड़ता है, वो सोचता है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता।
1: दीदी, आजकल बहुत सारे बच्चों को हिंदी बोलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन जो बच्चे अपने दादा दादी के साथ समय बिताते हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो रोज नई नई बातें सुनते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं।
0: कितनी अच्छी बात कही है मातृका तुमने। तुम्हें पता है क्या हुआ, एक बार मैंने कहा कि मेरे इस बार बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो मेरी नानी ने तुरंत मुझसे कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं बहुत देर तक अपनी माँ से पूछती रही इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, लेकिन दरअसल मुहावरों में कही हुई बातें, कहावतें, ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं हमारी भाषा को समृद्ध करती थी, और आज भी कर सकती हैं अगर आप बच्चों अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएं।
1: दीदी, आज मैं घर जाकर सबसे पहले अपनी नानी को फोन जरूर करूंगी और उनसे कहूंगी कि अगली बार मिलने पर मुझे फिर से कहानी सुनानी है।
0: बिल्कुल, तो बच्चों अब चलते चलते हमारा संकल्प लेने का समय आ गया है। जल्दी से धीमे से संगीत के साथ हम सब आंख बंद कर लेते हैं। आप सब आंख बंद करके ये सोचिए कि अब से घर में जो भी बुजुर्ग हैं, हमें उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें ज़रूर करनी है, उनसे कहानियाँ ज़रूर सुननी हैं। अगर वो आपके पास नहीं हैं, तो आप सबको उन्हें हर रोज़ फ़ोन लगाना है, फ़ोन पर बात करनी है। जब भी आपके घर में कोई भी बुजुर्ग आए, तो आपको उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, उनकी बात एक बार में माननी है। उन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं देना है। उनकी दवाइयों का ख्याल, उनकी सेहत का ख्याल रखने में आपको मदद करनी है। और बस इन्हीं संकल्पों के साथ अब समय आ गया है कि हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें, ठीक है? लेकिन बच्चों, आज रात को सोने से पहले क्या करना है? अगर नानी नाना या दादी दादा आपके पास नहीं है तो अपनी मम्मी पापा से कहिए कि आज हम तभी सोएंगे जब आप हमें एक कहानी सुनाएंगे। और यकीन मानिए, ये आज की रात जो आप शुरुआत करेंगे वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक बहुत खूबसूरत आदत में बदल जाएगी। तो बस अब चलते हैं, मातृका चले अब?
1: हाँ दीदी।
0: तो बच्चों, अब अनुमति दीजिए हमें बाल सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। आप सभी को मनीषा का
1: और मातृका का
0: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व का। इस कार्यक्रम में आज हम भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर आधारित कार्यक्रम का द्वितीय भाग सुनेंगे। जानकारी दे रहे हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले।
3: बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
4: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, कार्यक्रम के पिछली कुछ कड़ियों से हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के इतिहास की उन घटनाओं और उन महत्वपूर्ण मोड़ों की, जिसके कारण हमारे देश की सशस्त्र सेनाएं आज के इस प्रतिष्ठित मुकाम पर पहुंची हैं। श्रोताओं, ऐसा ही एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। जैसा कि हमने कार्यक्रम की पिछली कड़ी में इसका जिक्र भी किया था कि इस युद्ध के होने के क्या कारण थे और ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत ने इस युद्ध में ऐसी निर्णायक भूमिका निभाई, जिसके कारण एक नए देश यानी बांग्लादेश का जन्म हुआ। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि इस युद्ध की विजय में हमारी सेना के तीनों अंगों ने अपने शौर्य और पराक्रम का जौहर किस तरह दिखाया कि मात्र 14 दिनों के भीतर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए इससे जुड़े हर तथ्य को लेकर हमारे बीच एक बार फिर उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
5: जय हिंद श्रोताओं। 71 का जो युद्ध हुआ था
4: जी,
5: उसमें जो हमारे को विजय हासिल हुई थी, उसमें तीनों जो अंग हैं सेना के
4: जी,
5: आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी जो ज्वाइंटमैनशिप थी वो काफी यूनिक थी
4: जी।
5: वाजिब है कि इसी कारण से जो है हमें विजय भी प्राप्त हुई
4: जी,
5: है
4: बिल्कुल।
5: तो इन तीनों अंगों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था
4: जी।
5: इसको हम विस्तृत में जानने के लिए मैं चाहूंगा कि हम एक एक करके, जैसे आज हम इंडियन एयरफोर्स का जो रोल था उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे
4: जी। बिल्कुल, जैसा कि उसका तो आदर्श वाक्य है सर कि नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी गौरव के साथ आकाश को छूना।
5: बिल्कुल सच कहा आपने, बिल्कुल सही कहा
4: जी।
5: यही जो विक्ट्री है उन्होंने प्राप्त करी
4: जी, बिल्कुल गौरव के साथ।
5: बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स जो है इट प्लेड ए मेजर रोल ड्यूरिंग 71 वॉर
4: जी।
5: उनका जो सपोर्ट था आर्मी को ग्राउंड वॉरफेयर में और नेवी को सी में, इट एक्चुअली टर्न टू बी ए विनिंग फैक्टर फॉर दिस वॉर। तो 71 में अगर हम देखें जो इंडियन एयरफोर्स थी उसका एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन हो चुका था
6: जी।
5: और वो एक काफी फॉर्मेडेबल फोर्स बन चुकी थी जिसमें कि मतलब आपको बताना चाहूंगा कि वो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स हो चुकी थी, यानी कि यूएस से यूएसएसआर चाइना और फ्रांस के बाद जो है
6: भारत का नंबर
5: भारत
6: था।
5: की एयरफोर्स का नंबर आता था। एंड इंडियन फोर्स हैड अराउंड 39 स्क्वाड्रन्स एट दैट टाइम, जिसमें से कि 5 बॉम्बर स्क्वाड्रन्स थे और इसमें से जो 39 में 15 जो स्क्वाड्रन्स थे उनके पास सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स के थे।
6: अच्छा जी।
5: क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चलने वाले जो होते हैं
6: जी।
5: और हमारे को जो देश में जो प्रोटेक्शन के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जिसमें कि हमें दुश्मन के आने वाले कोई जहाज है या मिसाइल्स उसके बारे में पता चल जाता है
6: जी।
5: और ये हमारे देश की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एयरफील्ड्स के ऊपर इम्पोर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस जो होते हैं वहाँ लगे होते हैं सब जगह पे, तो इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट था उस समय।
6: ये भी सर इंडियन एयरफोर्स का ही हिस्सा
5: जी, इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होता है। तो इसमें जो रेडार कंट्रोल जो गन्स थी और सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह थी वो इंडक्ट हो चुकी थी, तो उस कारण से सिस्टम हमारा काफी मजबूत था। और इसके अलावा एयरफोर्स में जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, हैप्टर्स थे, मैरिटाइम रेकी स्क्वाड्रन थी उनके इन्वेंट्री में, तो इन सब के कारण जो है जो इंडियन एयरफोर्स थी वो एक बहुत ही इफेक्टिव आर्म बन चुकी थी,
6: सशक्त वायुसेना
5: थी, सशक्त वायुसेना थी
6: जी।
5: अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें उस समय पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 13 स्क्वाड्रन थी जिसमें से कि 12 उसने वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय करी हुई थी और एक जो है यानी बांग्लादेश में स्क्वाड्रन थी। एंड कंपैरेटिवली जो इंडियन एयरफोर्स थी उसके बाद 28 स्क्वाड्रन थी जो वेस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉयड थी और 11 ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉयड थी। तो इंडियन एयरफोर्स हैड ए प्रॉपर डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। जब ये युद्ध शुरू होने वाला था तो इंडियन एयरफोर्स हैड वेरी वेरी क्लियर कट टास्क ग्राउंड पे जो फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एब्सोल्यूट एयर डोमिनेंस क्रिएट करना है। एंड उसके लिए जो है हमको अपने जितने ऑपरेशंस हैं काउंटर ऑपरेशंस हैं वो सब करने हैं। अब उनके जो एयर बेसिस हैं उनकी सुरक्षा प्रॉपर करनी है और नेवी को जो है सपोर्ट देना है बाय प्रोवाइडिंग मैरिटाइम सपोर्ट देना है उनको और जो भी मतलब आर्मी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट है जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह प्रोवाइड करने हैं वो दीज टास्क वर क्रिस्टल क्लियर एंड दीज ऑब्जेक्टिव वर क्रिस्टल क्लियर एयरफोर्स। और इसके लिए काफी थॉरो प्लानिंग प्रिपरेशन हो चुका था। तो हुआ फिर वही कि जैसे हमने जिक्र किया था कि स्कर्मिशेस बढ़ती गई और नवंबर के बाद जो है टेंशन काफी बढ़ गया था दोनों कंट्रीज में और 3 दिसंबर को वॉर का आगाज हुआ जो कि पाकिस्तान ने जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए थे हमारे वेस्टर्न फ्रंट में एयरफील्ड्स पे। तो उसके बाद जो है एयरफोर्स हमारी इंडियन एयरफोर्स कमेंस्ड ऑपरेशंस इमीडिएटली और जैसे कि मैंने कहा था कि ये ऑपरेशंस उन्होंने बहुत ही थॉरली प्लान करे हुए थे और इनको जब कंडक्ट भी किया उन्होंने बहुत अच्छे मतलब इंटेंसिटी के साथ किया। आप ये समझिए कि जो इंडियन एयरफोर्स थी दे हैड अ प्रॉपर डोमिनेंस मतलब अबोव द पाकिस्तान एयरफोर्स, मतलब इतना डोमिनेंस था कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक तरह से डिफेंसिव मोड में डाल दिया था।
6: बात यही उठती है कि जब वो जानते थे कि हम इतनी सशक्त वायुसेना के साथ यहाँ हैं तो भी उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हम पर हमला करें, पहले हमला
5: करने वाली बात तो ऐसा है कि इनफैक्ट उनका ये सोच है उनकी अपनी डॉक्ट्रिन थी कि हम पहले हमला करके जो है इनको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
6: हाँ, जी
5: तो ये तो उनकी सोच थी लेकिन जब उन्होंने किया उससे पहले ही सिंस इंडियन एयरफोर्स वाज रेडी तो जितने लाइक उस समय प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि जो एयरफील्ड्स जो थे आगे उसके अलावा जो डेप्थ में भी हमारे जो एयरफील्ड्स थे तो एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो पीछे मूव कर चुके थे।
6: अच्छा, यानी पहले से हमें आभास था कि अब हमला होने वाला है,
5: हमें मालूम था, इट वाज वेरी वेल मतलब सब कुछ पता था कि ये आज हो गया कल होगा मतलब होना तो है। एंड पाकिस्तान ने किया वो उनकी डॉक्टर के हिसाब से किया था
6: कि वो हमेशा से उनकी पॉलिसी
5: रही है एंड हमारी पॉलिसी ये रही है कि हम जनरली कभी वी आर नेवर द फर्स्ट वन टू अटैक ऑन एनीवन, है ना। जैसा कि अब हम इस जिक्र कर रहे थे कि इस वॉर में दोनों फ्रंट पे लड़ाई हो रही थी, वेस्टर्न फ्रंट पे भी हो रही थी, ईस्टर्न फ्रंट पे भी हो रही थी। तो अगर हम जिक्र करें वेस्टर्न फ्रंट का, तो वेस्टर्न फ्रंट में आईएएफ के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा फ्रंटेज है, मतलब रण ऑफ कच्छ से शुरू होके लद्दाख तक
6: जी,
5: इतना बड़ा मतलब उनके पास फ्रंटेज था जिसमें कि वो सारे के सारे उन्होंने ऑपरेशंस कैरी आउट किए और इनकी एग्रेसिवनेस थी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जिसके कारण जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में इन्होंने अपना कंप्लीट डोमिनेंस बनाया था। अच्छा, इसके कारण क्या होता है, जब एयर में डोमिनेंस होता है तो ग्राउंड फोर्सेस होती है, आर्मी होती है, उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है।
6: एक आत्मविश्वास बढ़ता
5: है, दूसरों को पता होता है कि हम एटलीस्ट ऊपर से हम सेफ हैं।
6: हाँ, जी।
5: है ना, तो जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है ग्राउंड पे, हम जब वो करते हैं तो आर्टिलरी की जो फायरिंग आ रही होती है, एयरफोर्स की जो फायरिंग होती है, उसी से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है,
6: बचाव होता है,
5: उससे बचाव हो जाता है। तो आईएएफ ने काफी अच्छे ऑपरेशन इसमें वेस्टर्न फ्रंट पे कैरी आउट किए थे। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो ऑपरेशन थे उसमें उन्होंने कराची का की हमारी ऑयल इंस्टॉलेशन था उसमें अटैक किया था, रेड किया था। फिर रावलपिंडी में जो अटॉक की ऑयल रिफाइनरी थी उस पर अटैक किया था, मंगला डैम में पावर हाउस जो है डिस्ट्रॉय किया था, उस पर भी अटैक किया था, एंड इवन जो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस था पेशावर में और भी काफी जो बेसिस थे वहाँ पे रेड्स करे थे। एंड एक इंट्रोडक्शन मिशन होते हैं जिसमें कि जैसे जो कॉन्वॉयज जा रहे हैं, व्हीकल्स कॉन्वॉयज होते हैं, ट्रेन जो मूव कर रही होती हैं विद द मिलिट्री स्टोर्स एंड ऑल, है ना, इम्पोर्टेंट ब्रिजेस जो होते हैं, तो आईएएफ हैड मेजर सक्सेस इन दीज एस्पेक्ट्स। एंड इवन मतलब दे वर एबल टू अटैक कराची हार्बर एरिया एंड नेवल एस्टेब्लिशमेंट एट मनोरा, तो काफी अच्छे मतलब ये जो ऑपरेशंस थे जिसके कारण जो है पूरे वेस्टर्न फ्रंट में आईएएफ हैड ए डोमिनेंस, प्रॉपर डोमिनेंस ऑफ द एरिया। देन एक और एयरफोर्स का जो एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराना। क्लोज एयर सपोर्ट का मतलब होता है जैसे हम आम फोर्सेस जब जारी होती है, आर्मी जब जारी होती है, जब उनको जरूरत होती है उस समय जो है एयरफोर्स मदद करती है। क्या अब बहुत बड़ा फेमस और हम सबको मतलब मेरे ख्याल से पता है वो बैटल ऑफ लोंगे वाला है।
6: जी जी,
5: जनरली जो है बॉर्डर मूवी की बात तो बहुत ही फेमस हुई थी है। तो लोंगे वाला की मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा क्योंकि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईएएफ ऑपरेशन। लोंगेवाला जो है जैसलमेर सेक्टर में लोकेटेड है और ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अप्रोच है पाकिस्तान से जैसलमेर की तरफ उसके ऊपर लोकेटेड है। तो इस वाइटल लोकेशन से जो है जैसलमेर का मतलब डिफेंस होता था। इसमें जो थी ये कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटी थी जिसमें 23 पंजाब रेजिमेंट की कंपनी ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। कंपनी कमांडर फेमस उस समय मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे जो भदन ब्रिगेडियर सब बने थे, महावीर चक्र अवार्ड मिला था जिन्हें। तो ये कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटी के ऊपर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा भीषण अटैक किया जिसमें कि पूरी एक पाकिस्तान की ब्रिगेड थी, मतलब आप इससे अंदाजा लगे कि एक कंपनी और एक ब्रिगेड में 12 कंपनी, तो एक कंपनी के अगेंस्ट 1:12 के रेशो में और साथ में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, तो कितना मतलब भारी अटैक आया। एंड कंपनी वॉज फाइटिंग वेरी ब्रेवली होल्डिंग द फोर्ट, ठीक है, उनको आगे नहीं जाने दे रही थी। लेकिन जब आपको एक अंदाजा तो होता है कि 1:12 के रेशो में जब हम लड़ रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि जब हम नहीं इसके आगे नहीं लड़ पाएंगे, तो उससे क्या है जैसलमेर के लिए अप्रोच ओपन हो जाएगी, जैसलमेर विल बी थ्रेटन्ड। सो फाइनली आर्मी गेव एसओएस कॉल टू एयरफोर्स कि भाई ये ऐसा चल रहा है। एंड ऑन 5th December नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है एयरफोर्स केम फॉर द क्लोज एयर सपोर्ट। एंड आप ये देखिए बाय मिड डे एयरफोर्स हैड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड 15-16 टैंक्स ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने काफी भारी मात्रा में जो है पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे जो अटैक कर रहे थे उनको जो है उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया, जो उनकी व्हीकल्स थी उस पर नुकसान पहुंचाया, गन्स पे नुकसान पहुंचाया। एंड मतलब टू द एक्सटेंट कि ये जो अटैक था पीटर्ड ऑफ हो गया, मतलब जो है फेल हो गया, असफल हो गया, और बहुत मेजर अटैक था एक्चुअली देखा जाए तो। ये आईएएफ हैड टू इट्स क्रेडिट ऑलमोस्ट उसके बाद जो 2 दिन लगातार इंडियन एयरफोर्स उनके ऊपर हमले करती रही, उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 37-38 टैंक्स जो है बर्बाद किए, नष्ट किए। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेजर चीज होती है, मेजर जो है एक विक्ट्री होती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्लोज एयर सपोर्ट्स। ऐसे ही वेस्टर्न फ्रंट पे उन्होंने जो है आईएएफ ने पाकिस्तान के काफी गन पोजीशंस, जो उनके व्हीकल्स थे, ट्रेन्स थी जो कैरी कर रही थी, उनको नष्ट किया. एंड पुंच सेक्टर में कहूता लोकेशन है, वहाँ पे पाकिस्तान का कंसंट्रेशन था जिसमें कि वो लोग अटैक का प्लान कर रहे थे अगले दिन पुंच सेक्टर में. आर फोर्स कैरिड आउट अ रेड ऑन दैट एंड दे डिस्ट्रॉयड द कंप्लीट पाकिस्तान आर्टी गन्स जो थी. एंड साथ ही साथ उन्होंने जो फोर्स थी अटैक करने के लिए आ रही थी उसको भी उन्होंने बहुत इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने वो अटैक कैंसिल कर दिया, नहीं कर पाए थे. तो ये क्या होता है, हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं क्लोज एयर सपोर्ट का? दिस इज हाउ द सिनर्जी एंड द कोऑर्डिनेशन जॉइंटमैनशिप कम्स अप, जिसके कारण जो है मतलब आपको विजय प्राप्त होती है.
6: यानी इतना अद्भुत समन्वय जो था वो सन 1971 के ही युद्ध में देखने को हमें मिला सबसे पहली बार.
5: नहीं, उससे पहले भी अगर हम आपको याद हो हमने 47-65 में भी किया था. ऑफकोर्स जो है हमेशा से जो है करती आ रही है, सपोर्ट करती आ रही है. आज हम थोड़ा उसको विस्तृत में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि 71 में जो है एयरफोर्स वॉज वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स, काफी
6: सशक्त भी हो गई थी,
5: सशक्त हो गई थी इसी कारण से ना. तो आज हम जो है उसका काफी जिक्र कर रहे हैं. तो सिमिलरली मतलब जो है IAF कैरिड आउट ऑपरेशंस इन हाजीपीर पास था, कारगिल था, छम सेक्टर था, मतलब हर जगह पे उन्होंने जो है काफी नुकसान पहुंचाया. एंड बिकॉज ऑफ दिस दे मेंटेन्ड टोटल डोमिनेंस. अच्छा, इसके अलावा भी जो है इंडियन एयरफोर्स है और भी बहुत सारे तरीके से जो है इस वॉर में, देखिए एक तो उनका अपना रोल था, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स था, वो एयरक्राफ्ट से जो है मतलब जो डोमिनेंस ले रहे थे कि पाकिस्तान के एयरफोर्स को नहीं आने दे रहे थे. उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में अंदर घुस के स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स थे उसके ऊपर वो लोग जो है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे और साथ ही साथ जो है आर्म फोर्सेस को, नेवी को भी मतलब सपोर्ट कर रहे थे. तो उसमें इवन जो है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन जो काफी बड़ा, घायलों को जो शिफ्ट करना, इसके साथ साथ जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट में जो है सामान पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी मदद से जो है जो ट्रुप्स का मूवमेंट है. एंड स्पेशली इस समय क्या हुआ था क्योंकि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर दोनों जगह एक्टिव थे तो हुआ है ऐसा कि जो है ईस्टर्न सेक्टर से ट्रुप्स को है वेस्टर्न सेक्टर में मूव किया है. ठीक है,
6: अच्छा.
5: एंड वो पॉसिबल यही हुआ हो पाया बिकॉज ऑफ द एयरफोर्स.
6: सर अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक आपने पश्चिमी मोर्चे के बारे में बात की कि पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना ने अपना क्या योगदान दिया. अब आप मुझे ये बताइए कि इसी दौरान हमने पूर्वी मोर्चे पर भी लड़ाई की है तो यहाँ पर वायुसेना अपनी क्या भूमिका निभा रही थी.
5: सी, लड़ाई एक दिन शुरू हुई थी और IAF ने जैसे पश्चिम वेस्टर्न फ्रंट पे जो है उन्होंने रोल अदा किया, इन सिमिलर फैशन उनका रोल ईस्टर्न फ्रंट पे भी था. ईस्टर्न फ्रंट पे तो थर्ड को उन्होंने शुरू किया है एंड बिलीव मी फोर्थ को जो पाकिस्तान एयरफोर्स है जो बांग्लादेश में उस समय के इस पाकिस्तान में बिल्कुल इनएफेक्टिव हो गई थी. मतलब इंडियन एयरफोर्स हैड अ टोटल डोमिनेंस ऑफ दैट एरिया बाय नेक्स्ट डे.
6: अच्छा,
5: दैट काइंड ऑफ ऑपरेशंस दे कैरिड आउट.
6: तो सर ये भी ये बताता है कि उनका बांग्लादेश पर यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं था वहाँ की सरकार का, ना तो सैनिक के तौर पर या सैन्य तौर पर, ना आर्थिक तौर पर.
5: बिल्कुल सही कहा आपने
6: जी.
5: और उस समय तक मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि अब हमारे बस की बात नहीं है इसको अपने साथ बना के रखना.
6: जी,
5: एक तो क्या होता है वो डिमोरलाइजिंग फैक्टर आ चुका होता है.
6: जी,
5: जो लोग लगातार वहाँ पे एक्टिव है, काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो आर्म फोर्सेस रहे हो, दिस वाई फील की मतलब उनमें भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो आ ही गया होगा.
6: जी,
5: है ना.
6: जिस तरह से सर अंग्रेजों को ये सन 42 या 40 से लग गया था कि अब देश छोड़ना पड़ेगा.
5: एग्जैक्टली, तो शायद वही बात थी. तो ईस्टर्न फ्रंट में अगर हम जिक्र करेंगे तो IAF कैरिड आउट सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस, उसमें उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट अगेन रोल प्ले किया था. स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कैरियर आउट किए थे, क्लोज एयर सपोर्ट के किए थे. और यहाँ सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी उस समय अगर हम बांग्लादेश की टेरेन देखते हैं तो उसमें काफी सारी रिवर्स एंड नाला काफी ज्यादा
6: है, वो पूरा डेल्टा इलाका ही है.
5: एग्जैक्टली, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हेल्प जो थी IAF ने दी, दैट वाज बाय कैरिंग आउट हेलीबॉर्न ऑपरेशंस एंड एयरबॉर्न ऑपरेशंस.
6: अच्छा,
5: हेलीबॉर्न ऑपरेशंस का जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आर्मी है उसको हेलीकॉप्टर की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता है. अब ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन जब दुश्मन नीचे से फायर कर रहा है उसके इलाके से आप जा रहे हैं, देखिए एयरफोर्स वॉज एबल टू मेंटेन एयर डोमिनेंस, तो वो पाक एयरफोर्स को तो नहीं आने दे रही थी, लेकिन नीचे आर्टिलरी के गन्स है, जो पाकिस्तान का सोल्जर है उसके पास भी एक राइफल भी है ना, तो
6: उनकी पहुंच में,
5: उनकी पहुंच में है। इस टाइम पे जो है हेलीकॉन ऑपरेशन कैरी आउट करना काफी मतलब एक साहस भरा कार्य था, और 71 में इंडियन आर्मी में एक तरह से देखा जाए तो पहली बार हेलीकॉन ऑपरेशंस लॉन्च किए थे जो है, एंड इससे बहुत मदद मिली, जैसे मैंने पहले ही बोला कि रैपिड मूवमेंट में ग्राउंड फोर्सेस के। पूरा अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर में, तो हेलीकॉन सॉर्टी मतलब जो है आईएफ ने कैरी आउट करी थी ऑलमोस्ट 400+।
6: क्या बात है
5: जी, है
6: जी।
5: और उसमें उन्होंने तकरीबन 3,000 से भी ज्यादा जो है ट्रुप्स को, जो पूरे फुली इक्विप थे, उनको जो है मोबिलाइज किया। और अगर हम इक्विपमेंट देखें, आर्टिलरी गन्स जो है, एमिनेशन जो है, भारी, इतना काफी भारी इक्विपमेंट होता है, उसको उन्होंने मतलब जो है मोबिलाइज किया था। और हेलीकॉप्टर्स भी उस समय मतलब ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के पास बहुत ज्यादा थे, दे हैड मतलब सर्विसेबिलिटी वगैरह सब मिला के जो है उनके पास 10 से 12 हेलीकॉप्टर, 14 हेलीकॉप्टर्स होते थे। तो मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद, देखिए जब रिसोर्सेज कम है, हेलीकॉप्टर कम है, तो उनको उतनी शॉर्टेज ज्यादा करनी पड़ती थी,
6: चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते।
5: तो आप ये देखिए हर एक चक्कर में उनको मतलब कितना ज्यादा एक्सपोजर है, तो उतना ज्यादा खतरा है। तो ये जो
6: बार बार उड़ान
5: उड़ाना, तो जो पायलट्स थे उनकी हिम्मत देखिए आप,
6: बिल्कुल सर,
5: और वो कंटिन्यूअसली कर रहे थे, मतलब जो है कंटिन्यूअसली रहता था, इट डज नॉट दैट कि रुक के ब्रेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो मेजर एयरलिफ्ट किया था इन्होंने, 4-5 जीआर की कंपनी थी
6: जी,
5: उसको मतलब जो है पूरी बटालियन का एक्चुअली लिफ्ट किया था, कोलारा से सेलेक्ट करके एक जगह है वहां गए थे।
6: अच्छा,
5: तो 12 घंटे में इन्होंने पूरी की पूरी जो है बटालियन को हेली लिफ्ट किया था, ठीक है। और इसमें आप ये देखिए तकरीबन जो है 600 से ज्यादा ट्रुप्स थे, 12 टन से ज्यादा इक्विपमेंट था
6: सर, कितना, 12 घंटे,
5: 12 घंटे में इन्होंने किया था।
6: क्या बात।
5: और इसमें कन्फर्म 66 से 70 सॉर्टिस लगी थी
6: जी।
5: तो उतनी बार वो लगातार जो है
6: उड़ान
5: भर रहे हैं, जा रहे हैं, और उस समय दुश्मन भी फायर कर रहा है, इट्स अ डेयरिंग ऑपरेशंस जो है,
6: बहुत पराक्रम की बात है सर।
5: बिल्कुल बिल्कुल। तो सिमिलरली दे कैरिड आउट अदर ऑपरेशंस आल्सो, जिसमें कि उन्होंने अगेन इंडियन ट्रुप्स को जो है मेघना रिवर क्रॉस कराने में मदद करी थी। और जो बिगेस्ट हेली लिफ्ट का जो ऑपरेशंस कैरी आउट किया था, ब्राह्मण बारिया से नरसिंहगढ़ी की जगह है
6: जी।
5: तो इसमें उन्होंने तकरीबन जो है 1400 आर्म ट्रुप्स जो है, आर्म ट्रुप्स में क्या होता है कि पूरा जवान जो है पूरे इक्विपमेंट के साथ, वेपन के साथ, एमिनेशन के साथ होता है, तो उसको उतना वजन होता है, तो वॉल्यूम बढ़ता है, और उसको उनको जो है उन्होंने क्रॉस कराया था। इट वाज अ मेजर ऑपरेशन कैरिड आउट बाय देम। सिमिलरली एक और जो काफी जिसमें मदद मिली थी, दैट वाज अ पैरा ड्रॉप, जो पैरा बटालियंस होती हैं उसको यहाँ पे ड्रॉप कराया था। तो तंगेल का ऑपरेशन काफी फेमस है।
6: अच्छा।
5: जिसमें एक पैरा बटालियन ग्रुप को, पूरे ग्रुप को जो है तंगेल जो जगह है उसके नॉर्थ में इन्होंने ड्रॉप किया था, ठीक है। पुंगली ब्रिज होता है जो जमालपुर तंगेल रोड पे था, उसको कैप्चर करने का टास्क था। ये जो ऑपरेशन किया गया था जिसमें कि पूरे की पूरी जो है पैरा बटालियन जो है एयर ड्रॉप हुई थी, उसमें 48 एयरक्राफ्ट लगे थे, मतलब कितनी बड़ी फोर्स थी जिसमें पूरे कपड़ा ट्रांसपोर्ट जो है हुआ था। एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसमें कि 800 से ज्यादा ट्रुप्स जो हैं को ड्रॉप किया गया था विद आर्म्स, एमुनेशन एंड इवन लाइट व्हीकल्स, जो जीप होती है ना, वो भी ड्रॉप हुई थी।
6: क्या बात।
5: अब देखिए इसको जब प्लान किया जाता है, तो जैसे मैंने बताया ना कि नीचे से जब ग्राउंड फोर्सेस हैं उनसे डर होता है, उनके अटैक का डर होता है। जब आप स्पेशली क्या होता है, जब ड्रॉप हो रहा होता है पैरा ड्रॉप में, आदमी ऊपर से छलांग लगाता है, उससे वो सबसे वनरेबल होता है सोल्जर, क्योंकि वो अपना वेपन तो फायर कर नहीं सकता, और उसको ये भी नहीं दिख रहा है कि मैं कहां लैंड कर रहा हूं
6: जी,
5: उसको एक ये भी चिंता रहती है कहां लैंड करने वाला, तो उस समय ही एक्सपोज्ड कंप्लीटली, तो वो जो है एनिमी फायर के लिए उस समय वो रहता है। तो इसलिए ये जो होता है इसमें प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि पाथफाइंडर एक ग्रुप जाता है, जो लोकेशन होती है उसको वो लोग मार्क करते हैं ताकि प्रॉपरली जो है लैंड कर सकें, उतर सकें, ड्रॉप कर सकें। तो ये ऑपरेशन में पहले पाथफाइंडर ग्रुप्स भी गए थे और इवन दुश्मन को चकमा देने के लिए, उनको बुलावे में रखने के लिए एक और ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था।
6: अच्छा।
5: एक और जगह एयर ड्रॉप प्लान किया गया था जो कि वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर था।
6: हाँ।
5: ताकि उनको ये ना पता चले कि कहां एक्चुअली ऑपरेशन हो रहा है।
6: दुश्मन कंफ्यूज
5: जी कंफ्यूज
6: सुनियो
5: डिटेल में जो प्लान किया गया था ऑपरेशन था और जो है उसकी सक्सेस में आप ये सोचिए कितना बड़ा मतलब आईएफ का हाथ था जो है रोल था उन्होंने किया एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम वेरी वेरी अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस। इसी तरह से और भी मतलब जो अगर हम देखें आईएफ ने जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे ईस्टर्न फ्रंट पे, उन्होंने स्पेशल मिशंस किए थे, रेड्स की थी, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है ढाका यूनिवर्सिटी पे जो उनको पता चला था कि पाकिस्तानी ट्रुप्स हैं वहाँ पे, तो उसके कारण उन्होंने उसमें रेड किया था एंड स्पेसिफिक टारगेट्स को स्पेसिफिक लोकेशन को उन्होंने जो है रेड में डिस्ट्रॉय किया था।
6: हाँ
5: इसी तरह से 14 दिसंबर को जो ढाका में जो गवर्नमेंट हाउस है जो गवर्नर हाउस था
6: जी, जी,
5: उसका रेड बहुत फेमस है
6: जी, बिल्कुल।
5: उसमें जो गवर्नर साहब थे जो सिविलियंस का मिलिट्री ऑफिसर्स का पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो है उनके कॉन्फ्रेंस होने वाली
6: होने
5: थी तो ये जानकारी मिली थी इंडियन आर्म फोर्सेस को तो उसको डिस्ट्रॉय करने का जो है इंडियन आर्म फोर्स को टास्क दिया गया था एंड जब वो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसके 30 मिनट के बाद जो है एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो है इन एयर फोर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था एंड उन्होंने उसको इतना ज्यादा बर्बाद किया था कि जो गवर्नर साहब थे डॉक्टर मलिक एंड उनके कैबिनेट ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया था। दिस इज हाउ दे प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, है ना
6: जी। तो श्रोताओं आज हमने जाना कि भारतीय सेना ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारी थल सेना को आगे बढ़ने में किस प्रकार सहायता दी। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी और भामासर से हम इस युद्ध में सेना के पराक्रम को आगे भी जानेंगे। कीजिए इंतजार कार्यक्रम के अगले एपिसोड का और कार्यक्रम का नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। सर इस कार्यक्रम में आप आज भी शामिल हुए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू पूर्वा जी एंड जय हिंद श्रोताओं।
6: तो श्रोताओं ये था कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने पूर्वा खले। तो दीजिए इजाजत अब इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो आजाद हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में जानकारी दे रहे थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत कर रही थी पूर्वा खले।
1: गेल्मर वोसबर्ग एक डच सर्जन और मुगल दरबार की कूटनीति। 17वीं शताब्दी के बंगाल के आर्द्र नदी क्षेत्रों में शक्ति हमेशा औपचारिक संधियों या भव्य दूतावासों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर ये एक शासक और डॉक्टर के बीच पाई जाती थी। इस अनूठी गतिशीलता के केंद्र में गेल्मर वोसबर्ग थे, जो एक डच सर्जन थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मीर जुमला के बीच एक कूटनीतिक सेतु बन गए थे। 1660 तक मुगल उत्तराधिकार के युद्ध ने साम्राज्य के पूर्वी सीमांत को उच्च तनाव की स्थिति में छोड़ दिया था। सम्राट औरंगजेब के मामा और एक प्रतिभाशाली उद्यमी सेनापति मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मीर जुमला का राजनैतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना अधिक था कि वे अक्सर यूरोपीय कंपनियों पर अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए धन, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते थे। कपड़ा और शोरा के आकर्षक व्यापार को बनाए रखने के लिए बेताब वीओसी को लगा कि वे केवल तटस्थ नहीं रह सकते, जीवित रहने के लिए उन्हें मीर जुमला की सेवा में खुद को शामिल करना ही पड़ा। इस जबरन सहयोग के हिस्से के रूप में मीर जुमला ने वीओसी से विशेषज्ञ कर्मियों को लीज पर लेना शुरू किया, जिनमें जहाज निर्माता, नाविक और सर्जन गेल्मर वोसबर्ग शामिल थे। जहां उनका प्राथमिक कार्य नवाब और उनके आंतरिक घेरे के स्वास्थ्य की देखभाल करना था, वहीं बटविया के डच निदेशकों और ढाका के फैक्ट्री प्रमुखों ने डॉक्टर के लिए कहीं अधिक रणनीति उपयोग देखा। मीर जुमला के साथ निकटता के कारण कंपनी वोसबर्ग को दैनिक कूटनीतिक व्यवहार करने के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति मानती थी। प्रांतीय कूटनीति की दुनिया में जहां विशिष्ट स्थानीय बातचीत अक्सर दिल्ली के शाही फरमानों से अधिक महत्वपूर्ण होती थी, वोसबर्ग एक मुख्य कड़ी थे। जहां ढाका के डच प्रतिनिधि को सप्ताह में एक बार नवाब से मिलने की उम्मीद थी, वहीं वोसबर्ग नवाब के घेरे के भीतर ही रहते थे। वे कंपनी की आंख और कान थे, जो मीर जुमला के मूड को भांपने और चिकित्सा देखभाल के अनौपचारिक क्षणों के दौरान चुपचाप डच हितों की वकालत करने में सक्षम थे। ये व्यवस्था एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी, जहां वीओसी ने अपनी विशेषज्ञता नौसैनिक शक्ति से लेकर चिकित्सा ज्ञान तक को महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया। वोसबर्ग की सेवा ने कंपनी को उस कठिन दौर में रास्ता खोजने में मदद की जब मीर जुमला आक्रामक रूप से हिजली द्वीप जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। एक ऐसा सर्जन प्रदान करके जिस पर नवाब भरोसा कर सके, वीओसी ने यह सुनिश्चित किया कि सैन्य समर्थन के लिए दबाव के बावजूद उनका व्यापार चलता रहे। गेल्मर वोसबर्ग की कहानी उस युग के ऐसे प्रविधि को दर्शाती है जहां यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई शक्ति संरचनाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार का इतिहास अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक निकटता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के बंगाल में एक सर्जन की कैंची और गवर्नर के तंबू में फुसफुसाए गए कुछ शब्द कभी कभी वैश्विक साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करने में युद्ध पोतों के बेड़े जितने ही शक्तिशाली होते थे।
2: गली में मार खेरे, पास आने को मेरे।
3: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हमारी विशेष प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे लेडी विद द लैम्प कही जाने वाली मदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिन्होंने सेवा के क्षेत्र में नर्स के तौर पर समाज में उत्कर्ष काम किए। श्रोताओं, विश्व नर्स दिवस भी इन्हीं की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और बात करते हैं सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली मदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ स्वाति।
1: और मैं हूँ फराज।
0: श्रोताओं, 12 मई हर साल इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नाम है निस्वार्थ सेवा का,
1: ये नाम है सहानुभूति और दया का,
0: ये नाम है ममता और करुणा का,
1: ये नाम है नर्सिंग को सम्मान और मान दिलाने वाली,
0: जिन्होंने दुनिया की पहली परिचारिका के तौर पर अपनी पहचान बनाई,
1: जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक तो थी ही, साथ में थी एक समाज सुधारक, लेखिका और सांख्यिकीविद और महिला हित चिंतक के रूप में भी खास तौर पर पहचानी जाती हैं।
0: ये सब कैसे और क्यों कहलाएं, इस बारे में उनके कामों का हम आगे जिक्र करेंगे।
1: जी हाँ, फ्लोरेंस सिटी के नाम पर रखा गया उनका नाम वास्तव में उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गया
0: और उनके सत्कर्मों की खुशबू इस दुनिया में कुछ इस कदर फैली कि सदी गुजर जाने के बाद भी उसकी महक आज भी दुनिया को महका रही है।
1: और ब्रिटिश इतिहास की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने जीवन काल में ही एक लीजेंड बन गई थीं।
0: लेडी विद द लैम्प कही जाने वाली मदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कार्यों ने क्रीमिया में युद्ध के दौरान मॉडर्न नर्सिंग के मार्ग को प्रशस्त किया
1: और लाइफ के बाकी समय में भी उन्होंने मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही अस्पतालों में विशेष तौर पर स्वच्छता अभियान जारी रखा।
0: श्रोताओं, माना जा सकता है कि हाथ धोने के फायदों को सबसे पहले उन्होंने ही प्रमाणित किया, जो आगे चलकर कई जगह फायदेमंद भी साबित हुआ, लेकिन कोरोना काल में सबसे ज्यादा बीमारी से बचने के लिए ये वरदान बन गया।
1: इस महान शख्सियत का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के माता पिता यूं तो इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन 12 मई 1820 को एक यात्रा के दौरान इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्म होने के कारण इनका नाम फ्लोरेंस रखा गया, जबकि इनकी बड़ी बहन पोर्थनोप का नाम भी इटली के ही एक शहर के नाम पर रखा गया था।
0: बिल्कुल, धनी परिवार में जन्मी फ्लोरेंस के परिवार के इंग्लैंड में दो घर हुआ करते थे, सर्दीले मौसम के लिए हैम्पशायर में और गर्मी के मौसम के लिए ली हर्ट्स में एक घर बनाया गया था।
1: बच्चियों के एक साल के होते होते परिवार के 1821 में इंग्लैंड वापसी हुई। रईसी ठाटबाट में पली बड़ी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उनके पिता विलियम नाइटिंगेल ने, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के फेवर में थे, इसीलिए उन्होंने बेटियों को घर पर ही पढ़ाया लिखाया और आधुनिक और शास्त्रीय भाषाओं, इतिहास, दर्शन और गणित की शिक्षा दी।
0: बिल्कुल, इसके साथ ही क्योंकि फ्लोरेंस दूसरे बच्चों से जरा सी अलग थी, वो सामान्य बच्चों जैसे खेल खिलौनों और जिद और गुस्से से भी कोसों दूर थी, सहानुभूति, सेवा और दया उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी।
1: उनका ये गुण उस समय सभी को दिखाई दिया जब फ्लू महामारी फैली और इस दौरान बच्ची फ्लोरेंस ने बीमारी लगने के डर से बिना अपने परिवार और नौकरों की देखभाल की, और शायद नर्स बनने की इच्छा का बीज भी यहीं से पनपा था।
0: नाइटिंगेल परिवार में बच्चों की कम उम्र में शादी कर देने का रिवाज था, ऐसे में फ्लोरेंस की भी शादी की बातें उनके युवा अवस्था तक आते आते की जाने लगी, लेकिन उन्हें शादी की चर्चा होना भी अजीब सा लगता था। ऐसे में उन्होंने अपने परिवार से शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
1: परिवार के लिए फ्लोरेंस का शादी से इनकार करना ही अपने आप में गंभीर समस्या बना हुआ था। उस पर फ्लोरेंस ने अपने नर्स बनने की इच्छा भी जता दी थी और अपना पक्का इरादा भी जाहिर कर दिया।
0: बेटी की अजीबोगरीब जिद से परिवार पशुपेश में पड़ गया। इसके बाद परिवार के बड़ों ने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फ्लोरेंस ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो दुनिया में गरीबों की और बीमारों की सहायता करने के लिए ही आई है और ऐसा करना उनके लिए ईश्वर का आदेश है,
1: और साफ साफ जता दिया कि वे अपना इरादा किसी भी हाल में नहीं बदलेंगी। बचपन से फ्लोरेंस इसी तरह की बातें कहा करती थी, लेकिन तब सभी इसे बचपना मानकर नजरअंदाज कर दिया करते थे। अब किशोर उम्र में संतों सी धीर गंभीरता के साथ दृढ़ निश्चयता देखकर सभी हैरान थे।
0: 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में उस समय नर्स बनना सम्मानीय कार्य नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी नाइटिंगेल की नर्स बनने की जिद ने बवाल मचा दिया। जो सुनता हैरान और परेशान हो जाता।
1: उनके माता पिता को उनकी इच्छा बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो सिर्फ यही चाहते थे कि बेटी अपनी शादी करके अपना परिवार बसा ले। जिद का खामोश तूफान दोनों तरफ से तेजी से बढ़ता गया
0: और एक दिन बेटी ने नर्स बनने के लिए खाना पीना तक छोड़ दिया। उनकी सेहत बिगड़ने लगी और वो घोर निराशा में घिरकर डिप्रेशन में चली गई। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें 3 माह के लिए जर्मनी जाने की अनुमति दे दी, जहां उन्होंने पादरी थियोडोर फ्लिडनर के अस्पताल और लूथनर डिकोनॉस के स्कूल में पढ़ाई की। जर्मनी में केसरबर्थ में अपना नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नाइटिंगेल ने सिस्टर्स ऑफ मर्सी के साथ अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए पेरिस का रुख किया,
1: जहां उन्होंने कैथोलिक धार्मिक आदेशों के तहत अस्पताल के कामकाज और नर्सिंग तकनीकों की बारीकियों को समझा। ये सब उस समय मेडिकल फील्ड में खास अहमियत रखते थे।
0: श्रोताओं, पेरिस में लिया गया हर अनुभव उनके लिए बहुत ही खास था, जहां उन्होंने अस्पताल मैनेजमेंट और नर्सिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी कि हर व्यवहारिक पहलुओं को समझा, और ये अनुभव आगे चलकर उनके क्रीमिया युद्ध के दौरान भी काम आए।
1: इसके बाद वे इंग्लैंड लौट आईं और लंदन में सभ्य महिलाओं के लिए एक अस्पताल की अधीक्षक और प्रबंधक बन गईं। सिर्फ 33 साल की उम्र तक पहुंचते फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थीं।
0: और जब 1854 में क्रीमिया युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना बीमार और घायल सैनिकों की भारी संख्या से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
1: चिकित्सा सामग्री की कमी, भीड़भाड़ और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण कई लोगों ने शिकायत की। अखबारों में चिकित्सा देखभाल की दयनीय स्थिति के बारे में खबरें छपने लगीं।
0: दरअसल 1853 से 1856 के बीच हुए क्रीमिया के युद्ध में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने हिस्सा लिया था। रूस की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अलायंस तैयार किया गया और इस युद्ध को पहला आधुनिक युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेलवे, टेलीग्राफ और न्यू लेवल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था।
1: और क्रीमिया युद्ध ऐसा पहला यूरोपीय संघर्ष था जिसकी तस्वीरें ली गई थी। वो पहला युद्ध भी था जिसकी रिपोर्टिंग करते हुए युद्ध संवाददाता बिजली के तार से मैसेज भेज रहा था, जिसके कारण युद्ध की खबरें फौरन अगले दिन अखबार तक पहुंच जाती थीं। और ये पहला मौका था जब जनता को युद्ध से जुड़े ताज़ा हालात पढ़ने को मिल रहे थे।
0: वाकई ये तो कमाल था। लेकिन श्रोताओं, राष्ट्रीय आक्रोश, सेना की विफलताओं और नर्सों की कमी के कारण बीमार और घायल सैनिकों की बुरी हालत के बारे में पत्रकार विलियम हॉवर्ड रसेल की रिपोर्ट को द टाइम्स अखबार में बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। और ये युद्ध ब्रिटिश मिलिट्री डिसेबिलिटी और सहयोगी घायल सैनिकों की दयनीय हालत के लिए भी पहचाना जाने लगा।
1: अखबार ने इसी खबर के साथ मेडिकल स्पेशलिटी रखने वाले लोगों, खासकर नर्सेस को सहायता करने का आह्वान किया था, जिसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया जाने की सारी प्रोसेस पूरी की।
0: युद्ध सचिव सिडनी हर्बर्ट ने नाइटिंगेल से घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए नर्सों के एक ग्रुप की लीडरशिप की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी, और 4 नवंबर 1854 को नाइटिंगेल और 38 नर्सों का एक समूह ब्रिटिश सेना के शिविर में पहुंचा।
1: वहां पहुंचने पर फ्लोरेंस और उनकी टीम को एक तरह से डरावने मंजर का सामना करना पड़ा। गंदगी के बीच ढेरों कीड़े मकोड़े भरे हुए अस्पताल में खचाखच मरीज, अभी भी कीचड़ और खून से सने हुए सैकड़ों घायल सैनिकों के घाव इन्फेक्टेड हो चुके थे। कई हैजा जैसी बीमारियां से ग्रस्त सभी बड़ी ही बेसब्री से कई दिनों से इलाज का इंतजार कर रहे थे।
0: युद्ध के मैदान से ज्यादा अस्पतालों में मरने वालों की गिनती ज्यादा थी। दवा, भोजन, बिस्तर जैसी जरूरी सुविधाओं की भी कमी थी। कुल मिलाकर अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। उस पर अस्पताल के डॉक्टरों का रवैया फ्लोरेंस और उनकी टीम के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
1: ऐसे इमरजेंसी जैसे हालात में हेल्प करने पहुंची टीम के साथ डॉक्टरों का सलूक क्यों खराब था भाई?
0: कारण सुनकर आपको भी हैरानी होगी। जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स इन नर्सों को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो पुरुष थे और वो महिलाओं को नाकाबिल मानते थे, इसीलिए वो महिला नर्सों के साथ काम नहीं करना चाहते थे।
1: तो यहाँ भी महिलाओं को द्वयम दर्जे का मानकर उपेक्षित किया जा रहा था।
0: जी हाँ, लेकिन महिलाओं की बदतर स्थिति, उनके संघर्ष और हालात परिवर्तन पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल यह अस्पताल में जल्दी ही हालात बदलने लगे क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और हॉस्पिटल स्टाफ कम था। ऐसे में जल्दी ही फ्लोरेंस और उनकी टीम ने अपना काम संभाल लिया
1: और जल्दी ही फ्लोरेंस की गाइडेंस में नर्सों ने मिलिट्री अस्पताल और उसमें एडमिट सैनिक मरीजों की हालत बदल कर रख दी। सबसे पहले इन्फेक्शन से निपटने के लिए साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, हर कमरे और हर मरीज की सफाई की गई।
0: यहीं पर फ्लोरेंस ने सबसे पहले हाथ धोने की महत्ता को समझाया और अपनी टीम को हर काम के पहले और हर काम के बाद हाथ धोने के निर्देश दिए, जिसने कामयाबी में बड़ी भूमिका तय की।
1: और आज तक हाथ धोना बीमारी के फैलाव को रोकने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक माना जाता है।
0: चूंकि अस्पताल में उस समय लाइट्स तो थी नहीं, मरीजों को देखने के लिए एक दीपक लेकर जाया करती थी और वो मरीजों की देखरेख करने के लिए रात रात भर पूरे अस्पताल में उसी दीपक की लौ को लेकर घूमा करती।
1: जहाँ कहीं भी बीमारी अपने सबसे खतरनाक रूप में फैली हो और बीमारी के बहाने मौत का शिकंजा मरीज को शिकार बनाने के लिए तैयार हो, वहाँ लेडी विद द लैंप जरूर दिखाई दे जाती और मौत को हार मानकर कदम पीछे कर लेने पड़ते।
0: कहते हैं मरीज को उनकी मौजूदगी ही ईश्वरीय साथ होने का एहसास कराती थी। इस एहसास का जिक्र क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिक मैकडोनाल्ड ने 1855 में अपने घर को लिखे एक पत्र में भी किया।
1: कहते हैं सिर्फ 6 महीनों के भीतर नाइटिंगेल और उनकी टीम ने अस्पताल का काया पलट कर दिया और उनकी गाइडेंस और मेहनत के बलबूते मृत्यु दर लगभग रुक ही गई थी। आंकड़े बताते हैं कि मृत्यु दर 40% से घटकर महज 2% रह गई थी।
0: और इस दौरान खुद फ्लोरेंस भी एक बार बुरी तरह बीमार पड़ गई, मौत की कगार तक जा पहुंची, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो स्वस्थ हो गए। उन्होंने स्कूटारी में ही युद्ध के खत्म होने तक अपना काम जारी रखा
1: और यहीं रहते हुए फ्लोरेंस एक मशहूर नर्स बन गईं। उनके बारे में गीतकारों और कवियों ने गीत और कविताएं लिखी तो उनकी पेंटिंग, पोस्टर, प्रतिमाएं, मैट भी बनाए जाने लगे। उनकी बनाई लिथोग्राफी टेक्निक से बनी तस्वीर भी खासी पसंद की जाती थी।
0: लिथोग्राफी टेक्निक वही ना जो ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग तकनीक है
2: जी,
0: जिसमें एक चूना, पत्थर, धातु की प्लेट पर किसी भी ऑयली लिक्विड से चित्र बनाकर कागज पर छापा जाता है।
1: हाँ हाँ, वही चूना पत्थर पर लिखने पर बेस्ड लिथोग्राफी। ये तेल और पानी के ना मिलने के सिद्धांत पर काम करती है और इसका आविष्कार 1796 में एलोर्ड सैनेफेल्डर ने किया था। आजकल प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए बड़े पैमाने पर ऑफसेट लिथोग्राफी का यूज होता है, किफायती भी है।
0: हाँ, तो क्रीमिया युद्ध के समय से ही सिस्टर फ्लोरेंस की प्रसिद्धि बढ़ चुकी थी, लेकिन सिस्टर फ्लोरेंस को अपनी तारीफें सुनना जरा सा भी नहीं पसंद था। यही कारण था कि जब अगस्त 1856 में युद्ध समाप्ति के बाद फ्लोरेंस वापस ब्रिटेन लौटी तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया और चुपचाप डर्बीशायर में ली हर्ट्स में अपने घर पर रहने लगी।
1: लेकिन सच्चाई तो यही है, वे क्रीमिया युद्ध से एक हीरो बनकर ही लौटी थीं और उनके अपने अनुभवों का समाज को फायदा भी हुआ था।
0: फ्लोरेंस ने अपने सम्मान के दान में मिली राशि का सदुपयोग करने के लिए नाइटिंगेल फंड के नाम से राशि और एकत्रित की। बिना रुके काम करते रहने के लिए नाइटिंगेल कोष की भी स्थापना की गई। सन 1860 तक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दान की गई धनराशि से लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में दुनिया का पहला प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल स्थापित कर लिया था, जो था नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, और जिसका उद्घाटन 9 जुलाई 1860 को किया गया। उनकी प्रशिक्षित नर्सों ने ब्रिटिश अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी और नाइटिंगेल के नर्सिंग सिद्धांतों को पूरी दुनिया तक फैलाया।
1: और नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग ने नर्सिंग को एक पेशे के रूप में भरपूर प्रतिष्ठा दिलवाई और जिसका असर दुनिया भर में दिखाई पड़ा। और इसके बाद इसी की तर्ज पर अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह के स्कूल स्थापित किए गए।
0: उन्होंने अस्पतालों के वार्डों के डिजाइन में भी काफी बदलाव करने का सुझाव दिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोशनी, ताजी हवा के लिए लंबी और ऊंचाई वाली खिड़कियों को लगाने की सलाह दी गई।
1: साथ ही उन्होंने मेडिकल रिफॉर्म के लिए बड़े बड़े अभियान चलाना जारी रखा। उन्होंने खास तौर से ब्रिटिश सेना की हेल्थ सेक्टर में बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया और बदलाव किया। उन्होंने सैनिकों की हेल्थ के लिए शाही आयोग गठित करवाया और फ्लोरेंस के इन सभी प्रयासों से महारानी विक्टोरिया बहुत अधिक प्रभावित हुई।
0: जी हाँ श्रोताओं, यही वजह थी कि महारानी विक्टोरिया के साथ उनकी मुलाकात कई बार हुई और दोनों ने एक दूसरे को पत्र भी लिखे और पत्रों का यह सिलसिला नाइटिंगेल के अंतिम दिनों तक जारी रहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को महारानी विक्टोरिया ने एक नक्काशीदार ब्रॉच भी गिफ्ट किया था जिसे नाइटिंगेल ज्वेल के नाम से जाना जाता है।
1: 1907 में एडवर्ड 7 से ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त करने वाली नाइटिंगेल पहली महिला बनी। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नाइटिंगेल ने 1870 में ब्रिटिश रेड क्रॉस की स्थापना में सहयोग दिया। वह इस युवा संगठन की महिला समिति की सदस्य भी रहीं।
0: फ्लोरेंस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भाषण नहीं दिए, न ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और इतावली भाषाओं पर समान रूप से अधिकार रखने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल कई भाषाओं में धारा प्रवाह बोला करती थी। वो एक बहुत ही अच्छी लेखिका थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने तकरीबन 200 पुस्तकें, लेख और पुस्तिकाएं, साथ ही लगभग 1500 पत्र लिखे होंगे।
1: उनकी लिखी गई किताबों में एक किताब का जिक्र करना चाहूंगा, नोट्स ऑन नर्सिंग, जो जनवरी 1860 में प्रकाशित की गई।

0: तराज होने के बावजूद वे काफी अस्वस्थ भी रहा करती थी, फिर भी जरूरत पड़ने पर राजनेताओं जैसे प्रतिष्ठित लोगों से मिल लिया करती। 90 वर्ष की आयु तक वे जीवित रहीं और सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 13 अगस्त 1910 को अपने घर में ही सोते समय निधन हो गया।
1: नर्स का यदि पूरा मतलब देखा जाए तो एन से नोबल यानी नेक इरादे वाले, यू से अंडरस्टैंडिंग, आर से रिस्पॉन्सिबल, एस से सिंपैथेटिक और ई से एफिशिएंट यानी अपने काम में कुशल।
0: ये सारे शब्द एक नर्स के गुणों, श्रेष्ठता, समझ, जिम्मेदारी, सहानुभूति और कार्यकुशलता को दर्शाते हैं जो मरीजों की सेवा और देखभाल के लिए समर्पित होते हैं।
1: ये सभी गुण फ्लोरेंस नाइटिंगेल में आसानी से दिखाई दिए। कहा जा सकता है कि नर्स की व्याख्या खुद फ्लोरेंस थी या फ्लोरेंस ही व्याख्या थी, जो भी हो, लेकिन उनका पूरा जीवन देखते हुए कहा जा सकता है फ्लोरेंस खुद नर्सिंग की चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी।
0: आज भी उनको उसी शिद्दत से याद किया जाता है और नर्सिंग पेशे से जुड़े लोग उनके जैसे आदर्श स्थापित करने का ही सपना संजोते चले आ रहे हैं।
1: इसीलिए हर साल नर्स सप्ताह को खास तरह से मनाया जाता है। लेकिन जानते हैं इस दिन को सेलिब्रेट करने का चलन कब से शुरू हुआ?
0: इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पहली बार अमेरिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के प्रतिनिधि डोरोथी सदरलैंड ने नर्सों को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। उनके इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर को साल 1953 में मान्यता प्रदान की।
1: इंटरनेशनल नर्सेस काउंसिल द्वारा 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से मनाया गया। 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिवस के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो गया।
0: श्रोताओं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑफिशियली तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा सन 1982 में की, लेकिन इसके साथ ही एक और घोषणा की गई राष्ट्रीय नर्स सप्ताह मनाने की। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस उद्घोषणा पर हस्ताक्षर भी किए,
1: जिसके बाद से 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई और फिर इसे 6 से 12 मई तक राष्ट्रीय नर्स सप्ताह के रूप में विस्तारित किया गया। उसके बाद नर्सों, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज को एक साथ लाने वाले सेरेमनीज, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से इंटरनेशनल नर्सेज वीक आगे चलकर धीरे धीरे एक ग्लोबल इवेंट में तब्दील होता चला गया।
0: हर साल ICN अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के लिए एक खास थीम यानी कि एक खास सब्जेक्ट को चुनता है, जो दुनिया भर में नर्सेज और हेल्थ केयर सिस्टम को अफेक्टिव करने वाली इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पर केंद्रित होता है।
1: खास थीम बनाने और विषय चुनने का उद्देश्य भी यही होता है कि इस खास दिन को बेहतर से बेहतर सेवा को बढ़ावा देना, जागरूकता बढ़ाने और हाई क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ साथ मरीजों के ट्रीटमेंट में ज्यादा से ज्यादा सुधार लाने में नर्सों की विशेष भूमिका की तरफ दुनिया का ध्यान दिलाना होता है।
0: और इस साल यानी कि 2026 की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। और ये विषय एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार को भी उजागर करता है, जब नर्सों को सहयोग, सम्मान, सुरक्षा, सशक्तिकरण मिलता है तो ये बेहतर देखभाल प्रदान कर सकती हैं और अधिक जीवन बचाने में मदद कर सकती हैं। सशक्तिकरण में उनका अपना स्वास्थ्य भी शामिल होता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, देखिए ना, नर्सें अक्सर लंबी शिफ्ट में काम करती हैं, घंटों खड़ी रहती हैं, भावनात्मक दबाव भी बर्दाश्त करती हैं। ये इन्फेक्टेड या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की देखभाल करती हैं। निवारक रेगुलर हेल्थ चेकअप उन्हें अपने स्वास्थ्य संकेतकों के बारे में जागरूक रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत ट्रीटमेंट करने की मदद कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, इस तरह साल 2025 की थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज यानी कि ICN द्वारा घोषित यह थीम नर्सों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा में निवेश के महत्व पर केंद्रित थी।
1: 2024 की थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। इस थीम का उद्देश्य नर्सिंग में निवेश के आर्थिक और सामाजिक लाभों को उजागर करना था। हमारी नर्सें हमारा भविष्य ये थीम थी साल 2023 की।
0: 2022 की थीम चुनी गई थी नर्सें नेतृत्व करने वाली आवाज, नर्सिंग में निवेश करें और वैश्विक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए अधिकारों का सम्मान करें।
1: और 2021 की थीम चुनी गई थी नर्से नेतृत्व करने वाली एक आवाज, भविष्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए एक दृष्टिकोण। ये खास थीम कोविड 19 महामारी के दौरान नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान और भविष्य की स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने में उनकी भूमिका पर केंद्रित थी।
0: श्रोताओं, इसी तारतम्य में 2020 की थीम रही नर्से नेतृत्व करने वाली एक आवाज, दुनिया को स्वास्थ्य की ओर ले जाना। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2019 की थीम नर्से नेतृत्व करने के लिए एक आवाज, सभी के लिए स्वास्थ्य, ये रखी गई थी। ये विषय नर्सिंग पेशे की अहमियत, स्वास्थ्य सेवा में उनके नेतृत्व और 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य देखभाल में योगदान को उजागर करता है।
1: मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सेलिब्रेट करने की थीम चाहे जो भी हो, सबका मकसद सिर्फ यही होता है ताकि दुनिया नर्सों के समर्पण और कड़ी मेहनत को जान सके, पहचान सके, उसे सम्मान दे सके।
0: बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ना, चाहे बीमारी की रोकथाम हो, मरीजों का स्वास्थ्य लाभ हो और या फिर किसी भी तरह की हेल्थ एजुकेशन, सभी जगह नर्सों की भूमिका सबसे ज्यादा खास होती है। एक तरह से नर्स ही मरीज के मेडिकल मैटर्स पर नजर रखने से लेकर ट्रीटमेंट करने और देखभाल करने तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
1: और ये खास दिन नर्सिंग शिक्षा के लिए फंड जुटाने, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर से बेहतर बनाने और मरीजों की सेवा में पूर्ण समर्पण करने वाले मेडिकल स्टाफ की हेल्थ और रिस्पेक्ट करने की याद दिलाता है।
0: बिल्कुल सही, नर्सिंग के महत्व की याद दिलाने की जिम्मेदारी उठाने वाला प्राइम फैक्टर है नेशनल नर्सेस एसोसिएशन यानी कि NAA। इस खास दिन में हम नर्सों के बलिदानों, उनकी सेवाओं के बारे में सीखते हैं और समझते हैं। खास तौर पर महामारी के दौरान इनकी समर्पण भावना के बारे में हमने जाना।
1: 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा नर्सिंग और मिडवाइफरी पर वैश्विक रणनीतिक दिशा निर्देश 2021 से 2026 नीति जारी की गई थी। ये नीति रोजगार, शिक्षा, नेतृत्व और सेवा वितरण को कवर करती है।
0: वास्तव में नर्स मेडिकल स्टाफ की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके योगदान के बिना मरीज का स्वस्थ हो पाना मुश्किल है और बस यही याद दिलाता है इस खास दिन को।
1: इस साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है एक लक्ष्य और खास उद्देश्य के साथ। कोशिश की जाएगी नर्स जिन कठिनाइयों के बीच काम करती हैं, मसलन अत्यधिक टेंशन और स्टाफ की कमी, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और मदद करने के व्यवहारिक तरीकों को प्रोत्साहित किया जाए।
0: और इसी तरह दुनिया भर में रोगियों की देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नर्सों की प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और प्रभाव को स्वीकार और सम्मानित करना, इसके अलावा नर्सों को तत्काल वित्तीय सहायता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी फिजिकल मेंटल सेफ्टी की जरूरतों पर भी ध्यान देना है।
1: हम सैल्यूट करते हैं उन सभी नर्सिंग स्टाफ को जो दिन रात अपने पराए के भेद से परे रोगियों की सेवा में खुद को पूरी तरह समर्पित किए हुए हैं। हम आज के खास दिन विशेष रूप से याद कर रहे थे नर्सिंग पेशे को सम्मान दिलवाने वाली दुनिया की पहली नर्स सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। आज के दिन हम उनको पूरी दुनिया की तरफ से दिल से धन्यवाद देते हैं।
0: और इसी तरह हमें नर्सिंग और नर्सिंग से जुड़े सेवाधारियों के तौर पर फ्लोरेंस के रूप में एक ममतामयी तोहफा मिला है। और ये बिल्कुल सही बात है, बिना नर्सिंग स्टाफ के मेडिकल ट्रीटमेंट और अस्पताल की कल्पना भी मुश्किल सी ही मालूम पड़ती है। आखिर में इतना ही कि ममता, करुणा, दया की जीवंत मूरत, आप माँ नहीं लेकिन माँ से कम भी नहीं। बीमारों को देती हैं जीवन का दान, खामोशी से करती रहती हैं अपना काम। तो श्रोताओं, आज के लिए इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। और नर्सों के योगदान को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, नर्सों को रिस्पेक्ट दीजिए। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तो नर्सों के योगदान को नजरअंदाज मत कीजिएगा, जहां भी वो दिखाई दे उन्हें सम्मान दीजिए। और इसी के साथ चलते चलते मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, वाचन कर रहे थे मैं यानी स्वाति, और मेरे साथ मेरे सहयोगी थे फराज, लेखन था नीना सिंह का। और इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.5।
2: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को स्वर्दिया फराज फयाज और स्वाति गिरी ने 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
0: 8 मेगाहर्ट्ज पर देश का चैनल।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे कार्यक्रम भारतीय वायुसेना आकाश के विजेता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक भारत के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे
2: भारतीय वायुसेना आकाश की विजेता।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: ओ दादू, ये क्या था? इतनी तेज आवाज और कितना तेज उड़ रहा था दादू। वो देखो ना, कितना छोटा दिख रहा है इतनी ऊपर, लेकिन आवाज अब भी कितनी तेज आ रही है।
2: वो कोई आम जहाज नहीं था, वो भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट था।
1: वायुसेना दादू, इसके बारे में बताइए ना। ये सेना युद्ध के समय किस तरह से काम करती है, क्या क्या काम करती है और कब कब काम करती है?
2: अरे अरे अरे रुचि बेटा, थोड़ा आराम से। एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगी, मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा?
1: सॉरी दादू। अच्छा ठीक है, अब मैं एक एक करके आपसे सवाल करूंगी।
2: ये हुई ना बात, चलो अब बाकी की एक्सरसाइज कल करेंगे। तो आज बात करते हैं वायुसेना पर। पहले मैं बेटा बैठ जाऊं कहीं?
1: हाँ दादू बिल्कुल।
2: हाँ तुम भी बैठो बिटिया।
1: हाँ दादू मैं बैठ गई।
2: हाँ अब पूछो, तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल हैं?
1: सवाल ये हैं दादाजी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वायुसेना क्या है।
2: बिटिया भारतीय वायुसेना सिर्फ विमान उड़ाने वाली फोर्स नहीं है।
1: अच्छा,
2: ये देश की हवाई सुरक्षा की ढाल है। ये आसमान में तैनात वो ताकत है जो हर पल हर दिशा से आने वाले खतरे पर नजर रखती है। तुमने तीन सेनाओं के बारे में तो सुना है ना, जिसमें से दो के विषय में हम पहले बात भी कर चुके हैं।
1: थल सेना, नौसेना।
2: वेरी गुड। थल सेना जमीन की रक्षा के लिए, नौसेना समुद्र की रक्षा के लिए, और वायुसेना
1: आकाश की रक्षा के लिए। मतलब अगर कोई दुश्मन आसमान से हमारे ऊपर हमला करे तो उसे वायुसेना ही रोकती होगी।
2: बिल्कुल सही बेटा, और वायुसेना सिर्फ दुश्मन को रोकती ही नहीं, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देती है।
1: दादू, भारतीय वायुसेना का कोई आदर्श वाक्य भी है क्या?
2: हाँ बिटिया, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम्, जिसका मतलब होता है महिमा के साथ आकाश को छूना।
1: वाह दादू, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका अर्थ और भी गहरा होगा, सही कहा ना मैंने?
2: हाँ हाँ बिटिया, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक प्रेरणा है। तुम जानती हो इस वाक्य को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, उस समय अर्जुन देखते हैं एक ऐसा रूप जो तेजस्वी है, जो अनगिनत रंगों से भरा हुआ है, जो आकाश तक फैल रहा है, और उस अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन के मन में आश्चर्य भी होता है और एक गहरा भय भी।
1: मतलब वो दृश्य बहुत शक्तिशाली रहा होगा दादाजी।
2: हाँ बेटा, उसी भावना को ये श्लोक बताता है। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेक वर्णम् व्यात्ताननम् दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिम् नाविन्दामि शमं च विष्णु।
1: इसका भाव क्या है दादाजी?
2: इसका भाव है बेटा, हे प्रभु, आपका रूप इतना विशाल, इतना तेजस्वी है कि वो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। आपकी चमकती आंखें और विराट स्वरूप देखकर मन भय और आश्चर्य से भर जाता है और आत्मनियंत्रण भी डगमगा सा जाता है।
1: लेकिन दादाजी, इस श्लोक का वायुसेना के आदर्श वाक्य से क्या संबंध है भला?
2: बिटिया, जैसे भगवान का वो रूप असीम शक्ति और तेज का प्रतीक था, वैसे ही भारतीय वायुसेना भी अपनी ताकत, गति और तकनीक से दुश्मन को अभिभूत कर देती है। वायुसेना का उद्देश्य है आकाश में इतनी ताकत से उड़ना और पहरा देना कि कोई भी दुश्मन भारत की ओर देखने से पहले कई बार सोचे।
1: दादाजी, मैं समझ रही हूँ। मतलब नभः स्पृशं दीप्तम् सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि वायुसेना की आत्मा है।
2: बिल्कुल बिटिया, ये उस ऊंचाई की पहचान है जहां सिर्फ ताकत नहीं, हम भारतीयों का गौरव भी दिखाई देता है।
1: दादू, अब मैं जब भी आसमान में देखूंगी ना, मुझे वही दीप्त शक्ति याद आएगी।
2: और याद रखना बिटिया, जो आकाश को छूने का सपना देखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं।
1: दादू, पहले के जमाने में तो लोग तलवार और बंदूक से लड़ा करते थे, तो फिर ये वायु सेना कब और कैसे बनाई गई?
2: देखो बेटा, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी तरह समय के साथ युद्ध का तरीका भी बदल गया। पहले युद्ध जमीन पर ही हुआ करते थे, फिर तोपें और जहाज आए, और फिर युद्ध आसमान तक पहुंच गया। जब दुश्मन आसमान से हमला करने लगा तो जरूरत पड़ी एक ऐसी ताकत की जो आसमान में जाकर दुश्मन का मुकाबला कर सके।
1: ओ, अब समझी मैं। दादू, आपने बताया था कि वायुसेना बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर से वही सवाल कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये भी तो बताइए।
2: बिटिया, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी।
1: मतलब आजादी से पहले ही?
2: हाँ बिटिया, और इसकी पहली उड़ान हुई थी 1 अप्रैल 1933 को। उस समय वायुसेना बहुत छोटी थी, सिर्फ 6 अधिकारी और 19 वायु सैनिक थे।
1: मतलब बहुत छोटी सी शुरुआत थी दादाजी।
2: हाँ बेटा, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। उस समय जो विमान थे वे थे वेस्टलैंड वापिती, और इनसे बनाया गया पहला स्क्वाड्रन।
1: दादाजी, ये स्क्वाड्रन क्या होता है?
2: बेटा, स्क्वाड्रन मतलब विमानों और सैनिकों की एक टीम जो मिलकर मिशन पूरा करती है। कुछ ही सालों में 1936 से 1938 के बीच वायुसेना ने उत्तर पश्चिम के इलाकों में भारतीय सेना की मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने मीरान शाह उत्तरी वजीरिस्तान से उड़ान भरकर उस समय के अभियानों में सहयोग दिया।
1: मतलब ये शुरुआत से ही सारी सेना एक साथ काम कर रही थी।
2: हाँ बिल्कुल, फिर धीरे धीरे वायुसेना की ताकत बढ़ती गई और ए फ्लाइट से सन 1936 में बी फ्लाइट बनी, और फिर सन 1938 में सी फ्लाइट, और इस तरह नंबर 1 स्क्वाड्रन पूरी ताकत में आ गया।
1: ओ, यानी धीरे धीरे एक पूरी टीम तैयार की गई थी।
2: हाँ बेटा, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय भारतीय वायुसेना सिर्फ एक ही सक्रिय यूनिट थी, लेकिन तब तक 16 अधिकारी और लगभग 600 से ज्यादा जवान इसमें शामिल हो चुके थे।
1: दादू, ये सेना हमारी रक्षा के लिए समय के साथ बनी, और इतनी छोटी शुरुआत से आज इतनी बड़ी ताकत बन गई दादाजी।
2: बिल्कुल बेटा, बहुत बड़ी ताकत बन गई है।
1: दादू, इतनी बड़ी वायु सेना को कौन संभालता है? इतने सारे विमान, अधिकारी, ये सारा सिस्टम भला कैसे चलता है?
2: बताता हूँ बेटा, अच्छा सवाल है। हर बड़ी ताकत को चलाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व जरूरी होता है। वायुसेना का सिस्टम भी ऐसा ही काम करता है। सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल, यही पूरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख होते हैं।
1: मतलब ये पूरे सिस्टम को चलाते हैं और पूरी वायुसेना की कमान इनके ही हाथ में होती है।
2: बिल्कुल सही बेटा, लेकिन बिटिया, इतनी बड़ी सेना को एक इंसान अकेले नहीं चला सकता, इसलिए उनके नीचे अलग अलग अधिकारी होते हैं जो अलग अलग काम संभालते हैं।
1: वो कैसे दादाजी?
2: ये विभाग तय करता है बेटा कि कहां, कब और कैसे कार्यवाही करनी है। हर विभाग प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करता है। ट्रेनिंग विभाग में जवानों को, पायलट्स को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। तकनीकी विभाग विमान, मशीन और उपकरण सही हालत में रहें, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह लॉजिस्टिक्स, ईंधन, हथियार, खाना, जरूरी सामान सब समय पर पहुंचे, ये काम इस विभाग का होता है।
1: मतलब हर काम के लिए अलग अलग टीम होती है दादाजी।
2: बिल्कुल, यही वजह है कि वायुसेना इतनी सटीक और मजबूत तरीके से काम करती है। और सबसे जरूरी बात, पूरी वायुसेना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है बेटा।
1: मतलब ये सिर्फ सेना नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है दादाजी।
2: हाँ बिटिया, ये सिर्फ एक संगठन नहीं, ये देश की सुरक्षा की रीढ़ है। रीढ़,
1: दादू, जब कोई खतरा आता है तो वायुसेना कैसे काम करती है?
2: देखो बेटा, मान लो रडार पर कोई संदिग्ध विमान दिखाई देता है, तुरंत कंट्रोल रूम अलर्ट होता है, पास के एयरबेस को सूचना दी जाती है, पायलट्स को आदेश मिलता है, कुछ ही मिनटों में फाइटर जेट उड़ान भरता है और फिर हवा में जाकर उस खतरे को पहचानता है और जरूरत हो तो कार्यवाही करता है।
1: वाह दादू, ये तो फिल्मों के जैसा लगता है।
2: अरे बेटा, फिल्में तो हमारे देश के इन असली हीरो से प्रेरणा लेकर बनती हैं।
1: दादू, आपने बताया था कि वायुसेना आसमान से देश की रक्षा करती है, वो कैसे भला? और इनके पास कौन कौन से जहाज होते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं, जरा ये भी तो बताइए।
2: बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। देखो, वायुसेना की असली ताकत है उसके आधुनिक विमान और घातक हथियार। सबसे पहले लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट्स के बारे में सुनो। ये लड़ाकू विमान वो जेट होते हैं जो सीधे दुश्मन से लड़ते हैं, जैसे भारतीय बेड़े की सुखोई 30 MKI। ये बहुत ताकतवर और लंबी दूर तक उड़ सकता है।
1: जी दादू, टीवी पर अक्सर इसके बारे में मैं सुनती रहती हूँ।
2: फिर है बेटा राफेल, जो बेहद ही आधुनिक तकनीक वाला बहुत सटीक हमला करता है। इसके बाद आता है सुखोई, जो भारत का स्वदेशी जहाज है और सबसे तेज और हल्के जेट में आता है।
1: मतलब ये आसमान में ही दुश्मन से लड़ लेते हैं दादाजी?
2: बिल्कुल, यही हमारे आसमान के पैनी नजर वाले योद्धा हैं बेटा।
1: दादू, भारतीय वायुसेना के बेड़े में और कौन कौन से जहाज हैं?
2: ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिनके बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ बेटा। इसके अलावा दो बेहद ही खास विमान भारतीय वायुसेना के पास हैं, C-17 ग्लोबल मास्टर तृतीय, जो भारी सामान ले जाने के लिए है, और C-130 जे सुपर हरक्यूलस, जो कि बेहद ही खास मिशन के लिए उपयोग किया जाता है।
1: ओह, मतलब ये सेना की मदद करते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, इसके अलावा HAL ध्रुव रेस्क्यू और सपोर्ट के लिए AH-64 अपाचे दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निगरानी और रडार, इन विमानों का जखीरा भी हमारे पास है।
1: अच्छा दादाजी, एक सवाल और आता है दिमाग में।
2: पूछो बेटा।
1: क्या कुछ ऐसे विमान भी होते हैं जो सिर्फ नजर रखने का काम करते हो?
2: हाँ बिल्कुल बेटा, DRDO नेत्र और इवाक्स ऐसे ही विमान हैं। ये आसमान में आंख की तरह होते हैं, दुश्मन को पहले ही पहचान लेते हैं।
1: और हथियार?
2: वायुसेना के पास कई तरह के आधुनिक हथियार होते हैं बेटा, जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र, हवा से हवा में मार के लिए बहुत तेज और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है। वहीं लेजर गाइडेड बम, स्मार्ट बम, जो खुद लक्ष्य पहचान लेते हैं और सही जगह जाकर गिरते हैं।
1: साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग दादू।
2: यस इट इज बेटा। आज की वायुसेना सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक भी है। GPS सिस्टम, नाइट विजन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में गिनी जाती है बेटा। एक बात और बेटा, वायुसेना के पास कई तरह के विमान होते हैं।
1: जैसे?
2: जैसे कि फाइटर जेट्स, जो दुश्मन से लड़ने के लिए बहुत तेज और फुर्तीले होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो सैनिक और सामान ले जाने के लिए उपयोगी होते हैं, हेलीकॉप्टर, जिनका उपयोग रेस्क्यू, मेडिकल सहायता, पहाड़ी इलाकों में सपोर्ट के लिए किया जाता है, और निगरानी विमान, जो दुश्मन पर नजर रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: दादाजी, क्या वायुसेना के पास आज के जमाने की ड्रोन और आधुनिक तकनीक भी जुड़ चुकी है?
2: हाँ बिटिया, क्योंकि अब वायुसेना सिर्फ लड़ती नहीं, दुश्मन को देखती है और जरूरतमंद को बचाती है और मदद करती है।
1: दादू, जब वो पायलट इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं या मौसम खराब होने पर कभी कभी तो किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में उन्हें ऊपर से जंप भी करनी होती होगी, तो क्या उन्हें डर नहीं लगता?
2: डर तो बेटा हर इंसान को लगता है, लेकिन सैनिक वो होता है जो डर के बावजूद अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: जो पायलट इतने तेज जेट उड़ाते हैं, उनके पायलट बनने के प्रशिक्षण की शुरुआत कैसे होती है, थोड़ा ये भी तो बताइए।
2: बताता हूँ बेटा, कोई भी पायलट बन सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और मजबूत इरादा।
1: ये तो मैं जानती हूँ दादाजी। आप ये बताइए, वायुसेना में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं?
2: बेटा, अगर तुम 12वीं के बाद जाना चाहो ना, तो एक एग्जाम होता है NDA। उसमें पहले पेपर देना होता है, फिर इंटरव्यू और फिर मेडिकल।
1: और अगर कोई कॉलेज के बाद जाना चाहे तो?
2: तब आता है CDS, यानी ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम देना होता है, फिर इंटरव्यू और बाकी सारी प्रक्रिया।
1: और दादू, वायुसेना का अपना भी कोई एग्जाम होता है क्या?
2: हाँ, बिल्कुल, उसे कहते हैं FCAT, यानी एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये खास वायुसेना के लिए होता है बेटा, जिससे तुम पायलट भी बन सकती हो और ग्राउंड ड्यूटी में भी जा सकती हो। लेकिन बिटिया, इन सब में एक चीज सबसे खास होती है, SSB इंटरव्यू।
1: वो इतना खास क्यों है दादाजी?
2: क्योंकि वहाँ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देखा जाता, वहाँ देखा जाता है तुम्हारा आत्मविश्वास, सोचने का तरीका और मुश्किल समय में तुम कैसे फैसले लेती हो।
1: मतलब वहाँ होती है इंसान की असली पहचान।
2: बिल्कुल, वहीं तय होता है कि तुम वर्दी के लायक हो या नहीं।
1: अच्छा दादू, किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट होने के बाद फिर क्या होता है?
2: असली सफर तो तभी शुरू होता है मेरे बच्चे, जब एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है और यहीं से तैयार होते हैं भारत के भविष्य के पायलट्स।
1: अच्छा दादाजी, ट्रेनिंग के कितने फेज होते हैं और क्या ये आसान होती है?
2: नहीं बिटिया, बिल्कुल आसान नहीं होती। ट्रेनिंग धीरे धीरे एक एक कदम करके होती है। सबसे पहले उन्हें किताबों से समझाया जाता है कि विमान कैसे उड़ता है, हवा में संतुलन कैसे बनाता है, रास्ता कैसे तय करते हैं। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान थ्योरी, एरोडायनामिक्स, नेविगेशन पढ़ाया जाता है।
1: मतलब पहले दिमाग की ट्रेनिंग होती है?
2: हाँ, और फिर आता है सबसे मुश्किल पार्ट, जिसमें पायलट ट्रेनिंग की शुरुआत छोटे छोटे विमान से होती है, धीरे धीरे बड़े और तेज जेट तक पहुंचने के लिए।
1: हो, मतलब धीरे धीरे एक्सपर्ट बनाते हैं। दादाजी, ये तो बड़ा मजेदार है। फिर अगले फेज में क्या होता है?
2: इसके बाद सिखाया जाता है कि अगर युद्ध हो जाए तो क्या करना है, यानी हथियार कैसे इस्तेमाल करने हैं, दुश्मन का सामना कैसे करना है।
1: मतलब असली जंग की तैयारी यहीं से शुरू होती है।
2: हाँ बेटा, यहाँ अपने जीवन को बचाने की तैयारी कराई जाती है। मानो कि अगर पायलट कहीं फंस जाए तो खुद को कैसे बचाए समुद्र में, जंगल में, पहाड़ों में, हर जगह उन्हें जीना सिखाया जाता है बेटा।
1: मतलब उन्हें हर लिहाज से कठोर बनाया जाता है।
2: बिल्कुल बेटा, इसी ट्रेनिंग से एक आम इंसान एक मजबूत सैनिक बनता है, क्योंकि एक पायलट को सिर्फ उड़ना नहीं है बल्कि हर स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए।
1: अच्छा, अब तो आप जान गए होंगे कि मेरा अगला सवाल क्या होगा।
2: पूछो, मैं कैसे जानूंगा जब तक तुम बताओगी नहीं बेटा।
1: दादाजी, मेरा वही सवाल कि क्या लड़कियां भी फाइटर पायलट बन सकती हैं?
2: अच्छा, तो बेटा मेरा भी वही पुराना जवाब, आज की बेटियां तो सारा का सारा आसमान जीत रही हैं बेटा। महिलाएं अब फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, इंजीनियर, यहाँ तक कि ग्राउंड ऑफिसर भी बन रही हैं। वो कहते हैं ना कि आज की नारी सब पर भारी, वो सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि देश की रक्षा भी कर रही है।
1: दादाजी, मतलब मैं भी एयरफोर्स में जाकर एक फाइटर जेट उड़ा सकती हूँ ना, और एक वायु सैनिक भी बन सकती हूँ?
2: बिल्कुल बन सकती हो बेटा, जरूर, और बनोगी भी।
1: दादू, वायुसेना में कौन कौन सी पोस्ट होती है?
2: बिटिया, वायुसेना में इन्हें पोस्ट नहीं, रैंक कहा जाता है, रैंक।
1: और इसकी शुरुआत कैसे होती है?
2: फ्लाइंग ऑफिसर, यहीं से एक ट्रेनिंग का करियर शुरू होता है बेटा। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, फिर एयर मार्शल, और सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल।
1: मतलब जैसे जैसे रैंक बढ़ती है काम भी बदलता रहता है।
2: बिल्कुल बेटा, जितना ऊपर रैंक जाता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है।
1: ओह, मतलब हर रैंक के साथ भरोसा और जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है दादाजी।
2: बिल्कुल बिटिया, यही अनुशासन और जिम्मेदारी वायुसेना को मजबूत बनाती है।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: क्या वायुसेना सिर्फ युद्ध में ही काम आती है?
2: नहीं बिटिया, असली महानता सिर्फ युद्ध में नहीं, सेवा में भी होती है। जब कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, लोग किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तब सबसे पहले वायुसेना उनकी मदद को पहुंचती है।
1: जैसे हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाना, खाना और दवाइयाँ पहुँचाना, ये भी वायुसेना करती है दादाजी।
2: हाँ बेटा, ये सिर्फ लड़ते नहीं, लोगों की जान भी बचाते हैं।
1: आगे आने वाले भविष्य में वायुसेना कैसी होगी दादाजी?
2: आज की तुलना में कई गुना और भी शक्तिशाली होगी बेटा। और भी शक्तिशाली से मेरे कहने का मतलब है कि ड्रोन युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब भविष्य की वायुसेना का हिस्सा होंगे और हमारा भारत ज्यादा सुरक्षित होगा।
1: दादाजी, क्या वायुसेना में भी वीरता पुरस्कार मिलते हैं?
2: हाँ बिटिया, बिल्कुल मिलते हैं। अब तक देश के लिए बहुत से वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कईयों ने वीरता से देश के लिए युद्ध लड़े हैं, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र, वीर चक्र मिलते हैं। और ये बस मेडल नहीं है, बल्कि देश के लिए उन वीरों के बलिदान की असली पहचान है।
1: दादू,
2: हाँ बेटा,
1: आपने युद्धों की बात की, क्या वायुसेना ने कभी कोई बड़ा ऑपरेशन भी किया है?
2: बिल्कुल किया है बिटिया। एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, ऑपरेशन सफेद सागर।
1: ये कब हुआ था दादाजी?
2: देखो बेटा, ये ऑपरेशन हुआ था 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जब दुश्मन ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था।
1: इतनी ऊंचाई पर लड़ाई? वहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल होता होगा दादाजी।
2: हाँ बेटा, यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऑपरेशन में वायुसेना की भूमिका बहुत अहम थी। भारतीय वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई कि वो दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाए और भारतीय सेना की मदद करे। और इसके अलावा वायुसेना का एक और काम था, पहाड़ों में छिपे दुश्मन को बाहर निकालना।
1: लेकिन दादू, इतनी ऊंचाई पर हमला करना आसान तो नहीं रहा होगा?
2: बिल्कुल नहीं बिटिया, वहाँ हवा बहुत पतली होती है, तापमान बहुत कम होता है और लक्ष्य साफ दिखाई नहीं देता है बेटा। फिर भी हमारे वायुसेना के जाबाजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सटीक हमले किए।
1: अच्छा दादाजी, इस ऑपरेशन में कौन कौन से विमान इस्तेमाल किए गए थे?
2: इस ऑपरेशन में कई विमानों का इस्तेमाल हुआ बेटा, जैसे MiG-21, MiG-27, Mirage-2000। तुम्हें पता है, इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका Mirage-2000 की रही, जिसने सटीक बमबारी करके दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: इस ऑपरेशन की और भी खास बातें होंगी ना, वो भी तो बताइए।
2: खास बात तो यही है कि ये पहली बार था जब इतनी ऊंचाई पर एयर पावर का इस्तेमाल हुआ बेटा, और हमारी वायु वीरों को हर सेकंड खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस युद्ध में अद्भुत साहस और कौशल दिखाया।
1: मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ाई लड़ी दादाजी। ऑपरेशन सिंदूर भी तो इसी तरह के साहस का प्रतीक है ना?
2: हाँ बिटिया, यही असली वीरता है। ऑपरेशन सफेद सागर ने कारगिल युद्ध में भारत की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर हमारे गौरव की रक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। ये ऑपरेशन बताता है कि हम कोई भी सीमा पार करके दुश्मन को उसके घर में जाकर सबक सिखा सकते हैं बेटा।
1: दादू, अब समझ में आया कि वायुसेना सिर्फ आसमान में प्लेन्स नहीं उड़ाती, बल्कि जीत और हौसलों के पंखों से देश की रक्षा भी करती है।
2: बिल्कुल मेरी प्यारी बच्ची, जब देश को जरूरत होती है तो ये आकाश के योद्धा इतिहास रच देते हैं।
1: अच्छा दादाजी, ये पासिंग आउट परेड क्या होती है? मैंने कई बार पहले इसके बारे में सुना हुआ है।
2: पासिंग आउट परेड वो खास दिन होता है जब एक कैडेट की कठिन ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, और उसी दिन वो आधिकारिक तौर पर देश की सेना का हिस्सा भी बन जाता है।
1: मतलब ये उनका फाइनल एग्जाम जैसा होता है?
2: हाँ, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम नहीं होता, ये उनके संघर्ष, मेहनत और सपनों का जश्न होता है बेटा। इस दिन सभी कैडेट्स एकदम अनुशासन में एक जैसी चाल में परेड करते हैं।
1: अच्छा दादाजी, उनके परिवार वाले भी इसमें शामिल होते हैं क्या?
2: हाँ बेटा, माता पिता, परिवार सभी आते हैं। अपने बच्चों को वर्दी में देखकर उनकी आंखों में गर्व के आंसू होते हैं बेटा।
1: दादू, ये पल बहुत भावुक पल होता होगा ना?
2: हाँ बेटा, सबसे खास पल होता है। जब कैडेट को उसके विंग्स या रैंक मिलते हैं, उसी पल वो एक प्रशिक्षु नहीं बल्कि देश का रक्षक बन जाता है।
1: मतलब उस दिन उनका सपना सच हो जाता है और सारी मेहनत सफल हो जाती होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, पासिंग आउट परेड सिर्फ एक समारोह नहीं, ये उस वादे का दिन है जब एक जवान कहता है अब मेरा जीवन देश के नाम।
1: दादू, अब समझ में आया, ये सिर्फ परेड नहीं, एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है।
2: और याद रखना बिटिया, वर्दी पहनना आसान नहीं है, इस सम्मान को तो ता उम्र निभाना होता है और वही असली वीरता है।
1: दादू, आपने बताया था कि वायुसेना हर समय आसमान पर नजर रखती है, लेकिन अगर अचानक कोई खतरा आ जाए तो क्या होता है?
2: जब भी आसमान में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो सबसे पहले उसे रडार सिस्टम पकड़ता है। अब तुम पूछोगी कि रडार सिस्टम क्या होता है दादू?
1: हाँ दादू, रडार सिस्टम क्या होता है?
2: रडार सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो बहुत दूर से ही विमान की दिशा, गति और ऊंचाई बता देता है।
1: मतलब बिना देखे ही सब पता चल जाता है?
2: हाँ, उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी स्थिति का आकलन करते हैं। अगर खतरा लगे तो तुरंत आदेश दिया जाता है स्क्रैम्बल।
1: स्क्रैम्बल, ये क्या होता है दादू?
2: इसका मतलब होता है तुरंत उड़ान भरना। पायलट कुछ ही मिनटों में पूरी तैयारी के साथ अपने लड़ाकू विमान लेकर आसमान में पहुंच जाते हैं बेटा।
1: इतनी जल्दी, ये कैसे हो सकता है दादाजी?
2: यही तो ट्रेनिंग और अनुशासन का कमाल है बेटा। पायलट हमेशा स्टैंड बाय मोड यानी पूरी तरह तैयार रहना ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सके।
1: दादू, जब पायलट उड़ान भर लेते हैं तो उन्हें पता कैसे चलता है कि जाना कहाँ है?
2: इसके लिए होता है ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, यानी जमीन पर बैठे अधिकारी पायलट को हर पल निर्देश देते हैं, जैसे किस दिशा में जाना है और कितनी ऊंचाई रखनी है और लक्ष्य कहाँ पर है।
1: मतलब पायलट अकेले फैसला नहीं लेते?
2: नहीं बिटिया, ये एक टीम वर्क होता है। रडार, सैटेलाइट, कंट्रोल रूम और पायलट सब मिलकर मिशन पूरा करते हैं।
1: और जब दुश्मन सामने आ जाता है तब क्या होता होगा?
2: पायलट पहले लक्ष्य को लॉक करता है, यानी अपने सिस्टम से दुश्मन की सटीक पहचान करता है। उसके बाद आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाती है।
1: दादू, ये तो बहुत खतरनाक होता होगा ना?
2: हाँ बिटिया, ये बहुत जोखिम भरा होता है, लेकिन पायलट को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है तेज निर्णय लेना, दबाव में शांत रहना और सटीक हमला करना।
1: एक शिकारी बाज की तरह सोच समझकर हर कदम उठाते होंगे।
2: बिल्कुल, और जब मिशन पूरा हो जाता है तो पायलट सुरक्षित वापस लौटते हैं। इसे कहते हैं मिशन सक्सेस।
1: दादू, अब समझ में आया वायु सेना के इन हीरोज को वायु योद्धा क्यों कहते हैं?
2: बिल्कुल बिटिया, वायु सेना की असली ताकत सिर्फ उसके विमान नहीं बल्कि उसकी सोच, तकनीक और टीम वर्क है।
1: सही दादू, जब तक ये आसमान के पहरेदार आसमान में उड़ान भर रहे हैं, तब तक हम सब बेफिक्र रह सकते हैं।
2: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो बेटा, मैं थक गया हूँ, घर चले?
1: चलिए दादू, घर चलते हैं।
2: चलो।
3: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे आकाश की विजेता भारतीय वायुसेना पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
2: और मैं दीपक नेमा।
3: इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। हमारा अगला कार्यक्रम है आजाद हिंद आज की कड़ी, स्वाधीनता संग्राम सेनानी निर्मला देशपांडे को समर्पित है।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

0: आवाज के इस ऐतिहासिक मंच से आज फिर आजाद हिंद रेडियो के इस कार्यक्रम में मैं इतिहास
1: और मैं इतिहास की सतत साथ ही तारीख आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके समक्ष आज के हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को लाने जा रहे हैं जो समाज सेवा के पथ पर चलते चलते बस कुछ ही समय पहले इस दुनिया की मंजिल से कहीं आगे निकल गई हैं।
0: एक ऐसी महिला जिसने अपना सारा जीवन अपने देश और अपने समाज के नाम कर दिया था, स्वर्गीय निर्मला देशपांडे जी।
1: इतिहास निर्मला देशपांडे जी ने अपना संपूर्ण जीवन गांधीवादी विचारधारा को समर्पित कर दिया था। उनके दैनिक कामकाज में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जो गांधी जी या विनोबा भावे जी के विचारों से पृथक हो।
0: बिल्कुल तारीख, अगर उनके दैनिक जीवन को याद किया जाए तो लगता है कि उनके जीवन में समाज या देश की सेवा के अतिरिक्त कोई और काम था ही नहीं। जीवन पर्यंत सिर्फ यही उनकी रुचि रही, यही उद्देश्य और यही आराधना।

0: निर्मला जी का जन्म नागपुर में विमला और पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के घर 19 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 11 वर्ष की उम्र से ही निर्मला जी को गुड़ियों से खेलने के बजाय अपने आसपास के लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। तब से जीवन के अंत तक बिना किसी पुरस्कार या पारिश्रमिक की आशा के वो अपना कार्य सतत करती रहीं। अपने विद्यार्थी जीवन से ही निर्मला जी गांधी जी के सादे जीवन और ऊंचे आदर्शों से बहुत प्रभावित थीं। एक बार जब उन्हें विनोबा भावे जी से मिलने का अवसर मिला तो निर्मला जी ने उस छोटी सी उम्र में ही विनोबा जी से देश सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। उस समय विनोबा जी ने उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने की सलाह दी और फिर एक दिन निर्मला जी ने एमए पूरा करते ही विनोबा जी के चरणों को अपनी सतत समाज सेवा के पथ का पहला पड़ाव बना लिया।
1: विनोबा जी के सानिध्य में आते ही निर्मला जी विनोबा जी और गांधी जी के अहिंसात्मक सिद्धांतों का पालन करने लगी। खादी पहनने, सूत कातने, शाकाहारी भोजन करने और सत्य का पालन करने जैसे नियम वैसे भी निर्मला जी के लिए कोई नए तो थे नहीं, क्योंकि ये नियम तो उन्हें अपने देशभक्त माता पिता से ही सीखने को मिले थे। निर्मला जी के पिता को मराठी साहित्य अनामिकाची चिंतनिका में उत्कृष्ट काम के लिए 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
0: जिस समय निर्मला जी ने विनोबा जी का सानिध्य प्राप्त किया उस समय विनोबा जी भूदान आंदोलन में व्यस्त थे। विनोबा जी ने निर्मला जी को जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम सौंपा वह था इस आंदोलन के अंतर्गत पढ़ने लिखने का काम। ये काम महत्वपूर्ण और उनकी रुचि का तो था, लेकिन वो जमीनी स्तर पर समाज सेवा करने के लिए छटपटाती रहती और जब भी उन्हें ऐसा कोई अवसर मिलता तुरंत उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ती।
1: फिर भी तारीख निर्मला जी ने भूदान आंदोलन के दौरान अपने आचार्य विनोबा भावे जी के विचारों को लिपिबद्ध किया और समय समय पर होने वाले उनके भाषणों को भी लिख लिया। उन्होंने नूतन नामक पत्रिका का संपादन भी किया जिसमें गांधी एवं विनोबा जी के विचारों का संग्रह एवं उनसे संबंधित लेख आदि हुआ करते थे। आंदोलन के दौरान निर्मला जी ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संदेश को लेकर भारत भर में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। निर्मला जी ने स्वीकार किया कि गांधीवादी सिद्धांतों का अभ्यास कठिन है, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कि पूर्ण लोकतांत्रिक समाज की प्राप्ति के लिए यही एक रास्ता है।
0: इतिहास मुझे एक बार का किस्सा याद आ रहा है, जब इंदौर के एक गांव कस्तूरबा ग्राम में शांति भंग हो गई थी और वहां शांति को पुनः स्थापित करने के लिए विनोबा जी नारी कल्याण हेतु चलाई जा रही शांति सेना की व्यवस्था का कार्यभार किसी योग्य प्रबंधक को सौंपना चाहते थे। उन्होंने अपने पास में बैठे निर्मला जी की ओर गौर से देखा और समाधान उन्हें अपने बगल में बैठा दिखाई दे गया। उन्होंने निर्मला जी से वार्तालाप किया और उन्हें इंदौर जाने के लिए राजी कर लिया। आखिर इंदौर के कस्तूरबा ग्राम को निर्मला जी से ज्यादा अनुशासित व योग्य प्रबंधक कौन मिल सकता था, और इस प्रकार निर्मला जी को शांति सेना का निर्देशक बनाकर इंदौर भेज दिया गया।

0: वहां पहुंचकर निर्मला जी ने अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए सर्वप्रथम एक ऐसा शांति शिविर स्थापित किया जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहां उन्होंने उन सभी महिलाओं को अक्षर ज्ञान के साथ सिलाई कढ़ाई का भी प्रशिक्षण दिया, साथ ही उन्हें गांधीवादी विचारों से भी परिचित कराया ताकि यही महिलाएं इन विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें। निर्मला जी के पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भी शांति सेना के कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आई। एक दो दफा जो दिक्कतें आई भी उन्हें निर्मला जी ने अपनी शांतिपूर्ण सूझबूझ के कारण सुलझा दिया।
1: इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात निर्मला जी ने बस्तर के जंगलों की ओर अपनी समाज सेवा यात्रा के मार्ग का अगला पड़ाव खोजा। वहां वे बस्तर के आदिवासियों के साथ रहीं और उनके साथ काम करने का अवसर पाया। बस्तर में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लगभग 4000 आदिवासी बच्चों और महिलाओं को साक्षर बनाया तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में स्वयं तथा बस्ती की सफाई जैसे मूलभूत ज्ञान से परिचित भी कराया, जिससे बस्तर का क्षेत्र पहले से अधिक साफ स्वच्छ एवं कुछ मूलभूत सुविधाओं से युक्त दिखाई दिया।
0: तारीख, निर्मला जी की गतिविधियाँ सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। ये गतिविधियां जनसंपर्क को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं जैसे एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ एशिया तथा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के माध्यम से एशिया के अन्य देशों में भी फैल गई थी। निर्मला जी की विश्व बंधुत्व में गंभीर आस्था थी। वो हमेशा से एक ऐसे विशाल विश्व परिवार की कल्पना करती थी जिसमें हर स्त्री पुरुष बिना किसी रंग भेद के प्रेम और पारस्परिक सहिष्णुता के साथ रह सके। इसी सपने को अपने दिल में रखे हुए उन्होंने अन्य देशों में भी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। वो सदा भारत पाकिस्तान मैत्री के लिए प्रयत्नशील रहीं और इस हेतु उन्होंने कई दफा पाकिस्तान की यात्रा भी की। वे जीवन भर दोनों देशों में शांति के साथ आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की पक्षधर रहीं।

0: और इतिहास जैसा कि हर मनुष्य के जीवन में कई प्रश्न सामने आकर खड़े होते हैं, निर्मला जी के मन में भी हुए। जब एक बार उनके मन में संन्यास का पौधा अंकुरित हुआ, जब निर्मला जी अपने उस प्रश्न को लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंची, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि संन्यास तो पलायन का दूसरा नाम है। उन्होंने उन्हें आभास कराया कि संन्यास लेने पर तुम्हें समाज से दूर जाना होगा, जो कि ना तो सही है और ना तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुकूल। इस बात का अनुभव होते ही निर्मला जी ने संन्यास का विचार तुरंत त्याग दिया और समाज सेवा के कार्य में जुट गईं।
1: निर्मला जी को पंजाब और कश्मीर में हिंसा की चरम स्थिति पर शांति मार्च के लिए जाना जाता है। 1994 में कश्मीर में शांति मिशन और 1996 में भारत पाकिस्तान वार्ता आयोजित करना उनकी दो मुख्य उपलब्धियों में शामिल है। चीनी दमन के खिलाफ तिब्बतियों की आवाज को बुलंद करना भी इनके दिल के करीब था।
0: निर्मला जी ने अपना जीवन सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं, आदिवासियों और अवसर से वंचित लोगों की सेवा में अर्पण कर दिया। निर्मला जी ने हिंदी में अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें से एक को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा उन्होंने ईशा उपनिषद पर टिप्पणी और विनोबा भावे की जीवनी लिखी है।
1: निर्मला जी 1997 से 2007 तक राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहीं। 2007 में हुए भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उनके नाम पर भी विचार किया गया। उन्हें 2006 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनकी उम्मीदवारी रखी गई थी। 13 अगस्त 2009 को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज से वो सम्मानित हुईं।
0: बिल्कुल, इतिहास मुझे याद है निर्मला जी के वो शब्द जो उन्होंने बस्तर आदिवासियों से कहे थे, जो समस्या वार्ता से सुलझाई जा सकती है उसे सुलझाने का कोई और बेहतर उपाय नहीं हो सकता। हिंसा से हिंसा बढ़ती है और अगर कोई बात हिंसा से सुलझा भी ली जाए तो उसका हल स्थायी नहीं होता। विश्व में आदिकाल से अनेक युद्ध लड़े गए हैं, परंतु प्रत्येक युद्ध अगले युद्ध का बीजारोपण ही साबित होता है। अहिंसात्मक समाधान सदा स्थायी रहा है।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: जैक्स स्पेक्स और जापानी मर्सेनरी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी निर्मला देशपांडे को समर्पित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग 1615 में हेराडो के सकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापारी जैक्स स्पेक्स ने भटकते हुए लोगों की एक बेचैन भीड़ को देखा और उसमें एक साम्राज्य के उद्धार का रास्ता पाया। उस समय वीओसी सैन्य जनशक्ति के पुराने संकट से जूझ रही थी। यूरोपीय सैनिक महंगे थे, देरी से पहुंचते थे और अक्सर 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे। स्पेक्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी के मोहरे के रूप में काम करने के लिए साहसी पुरुषों की एक व्यवस्थित भर्ती शुरू करें। ये कोई गुप्त अभियान नहीं था। टोकुगावा शोगुन की स्पष्ट सहमति के साथ स्पेक्स ने हेराडो की लड़खड़ाती फैक्ट्री को एक रणनीतिक भर्ती केंद्र में बदल दिया। जॉन पीटरजून कोएन जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जापानियों को एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति के रूप में देखते थे, जिनका मानना था कि ये योद्धा केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल पर स्थानीय आबादी को शांत कर सकते हैं। स्पेक्स का नवाचार उन कठोर अनुबंधों में था जो उन्होंने इन उत्तेजित जुझारू रंगरूटों को भरोसेमंद सैनिक बनाने के लिए तैयार किए थे। 31 दिसंबर 1615 को उन्होंने 59 रंग रूटों के एक दल को 3 साल के पूर्ण आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया, जिसमें उन्होंने डच अधिकारियों को कभी भी जवाब न देने का संकल्प लिया। ये समझौते विशेष रूप से डरावने थे क्योंकि इनमें सामूहिक दंड का प्रावधान था। यदि कोई सैनिक विद्रोह करता तो वीओसी जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी, बच्चों और गारंटरों को सजा देने का अधिकार रखती थी। स्पेक्स ने इस सैन्य दल को विशेष हथियारों से लैस रखा था। जापानी आग्नेयास्त्र, धनुष बाण, अलग अलग लंबाई के अनेक भाले। ये दस्ता फॉर्च्यून नामक एक स्थानीय जहाज पर सवार हुआ, जिसे स्पेक्स ने विशेष रूप से इस यात्रा के लिए खरीदा और मरम्मत करवाया था। हालांकि पेशेवर भाड़े के सैनिकों का सपना जल्द ही एक कड़वी हकीकत में बदल गया। 4 महीनों तक रंगरूट हेराडो में ही रहे, जहां शहर के शराब खानों और जुआघरों ने उनके बीच असंतोष पैदा कर दिया। ओसाका से भर्ती किए गए कप्तान कुस्नुकिजी इत्सिमोन के अकुशल नेतृत्व में बाटन की 51 दिनों की कठिन यात्रा के दौरान ये दल विद्रोह के करीब पहुंच गया। स्पेक्स ने खुद बाद में तर्क दिया कि तलवार ही एकमात्र दवा थी जिसे ये सैनिक वास्तव में समझते थे। हालांकि इन सैनिकों ने बांदा द्वीपों के क्रूर दमन और बाजार की झड़पों में असाधारण निडरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कई डच अधिकारियों की नजर में वे हमेशा एक विद्रोही भीड़ ही रहे। ये प्रयोग अंततः 1623 के अम्बोइना साजिश के बाद पूरी तरह विफल हो गया, जिसके बाद वीओसी ने जापानी सैनिकों पर हमेशा अविश्वास रखने का फैसला किया। भले ही जैक्स स्पेक्स का डच झंडे के नीचे जापानी सैनिकों की लंबी कतारें मार्च कराने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एशियाई सैनिकों की व्यवस्थित भर्ती का वो बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया जिसने अंततः पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यों की सफलता को परिभाषित किया।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब प्रस्तुत है सांस्कृतिक समाचारों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल द्वारा 11 से 13 मई तक कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए साइंस स्पार्कल कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल और रोचक प्रयोगों के माध्यम से समझाना था। कार्यशाला के दौरान बच्चों ने विज्ञान को केवल किताबों तक सीमित न रखते हुए स्वयं प्रयोग कर सीखने का अनुभव प्राप्त किया। भोपाल निवासी आदित्य सहारिया ने संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय वन सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 21 प्राप्त कर शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में इस बार भोपाल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कॉमर्स, PCM, PCB और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में छात्रों ने उत्कृष्ट अंक हासिल कर यह साबित किया कि सफलता केवल लंबे समय तक पढ़ने से नहीं बल्कि नियमितता, अनुशासन और सही रणनीति से मिलती है। हम थिएटर ग्रुप की ओर से स्मरण हबीब 22वें रंग आलाप नाट्य महोत्सव का आयोजन 8 से 12 जून तक किया जाएगा। महोत्सव की सभी प्रस्तुतियां शाम 7 बजे रविंद्र भवन स्थित अंजनी ऑडिटोरियम में होंगी। इसके साथ ही हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ख्वाजा अहमद का मिशन 1665, जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा। 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तांत्रिक केंद्र बटाविया कैसल के डक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार गवर्नर और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृत्तांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। ये एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। ये मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और अरकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा हुआ था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, VOC को तुरंत अपनी अराकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यवहारिक कारणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि वो दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद की मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए VOC ने अंततः अराकान में अपना लॉज यानी व्यापारिक केंद्र बंद कर दिया। ये दुर्लभ मिशन दिखाता है कि शक्तिशाली दिखने वाले यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया था कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता।

1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे। ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रैगनोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनोर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे।

0: स्वामी विवेकानंद लंदन से न्यूयॉर्क आए। वहां उनका व्याख्यान, शिक्षा और पुस्तक रचना का कार्य शुरू हुआ। उनके व्याख्यान से सर्वत्र एक महान उत्साह की सृष्टि होती थी, जिसका वर्णन करते हुए न्यूयॉर्क के सर्वाधिक लोकप्रिय संवाद पत्र न्यूयॉर्क हेरॉल्ड ने अपने 19 जनवरी 1896 के अंक में लिखा था।
1: आज के न्यूयॉर्क के समाज में स्वामी विवेकानंद नाम के किसी स्वामी ने जन मंडली को मुग्ध कर रखा है, और इन लोगों में धन एवं विद्वता का अभाव हो ऐसी बात नहीं। ये नाम है भारत से आए मटमैले रंग के एक सज्जन का, जो पिछले वर्ष भर से इस महानगरी में प्राच्य धर्म, दर्शन तथा साधना के कुछ रूपों का प्रचार करते हुए यशोकीर्ति की उपलब्धि करते रहे हैं। पिछली सर्दियों में 5th Avenue के एक प्रमुख होटल के स्वागत कक्ष में उनके भाषण होते रहे। स्वयं तथा अपनी विषय वस्तु के प्रति उच्चतर समाज की काफी स्वीकृति पा लेने के बाद अब वे सर्वसाधारण में प्रचार करने को उत्सुक हैं, और इसी उद्देश्य से हार्डमन हॉल में प्रति रविवार को निःशुल्क एक व्याख्यान की श्रृंखला चला रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रयास काफी सफल रहा है।
2: स्वामी जी की कक्षाओं तथा व्याख्यानों की जो प्रामाणिक प्रतियां उपलब्ध हैं, उनके लिए हम मुख्यतः गुडविन के ही ऋणी हैं। परंतु उस काल के व्याख्यानों का जो धारावाहिक लेखमाला ब्रह्मवादीन पत्रिका के 8 अंकों में प्रकाशित हुआ था, उसका कुछ अंश स्वामी जी ने स्वयं लिखकर भेजा था। कृपानंद ने उनका टंकन किया। इसके लिए कृपानंद ने श्रीमती बुल से आर्थिक सहायता लेकर $5 मासिक भाड़े पर एक टाइपराइटर ले लिया था।
0: कृपानंद ने ब्रह्मवादीन पत्रिका में लिखा था,
3: उनकी कक्षाओं में उपस्थित रहने वालों की सर्वदा बढ़ती हुई संख्या तथा उनके रविवारीय सार्वजनिक व्याख्यानों में आने वाली श्रोताओं की भारी भीड़ इस बात का सूचक है कि उनके उपदेशों ने लोगों के मन में कैसा व्यापक आग्रह पैदा कर दिया है। इसका सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण ये है कि वेदांत संबंधी साहित्य की मांग बढ़ती ही जा रही है, और ऐसे लोगों के मुख से संस्कृत शब्द उच्चारित हो रहे हैं जहाँ से हम उन्हें सुनने की बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा, पुरुष, प्रकृति, मोक्ष तथा इसी प्रकार के अन्य शब्द अमेरिकी भाषा में अपना लिए गए, और शंकराचार्य एवं रामानुज के नाम बहुतों के लिए हक्सले तथा स्पेंसर के समान ही सुपरिचित हो चले हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय भारत संबंधी पुस्तकों के पीछे दौड़ रहे हैं। मैक्स मुलर, कोलब्रुक, डायसन, बनोफ तथा हिंदी दर्शन पर अंग्रेजी में लिखने वाले सभी लेखकों की किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं।
0: उन्हीं दिनों डॉक्टर स्ट्रीट ने स्वामी जी से संन्यास लिया। वे न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित समाज में सुपरिचित थे, इसीलिए चारों ओर खलबली मच गई। पत्र पत्रिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर संवाद छपने लगे। एक ने लिखा था,
1: जो लोग स्वामी विवेकानंद के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, उन लोगों के जीवन में कल्याण साधन करने की स्वामी जी में असीम क्षमता है। ये घटना इसी बात का प्रमाण है, पहले जो लोग दूर से ही स्वामी जी को केवल प्रशंसा भरी नजरों से देखते थे, अब उनमें से भी कोई कोई उनके अनुरागी भक्त हो गए और दीक्षा तथा ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करने लगे हैं। 20 फरवरी को इनमें से अनेक लोगों को स्वामी जी से मंत्र दीक्षा मिली। अमेरिकी जनसाधारण का इन दिनों स्वामी जी के साथ बड़ा अपनत्व हो गया है।
0: इसी अवस्था को ध्यान में रखकर कृपानंद ने विनोदपूर्ण शैली में लिखा था,
3: भारत को चाहिए कि वो स्वामी जी पर अपने स्वामित्व का दावा अभी स्पष्ट कर ले। यहाँ के लोग अब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विश्वकोश के लिए उनकी जीवनी लिखकर उन्हें अमेरिकी नागरिक का दर्जा प्रदान करने ही वाले हैं। जैसे होमर का जन्मस्थान होने का सम्मान पाने के लिए 7 नगरों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, वैसे ही संभव है भविष्य में 7 देश हमारे आचार्य देव पर अपनत्व का दावा करें और इस प्रकार भारत को अपने एक सर्वश्रेष्ठ संतान की जननी होने के गौरव से वंचित कर दें।
0: सिर्फ 1-2 नहीं, अनेकों अमेरिकी वासियों ने स्वामी जी के बारे में, उनके व्याख्यानों और भाषणों के बारे में संवाद पत्रों, पत्र पत्रिकाओं या संस्मरणों में लिखा था। एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवियत्री श्रीमती एमा हवीलर विलकॉक्सी भी उनमें से एक थी। स्वामी जी से मुलाकात के बारे में याद करके उन्होंने लिखा था,
4: एक वर्ष पूर्व एक दिन शाम को मैंने सुना कि मेरे आवास से मात्र एक ब्लॉक की दूरी पर भारत से आए दर्शन के प्रचारक एक विवेकानंद नामक व्यक्ति का भाषण होगा। कौतूहलवश हम यानी मैं और मेरे पति भी वहां गए और श्रोताओं के बीच बैठकर भाषण सुनते हमें 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमने अपने आप को एक अत्यंत सूक्ष्म सजीव तथा अद्भुत जगत में उन्नीत महसूस किया और हम लोग व्याख्यान के अंत तक प्रायः सांस रोके मंत्रमुग्ध से बैठे रहे। व्याख्यान समाप्त हो जाने पर हम नए साहस, नई आशा, नए बल, नए विश्वास के साथ दैनंदिन जीवन में लौट गए। मेरे पति बोले, ईश्वर और जीवन के बारे में यही धारणा तो मैं ढूंढता फिर रहा था और इसके बाद महीनों तक वे मुझे साथ लेकर स्वामी विवेकानंद के मुख से प्राचीन धर्म की व्याख्या सुनने और उनके अद्भुत मन से निस्तृत सत्य तथा आशाप्रद एवं शक्तिदायी विचारों का संग्रह करने जाते रहे।
2: उन दिनों अमेरिकी समाज आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हवीलर उन भयंकर दिनों को याद करके लिखती हैं।
4: वे उस महान आर्थिक संकट के भयंकर जाड़ों के दिन थे जब बैंक फेल हो चुके थे, कंपनियों के शेयर फटे गुब्बारों के समान नीचे उतर रहे थे, व्यापारी लोग निराशा की अंधेरी घाटी से होकर गुजर रहे थे और पूरी दुनिया ही उलट पलट गई सी प्रतीत हो रही थी। कभी कभी चिंता और अनिद्रा में कई रातें बिताने के पश्चात पतिदेव मुझे साथ लेकर स्वामी जी का व्याख्यान सुनने जाते और फिर बाहर निकलकर जाड़े की अंधेरी रात में सड़क पर चलते हुए मुस्कुराहट के साथ कहते,
5: स्वामी जी बोल रहे थे ना कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे बड़ी शांति मिली, मेरा अशांत मन शांत हो गया है। अब कल से मैं अपनी सामान्य दिनचर्या कायम कर सकूंगा। अब मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। उस व्यक्ति में गजब का हीलिंग पावर यानी उपचार करने की शक्ति है। लोगों को अवसाद से, मानसिक तनाव से पल भर में उबार कर आनंद के द्वार पर खड़ा कर देते हैं।
2: हवीलर दंपति सिर्फ भाषण सुनकर संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने इस अद्भुत धर्म का अध्ययन करना प्रारंभ किया। भारतीय दर्शन के वे कायल हो गए। बाद में उन्होंने लिखा,
4: विवेकानंद हमारे बीच में एक संदेश लेकर आए थे। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें किसी नए विश्वास में रूपांतरित करने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने ही विश्वास में प्रतिष्ठित रहो। मैं मेथोडिस्ट को एक बेहतर मेथोडिस्ट, प्रेसिबिटेरियन को एक बेहतर प्रेसिबिटेरियन और यूनिटेरियन को एक बेहतर यूनिटेरियन बनाना चाहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसने व्यवसायी को बल दिया, चंचल स्वभाव की सामाजिक महिला को थोड़ा रुक कर सोचने को मजबूर किया, कलाकार को नई प्रेरणा दी और पत्नी एवं माता, पति एवं पिता के प्रति लोगों में एक बेहतर एवं पवित्रतर कर्तव्य बोध का संचार किया।

0: दिसंबर का महीना खत्म हो रहा था। बड़े दिन यानी क्रिसमस के उपलक्ष में श्रीमती ओली बुल ने स्वामी जी को निमंत्रण भेजा। स्वामी जी आमंत्रण स्वीकार कर बोस्टन गए। वहां कैम्ब्रिज की महिलाओं द्वारा बुलाए जाने पर उन्होंने भारतीय नारी जाति का आदर्श विषय पर एक सुंदर व्याख्यान दिया। वहां की महिलाएं इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने स्वामी जी को बिना बताए कलकत्ते में उनकी माँ को धन्यवाद देकर पत्र लिखने का विचार किया। बालक ईसा और मैरी माता के एक चित्र के साथ उन्होंने भुवनेश्वरी देवी को पत्र लिखा।
1: जगत के कल्याण की जननी मेरी माता के दान स्वरूप ईसा मसीह के आविर्भाव का दिन हम आज उत्सव के आनंद में बिता रही है। अपने बीच में आपके पुत्र को पाकर आज हम आपका श्रद्धा के साथ अभिवादन कर रही हैं। आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से भारत में मातृत्व के आदर्श के संबंध में भाषण देकर उन्होंने हमारे नर नारी और बच्चों का महान उपकार किया है। उनकी मातृ पूजा श्रोताओं के हृदय में शक्ति व उन्नति की उच्चाकांक्षा जगा देती है। आपकी संतान में आपके जीवन व कार्य का जो प्रभाव प्रकट हुआ है उसकी सम्यक रूप से उपलब्धि करती हुई हम आपकी सेवा में अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट कर रही है। भ्रातृत्व व एकता के जो नियंता है उस ईश्वर का मंगल आशीर्वाद समग्र पृथ्वी पर फैल जाए। हृदय में इस आकांक्षा को लेकर आपका जीता जागता आदर्श उन्हें कार्य क्षेत्र में सदा अनुप्राणित करें, यही हमारी दुआ है। इस बात के साथ ही हमारी कृतज्ञता आप स्वीकार करें।
2: बोस्टन से डिट्रॉइट होकर स्वामी जी न्यूयॉर्क लौट आए। वहां उन्होंने वेदांत चर्चा और योग की शिक्षा के लिए एक स्थायी केंद्र बनाने का निश्चय किया।
0: इधर इंग्लैंड से बार बार निमंत्रण आने लगा। ये पहले से ही निश्चित था कि स्वामी जी इंग्लैंड से भारत लौटेंगे। तदनुसार शिष्य व भक्तों के साथ परामर्श करके स्वामी जी ने स्थायी रूप से न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। प्रसिद्ध धनी श्री फ्रांसिस एच लेगेट महोदय गुरुदेव की सम्मति व इच्छा के अनुसार इस सोसाइटी के सभापति बने। भगिनी हरिदासी को स्वामी जी ने आशीर्वाद देकर योग शिक्षिका नियुक्त किया। स्वामी कृपानंद, अभयनंद, योगानंद तथा कुछ ब्रह्मचारी प्रचारक नियुक्त हुए।
2: असाधारण दानशील कुमारी मैरी फिलिप, आर्थर स्मिथ, श्री व श्रीमती वॉल्टर गुडायर तथा प्रसिद्ध गायिका कुमारी एमा थर्सबी आदि न्यूयॉर्क के नामी शिष्य व शिष्याएं उत्साह से समिति का कार्य चलाने लगे। शिष्य वर्ग की सम्मति व अनुरोध से स्वामी जी ने अपने गुरु भाई सारदानंद जी को शीघ्र इंग्लैंड की ओर यात्रा करने के लिए पत्र लिखा। इंग्लैंड से इस स्वामी को न्यूयॉर्क में भेजने का वचन देकर स्वामी जी ने 15 अप्रैल सन 1896 ईस्वी को फिर से लंदन की ओर प्रस्थान किया।
0: सन 1896 ईस्वी के 15 अप्रैल को स्वामी जी ने न्यूयॉर्क से व्हाइट स्टार लाइन के जर्मनिक नामक जहाज में लिवरपूल के लिए प्रस्थान किया। लिवरपूल से वे रीडिंग में स्थित स्टर्डी के मकान पर गए। इंग्लैंड पहुंचकर रीडिंग से अपने 20 अप्रैल के पत्र द्वारा उन्होंने हेल बहनों को लिखा।
3: यात्रा सुखद रही और इस बार कोई बीमारी नहीं हुई। समुद्र पीड़ा से बचने के लिए मैंने स्वयं ही अपनी चिकित्सा कर ली थी। आयरलैंड के बीच से होकर तथा इंग्लैंड के कुछ पुराने नगरों को देखते हुए मैं एक चक्कर लगाया और अब पुनः रीडिंग में ही ब्रह्म, माया, जीव, जीवात्मा और परमात्मा आदि के बीच हूं। दूसरे सन्यासी भी यहां हैं। इस समय हम लोग ग्रंथों के संपादन में लगे हुए हैं। रास्ते में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। यात्रा मेरे जीवन के समान ही अत्यंत नीरस, एकरस तथा गद्यमय रही। जब मैं अमेरिका के बाहर जाता हूं तभी उसके प्रति अधिक प्रेम उमड़ता है। जो भी हो, जीवन का अब तक जितना अंश बीता है उसमें वहां बीते कुछ वर्ष ही सर्वोत्तम रहे हैं।
0: अमेरिका से आचार्य देव का पत्र पाकर स्वामी सारदानंद बिना विलंब इंग्लैंड में उपस्थित हो गए थे और अप्रैल मास के प्रारंभ से स्टर्डी साहब के अतिथि के रूप में निवास करते हुए पूर्व स्थापित आलोचना समिति में धर्म का उपदेश दे रहे थे। स्वामी जी अप्रत्याशित रूप से उन्हें स्टडी साहब के मकान पर देख आनंद विभोर हो उठे। कहना ना होगा कि शारदानंद जी भी बहुत समय से लापता नरेंद्रनाथ को देखकर बहुत ही आनंदित हुए। आचार्य देव उत्सुकता से आलम बाजार मठ व दूसरे श्री रामकृष्ण भक्तों का कुशल समाचार जानकर निश्चिंत हुए।
2: शारदानंद और स्वामी जी ने लंदन के सेंट जॉर्ज लेन में कुमारी मुलर व श्री स्टर्डी के अतिथि के रूप में रहते हुए पूर्ण उद्यम व उत्साह से प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद के फिर वापस आ जाने का शुभ समाचार सुनते ही सैकड़ों स्त्री पुरुष उनका दर्शन करने तथा उनके उपदेश सुनने के लिए आने लगे। समाचार पत्रों में उनके कार्य प्रणाली की विस्तृत खबरें प्रकाशित होने लगी। मई मास के प्रारंभ से स्वामी जी नियमित रूप से शिक्षा दान व प्रश्नोत्तर कक्षाओं को चलाने लगे और ज्ञान योग पर भाषण देने लगे। मई महीने के बाद में उन्होंने भक्ति कर्म और योग के संबंध में कुछ उत्कृष्ट भाषण दिए। क्लब सभा समिति

0: अंध पौतलिकता के अपवाद से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे ऐसे एक उन्नत व समुज्ज्वल भाव में प्रतिष्ठित कर दिया है कि उसके प्रति मानव जाति की श्रद्धा हुए बिना नहीं रह सकती। बुधवार के दिन बारिश होते हुए भी काफी संख्या में भद्र पुरुष व महिलाएं श्रीमती मार्टिन का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुई थी। यहाँ तक कि राज परिवार के भी कुछ व्यक्ति गुप्त रूप से इस सभा में उपस्थित थे।
1: उन्हीं दिनों स्वामी जी के जीवन में एक स्मरणीय घटना घटी, वो है विश्व विख्यात प्रोफेसर मैक्स मुलर से मुलाकात होना।
2: विशेष रूप से आमंत्रित होकर स्वामी जी ने ऑक्सफोर्ड में जाकर 28 मई को विश्व विख्यात प्रोफेसर मैक्स मुलर के साथ साक्षात्कार किया। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इससे पहले 19th सेंचुरी नामक पत्रिका में श्री रामकृष्ण के संबंध में प्रकृत महात्मा शीर्षक से जो निबंध लिखा था, उसे पढ़कर स्वामी जी ने पहले से ही इनसे साक्षात्कार करने का निश्चय किया था। मैक्स मुलर साहब ने कहा,
3: श्री रामकृष्ण के संपर्क में आकर केशव चंद्र के धर्म मत के एकाएक परिवर्तन होने से सबसे पहले उसकी ओर मेरी दृष्टि आकृष्ट हुई। उस समय से ही उस महात्मा की जीवनी व उपदेश के संबंध में जहाँ पर जो कुछ मिला उसको मैं श्रद्धा तथा भक्ति से पाठ करता आ रहा हूँ। यदि आप मुझे आवश्यक साधनों का संग्रह कर दे सकें तो मैं श्री रामकृष्ण की एक जीवनी लिखने के लिए तैयार हूँ।
1: स्वामी जी बड़े हर्षपूर्वक सहमत हो गए। कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर मैक्स मुलर द्वारा रचित श्री रामकृष्ण की जीवनी व उपदेशों नामक विख्यात ग्रंथ प्रकाशित हुआ। उस पुस्तक द्वारा स्वामी जी के पाश्चात्य देशों में प्रचार कार्य की यथेष्ट सहायता हुई थी।
2: भारत वर्ष के संबंध में प्रोफेसर मैक्स मुलर के असीम ज्ञान का परिचय पाकर स्वामी जी बड़े विस्मित हुए। भारत वर्ष के प्रति प्रोफेसर के प्रेम ने स्वदेशी प्रेमी सन्यासी को मुग्ध कर दिया। स्वामी जी ने उल्लासित होकर पूछा,
4: आप कब भारत जाएंगे? भारतीय जनता आपको सानंद स्वागत करेगी। आपने हमारे पूर्वजों के चिंतनों का अध्ययन किया है, वाह!
3: जरूर जाऊंगा, पर हो सकता है मैं वहां से वापस ना लौटूं। मेरा अंतिम संस्कार आप लोगों को वहीं करना पड़ेगा।
2: रात को आंधी पानी में भी वृद्ध प्रोफेसर स्वामी जी को विदा देने स्टेशन पर आए। स्वामी जी लज्जित होकर बोल उठे,
4: अरे आप, मुझे विदा देने के लिए आपने इतना कष्ट क्यों किया इस आंधी तूफान में?
3: आप जैसे व्यक्तियों से मिलने का अवसर रोज रोज नहीं मिलता।
1: इस मुलाकात के बाद दोनों की मित्रता प्रगाढ़ हो गई। स्वामी जी आजीवन मैक्स मुलर साहब के प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। हालांकि दोनों की फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, पर दोनों नियमित पत्र व्यवहार करते थे।
2: जिन अंग्रेज शिष्य व शिष्याओं ने स्वामी जी के कार्यों में आत्मजीवन उत्सर्गित किया था, उनमें से कुमारी मुलर, कुमारी नोबल यानी सिस्टर निवेदिता, श्री गुडविन, श्री स्टडी आदि का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरी बार इंग्लैंड में आकर स्वामी जी ने कैप्टन सेवियर तथा श्रीमती सेवियर को शिष्य के रूप में प्राप्त किया। धर्मपरायण सेवियर दंपत्ति उनके भारतीय कार्य के लिए आत्म उत्सर्ग करने को तैयार हो गए। श्रीमती सेवियर शिष्या बनकर भी स्वामी जी की मात्र स्थानिया थी। स्वामी जी उन्हें माँ कहकर पुकारते थे।
1: लंदन में रहते समय विभिन्न शिष्य और भक्तों के साथ स्वामी जी यूरोप भ्रमण करने गए थे। उन रोचक स्थानों में स्वामी जी के अनुभवों के बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

0: शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रख।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सेवा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी अक्षय निधि कार्यक्रम के साथ। शाम 5:10 पर सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम आज आधारित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर के जीवन पर। शाम 6:30 पर बाल सभा कार्यक्रम में आज सुनेंगे दादी नानी की कहानियां, जिसे प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी और बाल कलाकार मातृका। शाम 7 बजे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। शाम 7:30 पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर विशेष कार्यक्रम। रात 8 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम में आज हम भारतीय वायुसेना आकाश के विजेता ये कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि के 8:30 पर आज़ाद हिंद कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी निर्मला देशपांडे पर केंद्रित होगा और 9:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सेवा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत और लोक संगीत का आनंद लेते रहें।
2: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

लोक संगीत यानी हमारी जमीन से जुड़ा हुआ संगीत, माटी की सूंधी महक लिए हुए कुछ गीत जो हमारी सांसों में बहते हैं, अनायास पीढ़ियों ने अगली पीढ़ी को इसे सौंप दिया। अनायास हमारी स्मृतियों में ये बस गए, हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे और एक लंबा सफर तय करते हुए ये संगीत आज भी जनमानस में रचा बसा है। लोकगीत कब लिखे गए, कब रचे गए, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं मिलता है। और मिले भी कैसे, सप्रयास इन्हें रचा भी तो नहीं गया ना, वो तो एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जन की, जन के मन की। यूं जैसे कोई पहाड़ी नदी अपना रास्ता बनाती हुई बह चलती है पूरी स्वतंत्रता स्वच्छंदता के साथ, पूरी निर्मलता के साथ, ऐसा होता है लोक संगीत। तो आइए लोक संगीत की इसी रसधार में हम आपको भिगोएं। आज हमारे साथ चलिए बुंदेलखंड की माटी की ओर। गायक कलाकार हैं शिवरतन यादव और साथी बच्चे।

श्रोताओं, ये था बाल खेल गीत बच्चों के स्वरों में। बच्चे यूं ही खेल खेल में कोई गीत बना लेते हैं, कभी अपनी कल्पनाओं के आधार पर, या कभी खेल के नियमों को लेकर, या कभी अपने किसी साथी बच्चे को चिढ़ाते हुए एक गीत तैयार हो जाता है जो उन बच्चों के बीच लोकप्रिय होता है, सभी को याद होता है और सब साथ मिलकर उसे जब चाहें तब गाते हैं और बच्चों की कई पीढ़ियाँ उन गीतों को गाती हुई बड़ी होती हैं। तो बुंदेलखंड में ऐसे बाल खेल गीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। आइए एक और बाल खेल गीत आपको सुनवाते हैं इन्हीं बच्चों के स्वरों में।

ये वो समय है जब बच्चे खेल के मैदानों से दूर होते जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब बच्चे खेल के मैदानों से दूर हैं, खेल से दूर हैं, तो बाल खेल गीत भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लगभग लुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन इन गीतों के संरक्षण का हमारा प्रयास है, आइए इसी प्रयास में आप भी भागीदार बनिए। सुनते हैं इन्हीं बच्चों के स्वरों में ये बाल खेल गीत।

श्रोताओं, लोक संगीत हमारे जीवन की हर अनुभूति से जुड़ा हुआ संगीत है। हमारे सुख दुख हों या मौसम के विविध रंग, लोक संगीत सभी से उसी मिठास के साथ जुगलबंदी करता है। तो आइए, वर्षा ऋतु में गाई जाने वाली कजरी आपको सुनवाते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में।

श्रोताओं, शादी ब्याह के विभिन्न रीति रिवाज हों या मुंडन और उपनयन जैसे संस्कार, हर अवसर पर कोई न कोई लोकगीत अवश्य गाया जाता है। कर्ण छेदन भी एक ऐसा ही संस्कार है। एक समय था जब लड़का हो या लड़की, दोनों के ही कान छिदवाए जाते थे और इस अवसर पर भी लोकगीत गाया जाता था। तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये कर्ण छेदन गीत आपको सुनवाते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में।

और श्रोताओं, अब आइए आपको सुनवाते हैं शिवरतन यादव के स्वर में ये पाई गीत। वर्षा ऋतु का ये गीत है। एक छोटा सा परिवार है, झोपड़ी में रहता है, बहुत ही अभावग्रस्त परिवार। मूसलाधार बारिश हो रही है। इस पानी के गिरने से जो दुर्दशा इस परिवार की होती है, उसका वर्णन इस लोकगीत में है।

श्रोताओं, लोक जीवन में वर्षा ऋतु का स्वागत जिस तरह से किया जाता है, शायद उस तरह से किसी भी दूसरी ऋतु का स्वागत नहीं होता। एक खुशी, एक उल्लास, एक उमंग का वातावरण रहता है, क्योंकि वर्षा के आने से समृद्धि की आशा जागती है, खेतों में बुवाई शुरू होती है। इसी ऋतु में कजलियां भी सराई जाती हैं, और कजलियां सराते हुए गत्ते के एक टुकड़े को बजाते हुए गाया जाता है सहरा। तो आइए शिवरतन यादव के स्वर में यही सहरा गीत सुनते हैं।

भारत भारती कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह के साथ। इस कार्यक्रम में आज है महक बुंदेलखंड की माटी की। श्रोताओं, बुंदेली लोकगीतों की पहचान है राई, तो बुंदेलखंड की यही पहचान कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है। सुनते हैं शिवरतन यादव के स्वर में राई में स्वांग।

बुंदेली जो हमारा लोक साहित्य है, एक छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ी बात है। अरे इंडिया

ये जो राई का नृत्य होता है उसमें बेड़ियां नाचती हैं और उनकी शादियां होती नहीं है सामान्यतः। तो जब वो शादीशुदा गृहिणी को देखती हैं घूंघट में, घूंघट की मर्यादा और उसका महत्व देखिए और उसकी पीड़ा देखिए। ललाय माने चाहे ना

श्रोताओं, ईसुरी बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध लोक कवि हैं। ईसुरी का साहित्य बहुत वृहद है। उन्होंने जीवन के किसी भी पक्ष को अपने साहित्य में छोड़ा नहीं है। आइए ईसुरी की चौकड़िया आपको सुनवाते हैं शिवरतन यादव के स्वर में, जिसमें नायक नायिका की बातचीत है। नायक नायिका से मिलने का आग्रह करता है। नायिका भी हामी भरती है, लेकिन कुछ विशेष सावधानी के साथ। दिन डूबे वो कहाँ और कैसे मिलेंगे, इसका इशारा है इस चौकड़िया में।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समापन करते हैं इस विदाई गीत से। स्वर शिवरतन यादव का है। बिटिया की विदाई हुई, कहार डोली लेकर चले। गांव की बेटी अपनी ही तो बेटी है। रास्ते में जो भी राहगीर मिलता है उसे यही लगता है। कैसे कैसे भाव उनके मन में आते हैं इसका वर्णन इस लोकगीत में है।

0: श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे शिवरतन यादव और साथी बच्चों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती भारत

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन गौरव अभ्यंकर का, और इसके बाद प्रस्तुति होगी रघुनंदन पंचीकर के गायन की। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गौरव अभ्यंकर का गायन।
1: गायन का प्रारंभ एक स्वरचित शिव वंदना से करूंगा, जो कि याग रमन राग यमन में एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय की रचना है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी सुनिएगा, जिसे पेश कर रहे हैं अब्दुल हमीद लतीफ और जावेद लतीफ खां, और इसके बाद प्रस्तुति होगी सुगंध देवी गंधर्व के गायन की। तो सबसे पहले पेश है सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी, जिसे पेश कर रहे हैं अब्दुल हमीद लतीफ और जावेद लतीफ खां।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 111 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: दक्षणृथम सुवृतम विद्म नाप सस्तक्षणहरि इंद्रवाहा वृषण वसु दक्षण पितृभ्या मृभवो युवद वयस्य क्षण वत्साय मातरम सचा भुवम। कुशल विज्ञानी ऋभु देवों ने उत्तम रथ को अच्छी प्रकार से तैयार किया। इंद्रदेव के रथ वाहक घोड़े भी भली प्रकार प्रशिक्षित किए। वृद्ध माता पिता को श्रेष्ठ मार्गदर्शन देकर तरुणोचित उत्साह प्रदान किया तथा माता को बच्चे के साथ रहने के लिए तैयार किया। आ नो यज्ञाय तक्षत ऋभुमद्वयः कृत्वे दक्षाय सुप्रजावतीमिषम् यथा क्षयाम सर्ववीरया विषातन्नः शर्धाय धासथा स्विन्द्रियम्। हे ऋभुदेवो, हमें यज्ञीय सत्कर्मों के लिए तेजस्विता प्रधान जीवनी शक्ति प्रदान करें। श्रेष्ठ कर्मों और बल संवर्धन हेतु प्रजा को समृद्ध करने वाले पौष्टिक अन्न हमें प्रदान करें। संगठन के लिए हम में पर्याप्त शारीरिक सामर्थ्य पैदा हो। आ तक्षत सातिमस्मभ्य मृभवः सातिम रथाय साति मर्वते नरः सातिम नो जैत्रीम सम महेत विश्वहा जामी मजामिम प्रतनासु सक्षणम्। नेतृत्व करने वाले हे ऋभुवो, आप हमारे लिए वैभव, हमारे रथों के लिए सुंदरता तथा अश्वों के लिए बल प्रदान करें। समर क्षेत्र में हमारे निकटस्थ संबंधी या अपरिचित जो भी सम्मुख हो, हम उन्हें पराजित करें। हमें विजय योग्य विभूतियां प्रदान करें। ऋभुक्षण मिंद्रमा हुव ऊतय ऋभून वाजान मरुतः सोमपीतये उभा मित्रा वरुणा नूनमश्विना तेनो हिन्वन्तु सातये धिये जिशे। हम अपनी सुरक्षा के लिए ऋभुओं के साथ रहने वाले इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। ऋभु वाज मरुत दोनों मित्र और वरुण तथा अश्विनी कुमार इन सभी देवों को सोमपान के लिए आवाहित करते हैं। वे धन श्रेष्ठ बुद्धि और विजय प्राप्ति के लिए हमें प्रेरित करें। ऋभुर्भराय सम शिशातु सातिम समर्य जिद्वाजो अस्माम अविष्टु तन्नो मित्रो वरुणो माम हंता मदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। ऋभुगण हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर दें। युद्ध में विजय दिलाने वाले वाजादि देव हमारे संरक्षक हों। मित्र वरुण आदिति सिंधु पृथ्वी और द्युलोक आदि देव हमारी कामना में सहायक हों।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 111 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

ईश्वर के स्मरण यानी सुमिरन से बढ़कर प्रभु को पाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका कुछ भी नहीं। मन में उसका ध्यान हो

जब ईश्वर पर हमें विश्वास होता है तो हम ये सोचते हैं कि जो मैं चाहूंगा ईश्वर वही करेंगे। लेकिन सच्चे अर्थों में विश्वास का ये अर्थ है कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए

मेहनत करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है, धर्म पर चलने से पाप समाप्त हो जाते हैं, और यदि हम मौन रहते हैं तो सदा ही कलह को समाप्त कर देते हैं, और यदि हम में आत्मविश्वास रहता है तो भय अपने आप ही

श्रोताओं, देखा जाए तो ये जीवन एक बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी छेद कितने भी क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे ये जीवन

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा कले। श्रोताओं, इस जीवन की सांसें हम सभी के लिए निश्चित गिनती की हैं। सुबह होती है और शाम में ढल जाती है, रात आती है तो साथ में लाती है एक नई सुबह। समय कैसे पंख लगाकर उड़ता चला जाता है हम जान ही नहीं पाते, और जीवन जीवन यूं ही बीतता जाता है। तो कुछ समय परोपकार और आध्यात्म के लिए भी निकालें, ताकि जीवन बीतने पर पछतावा ना हो।

हेतु यदि शुद्ध कार्य यदि निष्ठा तरहि सर्वं सुकरं सुगमं च भवति। यानी हेतु यदि शुद्ध है और कार्य में निष्ठा है तो सब कुछ आसान हो।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनकी, जिनके बारे में स्वयं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार किया था कि उन्हें विश्व के संविधानों और भारतीय कानून का अद्वितीय ज्ञान था। ये हैं विश्व प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और अर्थशास्त्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जो भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। वे संविधान की मसौदा समिति के भी प्रमुख सदस्य रहे थे और नागरिकता और मौलिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर उन्होंने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी उन्हें संविधान निर्माण में अपने से बेहतर और योग्य व्यक्तियों में से एक बताया। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का जन्म 14 मई 1883 को आंध्र प्रदेश के पुद्दूर नामक गांव में एक तेलुगु परिवार में हुआ। मद्रास शहर, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, वहां उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई कर वकालत की डिग्री प्राप्त की और मद्रास उच्च न्यायालय में एक प्रमुख वकील बने। 1929 से 1944 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने

अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान सभा की 9 समितियों में भागीदारी की, जिसमें मसौदा समिति और नागरिकता तथा मौलिक अधिकारों पर बनी उप समितियां शामिल थीं। अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। उस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीयों के आत्मनिर्भर विकास को बढ़ावा देना था। अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर ने अपने खाली समय का उपयोग कानून की कक्षाएं लेने के लिए भी किया था। 1930 में उन्हें दीवान बहादुर बना दिया गया। जब 1946 में उन्हें भारतीय संविधान का सदस्य चुना, तब भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता भी की थी, उन्होंने अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर को अपने से बड़ा, बेहतर और अधिक सक्षम मित्र बताया। साथ ही मसौदा समिति के सबसे योग्य और बेहतर सदस्य भी कहा था। अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करें तो वे दुबले पतले थे और उनकी ऊंचाई भी अधिक नहीं थी, किंतु संविधान सभा में उनकी मौजूदगी उनकी शारीरिक संरचना से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। संविधान सभा में जब वे बोलते थे, तब उनकी वाक्पटुता और शब्दों के चयन के साथ अपनी बात रखने के उनके अंदाज पर नियंत्रण देखने और सुनने लायक होता था। साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष के आर श्रीनिवास के अनुसार उच्च न्यायालय की इमारत में वे अपना अलग ही प्रभाव बिखेरते थे और साथ ही कानून के क्षितिज पर उनकी चमक बिखरी रहती थी। सब

अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर बार के प्रमुख सदस्य और महाधिवक्ता होने के साथ एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता भी थे। साझेदारी और माल विक्रय कानून में संशोधन के लिए वे भारत सरकार की समिति में नियुक्त किए गए थे। वे नए नए वकीलों को बहुत प्रोत्साहित करते थे और साथ ही उन्होंने अपना पुस्तकालय भी सभी के लिए खुला रखा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन नहीं था, वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल नहीं थे, परंतु संविधान सभा में नियुक्त होने के समय वे एक पूर्णकालिक अधिवक्ता थे। संविधान सभा में चुने जाने के बाद सभा में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रारूप समिति और मौलिक अधिकारों पर उप समिति सहित 9 समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने नागरिकता, मौलिक अधिकारों और आपातकाल की घोषणा पर बहस में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। संविधान सभा में अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया और 3 अक्टूबर 1953 को भारतीय संविधान के निर्माण में अपना अहम योगदान देने वाले इन विधिवेत्ता ने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर के पुत्र कुप्पू स्वामी ने अपने पिता की जन्म शताब्दी के मौके पर 1983 में अल्लादि मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। ये ट्रस्ट संवैधानिक कानून से संबंधित विषयों पर व्याख्यान आयोजित करता है। अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संवैधानिक इतिहास में एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता और उदारवादी दृष्टिकोण से संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, आइए सुने कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है दादी नानी की कहानियां।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, और बच्चों के मम्मी पापा को भी मनीषा का नमस्कार। बाल सभा जैसे ही शुरू होती है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रेडियो के थोड़ा सा और करीब आ जाते हैं ये सोचते हुए आज कौन सा विषय है। आज बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारा और बहुत जानकारियों से भरा हुआ विषय है बच्चों। आज हम आपकी दादी नानी की कहानियों की बात करने वाले हैं, और आज मैंने इसीलिए बच्चों के मम्मी पापा को भी नमस्ते किया है, क्योंकि ये हर उम्र के इंसान से जुड़ा हुआ विषय है जिसे सुनते ही हमारे मन में बचपन की ढेर सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और आज का विषय है नानी दादी की कहानियाँ। अब देखिए ना दोस्तों, समय कितना बदल गया है। पहले शाम होते ही घरों में बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी, आंगन में चारपाइयाँ डाली जाती थी, रसोइयों से रोटियों की खुशबू आने लगती थी, और रात का सबसे सुंदर समय होता था जब बच्चे अपनी दादी, अपने दादा या फिर नाना नानी के आसपास बैठकर कहानियां सुनते थे। कोई बच्चा दादी की गोद में सिर रखे होता था, कोई तकिए को पकड़कर बैठा रहता था, कोई बीच बीच में सवाल पूछता था, फिर क्या हुआ, और दादी भी कहानी ऐसे सुनाती थी जैसे सब कुछ ना उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। ऐसे बताती थी हर बात को, लगता था जैसे सामने आकर खड़े हो गए हैं किरदार। लेकिन आज वही घर, वही बच्चे, पर माहौल बिल्कुल बदल गया है। अब रात को बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है, कानों में ईयरफोन होते हैं, आंखों के सामने स्क्रीन होती है। कहानियां अब सुनाई कम जाती हैं, दिखाई ज्यादा जाती हैं। पर क्या सचमुच मोबाइल के ये छोटे छोटे वीडियो उस अपनेपन की जगह ले सकते हैं जो दादी की आवाज में होता था? क्या कोई कार्टून उस एहसास को दे सकता है जो नानी की गोद में सिर रखकर मिलता था? या कोई पीछे से एक आवाज मोबाइल में ऐसी आ सकती है, अच्छा जरा पास में आ जाओ, आज कहानी सुनाने के बाद तुम सबको बेसन के लड्डू दूंगी, है ना? नहीं आएगी ना ऐसी आवाज, नहीं आएगी, क्योंकि इंसानी रिश्तों में और मशीनरीज में कुछ बेसिक अंतर होते हैं बच्चों, और आज हम इन्हीं बातों पर लंबी और प्यारी बातचीत करेंगे। और आपको पता है इस बातचीत में मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में भी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, मेरी दोस्त मातृका मौजूद है। मातृका, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्ते दीदी, और बाल सभा सुन रहे सभी दोस्तों को मेरा भी बहुत सारा प्यार। दीदी, आज का विषय सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से अपने नानी के घर पहुंच गई हूँ। मुझे आज भी याद है, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होते ही मैं सबसे पहले यह पूछती थी कि हम नानी के घर कब जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पहुँचते थे लगता था जैसे पूरी दुनिया बदल गई। ना कोई जल्दी, ना कोई टेंशन, बस खेलना, हंसना और रात को कहानी सुनना। मेरी नानी हर रात नई नई कहानी सुनाती।

0: थी। मैं कई बार सोचती थी कि आखिर उनके पास इतनी सारी कहानियां,
1: छोटी सी कहानी के जरिए जीवन की बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा दी जाती हैं। और मुझे तो याद है, पता है क्या
0: क्या दीदी,
1: मेरी दादी रात को खाना खिलाने के बाद सबको बोलती थी, सारे भाई बहन मेरे पास आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके इधर आइए सब लोग। फिर हम लोग भी भड़ सारा काम खत्म करते थे। और अगर किसी दिन दादी ने ये कह दिया कि वो बहुत थक गई हैं और वो कल कहानी सुनाएंगी, तो बस हम सब के चेहरे लटक जाते थे मात्र का। और फिर हम उन्हें मनाते थे, दादी प्लीज़ छोटी सी कहानी सुना दीजिए, छोटी सी दादी, छोटी सी। और फिर बस दादी मुस्कुरा देती थी, अच्छा चलो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, ज़्यादा पीछे मत पड़ना। लेकिन पता है बच्चे, वो छोटी कहानी भी इतनी मज़ेदार होती थी कि कब वो आधा घंटा निकल जाता था हम लोग को पता ही नहीं चलता था।
0: दीदी मुझे लगता है कि कहानियों का सबसे सुंदर हिस्सा ये होता था कि उनमें सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था, हर कहानी कुछ सिखा कर जाती थी। जैसे मेरी नानी एक कहानी सुनाती थी दो दोस्तों की, एक दोस्त हमेशा मेहनत करता था और दूसरा काम से बचता था। शुरू में तो आलसी दोस्त को बहुत मजा आता था, लेकिन बाद में जब मुश्किल समय आया तो वही मेहनती दोस्त सबकी मदद कर पाया। उस दिन नानी ने हमसे कहा था, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और सच बताऊं दीदी, उस कहानी के बाद जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, मुझे वही कहानी याद आ जाती थी।
1: अच्छा चलो, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, पर मैं बताऊं मेरी दादी का क्या स्टाइल था।
0: क्या दीदी?
1: उनका स्टाइल ये था, वो अमिताभ बच्चन की तरह धीरे से भारी आवाज में कहती थी, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। आवाज बनाकर बोलती थी तो हम लोग हंसने भी लगते थे, लेकिन बस तुरंत सब भागे भागे जाते थे। मुझे आज भी याद है मातृका, कई बार ऐसा होता था कि छत पे हम लोग लेटे हुए हैं, नींद आ नहीं रही है, मच्छर काट रहे हैं, मच्छरदानी में और गर्मी लग रही है, माँ को कह रहे हैं, माँ प्लीज पंखा चला दीजिए, लेकिन लाइट ही नहीं है, क्या करें। तब फिर वही दादी की आवाज आती थी, कहा ना मैं कहानी सुना रही हूँ। तो मैं कहती थी, दादी अपनी आवाज में बोलिए ना, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चों के साथ समझाते हुए, डांटते हुए, बहुत प्यार से वो कहानी ऐसे सुनाती थी कि अगर तो घर में किसी बच्चे के झूठ बोलने की आदत है तो वो मन ही मन ऐसी कहानी बना देती थी कि झूठ बोलने की आदत बुरी है, हमें ये पता लग जाता था। अगर घर में किसी बच्चे को डर लग रहा है ना, तो हमारी दादी फटाक से बहादुरी की कहानी सुना देती थी। और कहानी सुनाते सुनाते वो हमेशा हमको एक मंत्र भी सुनाती थी, सुनाओ तुमको।
0: हाँ प्लीज दीदी।
1: वो हमेशा एक मंत्र सुनाती थी, जय बाबा हनुमान, 12 वर्ष के जवान, हाथ में गदा मुंह में पान, जिधर देखो हनुमान ही हनुमान। तो जब मैं ये मंत्र सुनती थी तो मैं कहती थी, अच्छा हर तरफ अगर ईश्वर है तो फिर तो हमें डर नहीं लगना चाहिए। तो ये हमने कहानी से ही सीखा कि कैसे बातों ही बातों में बहादुरी की कहानी सुना दिया जाए। ऐसी कोई बच्चा अगर घर में लालच कर रहा है, जैसे गर्मियों की छुट्टी में क्या हुआ, मातृका सब बच्चे इकट्ठे हुए है ना, अब कोई चीज़ खाने की आई तो कोई बच्चा कह रहा है ये मैं ज़्यादा लूँगा, कोई बच्चा कह रहा है मुझे कम मिला, फिर पता चला थाली के ऊपर ही सब इकट्ठे झपट पड़े। तो हमारी दादी तुरंत उसी रात को ना एक लालच वाली कहानी सुना देती थी, तो हम सब बड़े शर्मिंदा होते थे कि अरे हम सुबह ही तो आम पे इतना झगड़ा कर रहे थे। तो कुल मिला के वो कहानियाँ नहीं थी दरअसल बेटा, वो क्या थी, वो अपने परिवार को करीब लाने का एक साधन भी थी। और आजकल तो तुमने भी देखा होगा ना मातृका, ऐसा कई बार होता है कि एक ही घर के सब लोग साथ होते हैं फिर भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता, तुमने देखा है ऐसा?
0: हाँ दीदी, आपको पता है मेरे जब कजिन्स मिलते हैं, हम लोग सब साथ में बैठते हैं, तो कोई कजिन मोबाइल चला रहा होता है, कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है। मेरी दादी आती हैं, जब उनसे बोलती हैं कि मोबाइल रख दो, दो बार बोलने पे नहीं सुनते, वो तीसरी बार सुनते हैं और मुझे इतना बुरा लगता है।
1: ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपके बुजुर्ग, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी अगर कुछ बोल रहे हैं, तो बताइए मातृका ने कितनी बड़ी बात कही कि एक बार में नहीं सुन रहे हैं, दो बार में नहीं सुन रहे हैं, तीसरी बार उन लोगों को कहना पड़ रहा है। कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। पर अब क्या, अब तो हम लोग वहां पहुंच गए हैं जहां हम मातृका से कोई कविता सुनेंगे। तो मातृका आज तुम क्या सुनाने वाली हो?
0: दीदी आज मैं कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है मातृभूमि।
1: ठीक है
0: दीदी, क्या मैं अपनी कविता शुरू करूं?
1: बिल्कुल मातृका, स्वागत है आपका।
0: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमन छटा निराली पग पग ठहर रही हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती हैं, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंश पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाई, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी।
1: वाह वाह मातृका, गौरव का भाव भर रहा था जब तुम ये सुना रही थी तब तुम्हारे मन में?
0: हाँ दीदी, बहुत ज्यादा।
1: और यही खास बात है जो हम कविताओं से और कहानियों से सीखते हैं कि जब हम किसी ऐसी ओजपूर्ण कविता को सुनाते हैं तो हमारे कहने का तरीका अलग हो जाता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, कितना अच्छा लगता है जब हम देश की बात करते हुए गर्व से भर जाते हैं। मातृका, बहुत अच्छी कविता सुनाई तुमने। अब हम आगे अपनी बातों पर आए, उससे पहले मैं हर सप्ताह अपने बच्चों को कुछ सुना रही हूँ, तो आज बचेंद्री पाल जी के जिस अध्याय पे हम पहुँच गए हैं वो है भागीरथी सात बहनें। सुनोगी?
0: हाँ दीदी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी यह सुनके।
1: तो फिर अब शुरू करते हैं। बच्चों, आप भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे, ये मुझे पता है। जिस ढंग से मेरा पर्वतारोहण का जीवन ढल रहा था मैं उससे प्रसन्न थी, लेकिन इससे मेरी या मेरे परिवार की आर्थिक कठिनाइयों का समाधान नहीं हुआ। तब फरवरी 1983 में नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन NAF के निदेशक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नेहरू संस्थान के प्रशिक्षकों के लिए एक साहसिक कोर्स चलाने के लिए उत्तरकाशी आए और उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए मेरे सहित सात स्थानीय और शिक्षित महिलाओं का चयन किया। मैंने इस प्रतिष्ठित दक्ष तथा वरिष्ठ पर्वतारोही में भरोसा कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया कि मेरे माता पिता परिवार के आर्थिक बोझ को कम करने की दृष्टि से मुझ पर विवाह करने के लिए दबाव डाल रहे थे। मैंने उनसे ऐसे लोगों के लिए जो निर्धन और जीविका रहित थे कुछ रास्ता निकालने के लिए कहा, ताकि पर्वतारोहण में हमारी रुचि और प्रतिभा का उपयोग हो सके। सुना मातृका?
0: हाँ दीदी।
1: कि कैसे एक ऐसी बच्ची जो खुद गरीबी में अपने जीवन को गुजार रही है, वो दूसरे बच्चों के लिए भी साथ साथ सोच रही है और ब्रिगेडियर जो आने वाले थे उनसे ये बात साझा करना चाहती है। दूसरे दिन प्रातः ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने हमें भागीरथी सेवन सिस्टर एडवेंचरस क्लब शुरू करने के लिए NAF के आवेदन पत्र भरने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि ये लड़कियों और महिलाओं की एक अलग प्रकार की संस्था होगी जो जोखिम के कार्यों में लगी लड़कियों की सहायता करेगी। उन्होंने वादा किया कि यह योजना प्रशिक्षित लड़कियों और महिलाओं की आर्थिक चिंताओं का ध्यान रखेगी और इस बात से हमारा मनोबल आसमान छूने लगा और मैं मन लगाकर गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण कार्य में जुट गई। सात बहनों में से प्रत्येक ने अच्छा नाम कमाया। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बताया, हमारा प्रदर्शन पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर था। हमारे प्रवास के अंतिम दिनों तक ब्रिगेडियर हमारे लिए एक पिता की तरह हो चुके थे और मेरे सुझाव पर हमने उन्हें छोटे चाचा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जब छोटे चाचा ने 28 फरवरी 1983 को उत्तरकाशी छोड़ा, तब हम सब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने 3 महीने के अंदर लौट आने का वादा किया, जिससे वो हमारे साहसिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए मदद कर सके। उसी दौरान हमें स्थानीय बच्चों को चट्टानों की चढ़ाई के लिए ले जाने के लिए कहा गया। हमारे अपने कार्यक्रमों को चलाने की संभावना काफी रोमांचकारी थी। मैं इसकी तैयारी कर चुकी थी। नकुरी से लेकर तेखला में चट्टान आरोहण क्षेत्र तक घूमने और जॉगिंग का अभ्यास करती थी। ये रास्ता एक तरफ से 18 किलोमीटर पड़ता था। इस अभ्यास ने मुझे आरोहण की भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाने में सहायता की। वायदे के अनुसार ब्रिगेडियर जून में आ गए। वो अपने साथ हमारे लिए शिविर लगाने और ट्रैकिंग उपकरणों के 25 सेट साथ लाए, जिससे कि लड़कियों के लिए 2 साहसिक कोर्स साथ साथ चलाए जा सके। सेना की सहायता से उन्होंने तेखला में एक छोलदारी शिविर लगाने की व्यवस्था भी की। पहले समूह में जमशेदपुर से आई 13 लड़कियां थीं। दूसरे दल में मेघालय से आई शिलोंग की 15 चुस्त खासी लड़कियां थीं। प्रत्येक कोर्स में छात्रवृत्ति के आधार पर स्थानीय लड़कियों को सम्मिलित कर 20-20 के समूह बनाए गए। मुझे कोर्स के निदेशक और विजया पंत को उपनिदेशक बनाया गया। क्वार्टर मास्टर तथा चिकित्सा सहायक के कार्य बारी बारी से दूसरी 7 बहनों को सौंपे गए। कोर्स में काम करने के लिए हमें कुछ मानदेय भी दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्नता थी। चट्टान आरोहण के लिए 3 दिन रखे गए थे, 1 दिन इसके बाद नदी पार करने के लिए तथा शिविर के लिए था। इसके अतिरिक्त पर्वतारोहण की रस्सियों का उपयोग, रसोई बनाना तथा बीहड़ जंगल में सुरक्षा प्रदान प्राप्त करना भी सिखाया गया। हमारे साथ एक वन्य रेंजर था, जिसने हमें उस

0: में कूदती फाती एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंकती नजर आ रही थी। डोडी ताल लौटने से पहले उन्हें बर्फ पर फिसलने के लिए अन्य बर्फ किरणाओं का कुछ आरंभिक शिक्षण भी दिया गया। मैंने छोटे चाचा के निर्देशन में विजया की मदद से अपना पहला कोर्स पूरा किया। हमने उन्हें निर्देशन दिया परंतु विस्तार से कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। उनका सबसे अधिक स्मरणीय योगदान था मंत्रमुग्ध कर देने वाली घटनाओं से भरपूर पर्वतों तथा आरोहण संबंधी विभिन्न विषयों पर उनकी बातें। जब भी छोटे चाचा चिल्लाते, लड़कियों एक और कहानी सुनो, देखो फिर वही बात आ गई। मातृका जो ब्रिगेडियर जी थे, है ना, ज्ञान सिंह जी, जिन्हें ये छोटे चाचा कहती थी, वो भी इन्हें कहानियां सुनाते थे। किसकी? पर्वतों की कहानियां। और खास बात देखिए बच्चों, मैंने बात की जब शुरुआत की थी तब आपसे कहा था कि जो दादी नानी हैं वो हमेशा आपके व्यवहार को देखकर तुरंत कहानियां भी बना लेती थी, है ना, कि अगर कोई बच्चा लालच कर रहा है तो ऐसी कहानी जिसमें लालच दूर हो जाए, कोई डर रहा है तो ऐसी कहानी जिससे डर दूर हो जाए। आप ये देखिए कि उन लोगों की सोचने समझने की क्षमता और बच्चों को समझाने का तरीका कितना अच्छा था। वैसे ही ये जिन्हें छोटे चाचा कह रही हैं उन्होंने भी क्या किया कि ऐसी कहानियां सुनाई जो पहाड़ और पर्वत के अनुकूल हों। जुलाई 83 के मध्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, प्रसिद्ध पर्वतारोही चंद्र प्रभा अटवाल, विजया पंत और मुझे लेकर दिल्ली गए। इस समय तक चंद्रा दीदी भागीरथी सेवन सिस्टर्स एडवेंचरस क्लब की अध्यक्ष और मैं उपाध्यक्ष चुन ली गई थी। राजधानी में छोटे चाचा ने टेलीविजन के लोकप्रिय कार्यक्रम घर बाहर में हमारे इंटरव्यू की व्यवस्था कर दी। 3 राष्ट्रीय दैनिक पत्रों में भी हमारा साक्षात्कार आया। हमारे फोटो सहित ये साक्षात्कार और लेख दूसरे दिन सवेरे के अखबार में छपे। और जब हम जनपद में खरीदारी कर रहे थे तब अनेक युवाओं ने रोका और पूछा, क्या मैंने तुम्हें टीवी पर नहीं देखा था? अथवा क्या तुम वही महिला हो जिनके चित्र मैंने अखबार में देखे हैं? हमारे छोटे से क्लब भागीरथी सेवन सिस्टर एडवेंचर क्लब ने राजधानी में पहले से ही रंग जमाना शुरू कर दिया था। तो ये था वो अध्याय जो आज आपको मुझे बछेंद्री पाल का सुनाना था। अब मातृका, पहले ये बताओ कि तुम्हें बछेंद्री पाल की ये कहानी कैसी लगी, पर्वतारोहण की, वो जो मेहनत कर रही थी, कैसे उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियों से लड़ा, कैसा लगा?
1: दीदी, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे इससे एक सीख भी मिली कि हमको कभी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए।
0: और मेहनत के बीच में यदि आपकी आर्थिक स्थिति बच्चों आए ना, तो कभी हमें झिझकना नहीं चाहिए आपको सही व्यक्ति देखकर। क्योंकि देखिए बच्चों, एक और बात इस कहानी से हमें सीखने को मिली कि ब्रिगेडियर को उन्होंने छोटे चाचा पहले दिन से कहना शुरू नहीं किया था। ब्रिगेडियर को उन्होंने छोटे चाचा बहुत दिन बाद कहना शुरू किया, वरना पहले तो सर कहती होंगी, है ना। जब उन्हें लगा कि इनसे रिश्ता भी अच्छा है और इन्हें हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बता सकते हैं, तब बछेंद्री पाल ने यह निर्णय लिया होगा कि उन्हें छोटे चाचा कहकर अपने घर की आर्थिक स्थिति बताई जाए। और देखिए, अगर उस वक्त बछेंद्री पाल शर्मा जाती तो क्या होता? तो क्या वो बनती पर्वतारोही? क्या वो सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच पाती? नहीं, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति उनके आड़े आ जाती, लेकिन वो इसको सही व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई शर्माई नहीं, कोई झिझकी नहीं, बल्कि सही वक्त सही व्यक्ति देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे ये बात इन्हें बता देनी चाहिए। तो आपकी जिंदगी में कहानियां छोटे छोटे अनुभव से लेकर बड़ी बड़ी समझदारी तक बहुत काम आती हैं बच्चों। अब वापस लौटे मात्र का विषय पर।
1: हाँ दीदी, बट विषय पर लौटने से पहले मैं विषय की ही बात करना चाहूँगी।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई। बताओ क्या कहना चाहती हो?
1: दीदी, आपने जो मुझे वो जय बाबा हनुमान वाली वो मंत्र बताया था ना, आपने मुझे एक इतना बड़ा सल्यूशन दे दिया, मतलब मैं क्या बताऊं। मुझे हमेशा जब मेरी मम्मी ऑफिस जाती है या फिर कहीं काम करने जाती हैं तो मुझे हमेशा डर लगता है कि कोई चोर ना घुसाए, कोई भूत ना आ जाए, मुझे ऐसे बहुत डर लगता है। और आपने तो मुझे आज इतना बड़ा सल्यूशन दे दिया, अब मुझे जब भी डर लगेगा, मुझे तो आपने बता दिया कि हमारे आसपास भगवान भी रहते हैं, तो अब मुझे जब भी डर लगेगा मैं बोलूँगी जय बाबा हनुमान, 12 वर्ष के जवान, हाथ में गदा मुँह में पान, जिधर देखो हनुमान ही हनुमान।
0: बिल्कुल बच्चों, आपने भी यही करना है कि आप जिनकी भी पूजा करते हैं, है ना, आप जिनसे भी हिम्मत का जो भी आपके लिए स्रोत है, आपके माता पिता हों, आपके दादी बाबा हों, या ईश्वर, या कोई ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें आप बहुत कुछ मानते हैं, आप उनको याद करिए और सच मानिए, आपका डर रफू चक्कर हो जाएगा। तो मातृका, अच्छा लगा मुझे कि तुमने स्टूडियो में बैठकर सिर्फ इस कार्यक्रम में ही हिस्सा नहीं लिया बल्कि अपनी लाइफ के लिए कुछ सल्यूशन भी लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज बच्चों हम जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ना, उतनी ही तेज़ी से कहीं ना कहीं रिश्तों की गर्माहट थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। शायद यही वजह है कि आज बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बच्चों के मुंह से सुनती हूँ मातृका कि उनको ना अकेलापन महसूस होता है क्योंकि पेरेंट्स ऑफिस में हैं और वो लोग अकेले हैं। ऐसे में जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं ना, तो हम दिमागी रूप से थकने लगते हैं, अकेले पढ़ने लगते हैं, या फिर हम पूरे टाइम टीवी देखते रहें। इसलिए बेहतर होता है हम कहानी की किताब पढ़ें। अगर हमारे पास कोई नहीं है ना बड़ा बुजुर्ग सुनाने के लिए, तो बच्चों आप एक और काम कर सकते हैं कि आप कहानियों की अच्छी अच्छी किताबें खरीदिए और आप जब वो कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और गर्मियों की छुट्टी में ये तय कीजिए कि आपको अपने दादी दादा के पास या फिर नाना नानी के पास ज़रूर जाना है ताकि आप उनसे वो कहानियाँ, वो वक्त देख सको, सुन सको जो हम सब ने देखा है कि अगर लाइट चली गई तो कहीं से एक दिया जला लिया या लालटेन जला ली और फिर सब आसपास बैठ गए, पीछे से झींगरों की आवाज़ आ रही है, कभी हवा चल रही है, कभी मज़े आ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। और हाँ, रात में सब लोग नीचे गए, जल्दी से कोई नमकीन चूड़ा ये सब ले आए और फिर खाने लगे। तो ये सब चीज़ें ना आपको साथ रहने का मज़ा, आनंद, ये सब कुछ कहानियाँ सुनते सुनाते आता है।
1: हाँ दीदी, और सबसे मज़ेदार बात ये होती थी कि डर भी लगता था और मज़ा भी बहुत आता था। मेरी नानी भी कभी कभी ऐसी कहानियाँ सुनाती थी कि मैं रात को पानी पीने भी अकेले नहीं जाती थी, फिर मैं मम्मी को उठाकर ले जाती थी।
0: बिल्कुल ऐसा तो हुआ ही होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि अगर हमारे जो भाई बहन हैं जो बाहर से आते हैं, बुआ के बच्चे हैं या ताऊ जी के बच्चे हैं, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा शरारती बच्चा ज़रूर होता था जो कहता था मैंने भूत बंगला देखा है। भले ही वो कुछ नहीं होता हो लेकिन वो सब बच्चों को डराने का काम करता था। एक और बात बहुत अच्छी होती थी मातृका की, इससे हमारी भाषा बहुत सुधरती थी, हम सुनना सीखते थे, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, हमारी दादी दादा ने, हमारे नाना नानी ने

0: नए नए शब्द सीखते हैं।
1: कितनी अच्छी बात कही है मातृका तुमने। तुम्हें पता है क्या हुआ, एक बार मैंने कहा कि मेरे इस बार बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो मेरी नानी ने तुरंत मुझसे कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं बहुत देर तक अपनी माँ से पूछती रही इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। लेकिन दरअसल मुहावरों में कही हुई बातें, कहावतें, ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं हमारी भाषा को समृद्ध करती थी और आज भी कर सकती हैं अगर आप बच्चों अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएं।
0: दीदी आज मैं घर जाकर सबसे पहले अपनी नानी को फोन जरूर करूंगी और उनसे कहूंगी कि अगली बार मिलने पर मुझे फिर से कहानी सुनानी है।
1: बिल्कुल। तो बच्चों अब चलते चलते हमारा संकल्प लेने का समय आ गया है। जल्दी से धीमे से संगीत के साथ हम सब आंख बंद कर लेते हैं। आप सब आंख बंद करके ये सोचिए कि अब से घर में जो भी बुजुर्ग हैं हमें उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें ज़रूर करनी है, उनसे कहानियाँ ज़रूर सुननी हैं। अगर वो आपके पास नहीं हैं तो आप सबको उन्हें हर रोज़ फ़ोन लगाना है, फ़ोन पर बात करनी है। जब भी आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग आए तो आपको उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, उनकी बात एक बार में माननी है, उन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं देना है, उनकी दवाइयों का ख्याल, उनकी सेहत का ख्याल रखने में आपको मदद करनी है। और बस इन्हीं संकल्पों के साथ अब समय आ गया है कि हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करें, ठीक है? लेकिन बच्चों आज रात को सोने से पहले क्या करना है, अगर नानी नाना या दादी दादा आपके पास नहीं है तो अपनी मम्मी पापा से कहिए कि आज हम तभी सोएंगे जब आप हमें एक कहानी सुनाएंगे। और यकीन मानिए ये आज की रात जो आप शुरुआत करेंगे वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक बहुत खूबसूरत आदत में बदल जाएगी। तो बस अब चलते हैं मातृका, चले अब?
0: हाँ दीदी।
1: तो बच्चों अब अनुमति दीजिए हमें बाल सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। आप सभी को मनीषा का
0: और मातृका का
1: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
4: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
5: हाय मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
6: नमस्ते भोपाल, मैं हूँ कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
2: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, कार्यक्रम के पिछली कुछ कड़ियों से हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के इतिहास की उन घटनाओं और उन महत्वपूर्ण मोड़ों की, जिसके कारण हमारे देश की सशस्त्र सेनाएं आज के इस प्रतिष्ठित मुकाम पर पहुंची हैं। श्रोताओं, ऐसा ही एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। जैसा कि हमने कार्यक्रम की पिछली कड़ी में इसका जिक्र भी किया था कि इस युद्ध के होने के क्या कारण थे और ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत ने इस युद्ध में ऐसी निर्णायक भूमिका निभाई, जिसके कारण एक नए देश यानी बांग्लादेश का जन्म हुआ। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि इस युद्ध की विजय में हमारी सेना के तीनों अंगों ने अपने शौर्य और पराक्रम का जौहर किस तरह दिखाया कि मात्र 14 दिनों के भीतर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए इससे जुड़े हर तथ्य को लेकर हमारे बीच एक बार फिर उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: जय हिंद श्रोताओं। 71 का जो युद्ध हुआ था
1: जी,
3: उसमें जो हमारे को विजय हासिल हुई थी, उसमें तीनों जो अंग हैं सेना के
1: जी,
3: आर्मी एयरफोर्स नेवी, इनकी जो ज्वाइंटमैनशिप थी वो काफी यूनिक थी
1: जी।
3: मैं वाजिब है कि इसी कारण से जो है हमें विजय भी प्राप्त हुई
1: जी,
3: है
1: बिल्कुल।
3: तो इन तीनों अंगों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था
1: जी।
3: इसको हम विस्तृत में जानने के लिए मैं चाहूंगा कि हम एक एक करके, जैसे आज हम इंडियन एयरफोर्स का जो रोल था उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे
1: जी। बिल्कुल, जैसा कि उसका तो आदर्श वाक्य है सर कि नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी गौरव के साथ आकाश को छूना।
3: बिल्कुल सच कहा आपने, बिल्कुल सही कहा
1: जी।
3: यही जो विक्ट्री है उन्होंने प्राप्त करी
1: जी, बिल्कुल गौरव के साथ।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स जो है इट प्लेड ए मेजर रोल ड्यूरिंग 71 वॉर
1: जी।
3: उनका जो सपोर्ट था आर्मी को ग्राउंड वॉरफेयर में और नेवी को सी में, इट एक्चुअली टर्न टू बी ए विनिंग फैक्टर फॉर दिस वॉर। तो 71 में अगर हम देखें जो इंडियन एयरफोर्स थी उसका एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन हो चुका था
1: जी।
3: और वो एक काफी फॉर्मेडेबल फोर्स बन चुकी थी, जिसमें कि मतलब आपको बताना चाहूंगा कि वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स हो चुकी थी। यानी कि यूएसए, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस के बाद जो है
1: भारत का नंबर
3: भारत
1: था।
3: की एयरफोर्स का नंबर आता था
1: जी।
3: एंड इंडियन फोर्स हैड अराउंड 39 स्क्वाड्रन्स एट दैट टाइम, जिसमें से कि 5 बॉम्बर स्क्वाड्रन्स थे और इसमें से जो 39 में 15 जो स्क्वाड्रन्स थे उनके पास सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स के थे।
1: अच्छा जी।
3: क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चलने वाले जो होते हैं
1: जी।
3: और हमारे को जो देश में जो प्रोटेक्शन के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, जिसमें कि हमें दुश्मन के आने वाले कोई जहाज है या मिसाइल्स है उसके बारे में पता चल जाता है
1: जी।
3: और ये हमारे देश की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एयरफील्ड्स के ऊपर इम्पोर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस जो होते हैं वहाँ लगे होते हैं सब जगह पे, तो इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट था उस समय।
1: ये भी सर इंडियन एयरफोर्स का ही हिस्सा
3: जी, इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होता है। तो इसमें जो रेडार कंट्रोल जो गन्स थी और सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह थी वो इंडक्ट हो चुकी थी, तो उस कारण से सिस्टम हमारा काफी मजबूत था। और इसके अलावा एयरफोर्स में जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, हैप्टर्स थे, मैरिटाइम रेकी स्क्वाड्रन थी उनके इन्वेंट्री में, तो इन सब के कारण जो है जो इंडियन एयरफोर्स थी वो एक बहुत ही इफेक्टिव आर्म बन चुकी थी,
1: सशक्त वायुसेना थी।
3: अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें उस समय पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 13 स्क्वाड्रन थी जिसमें से कि 12 उसने वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय करी हुई थी और एक जो है यानी बांग्लादेश में स्क्वाड्रन थी। एंड कंपैरेटिवली जो इंडियन एयरफोर्स थी उसके बाद 28 स्क्वाड्रन थी जो वेस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉयड थी और 11 ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉयड थी, तो इंडियन एयरफोर्स हैड ए प्रॉपर डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। जब ये युद्ध शुरू होने वाला था तो इंडियन एयरफोर्स हैड वेरी वेरी क्लियर कट टास्क ग्राउंड पे जो फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एब्सोल्यूट एयर डोमिनेंस क्रिएट करना है। एंड उसके लिए जो है हमको अपने जितने ऑपरेशंस हैं काउंटर ऑपरेशंस हैं वो सब करने हैं, अब उनके जो एयर बेसिस हैं उनकी सुरक्षा प्रॉपर करनी है और नेवी को जो है सपोर्ट देना है बाय प्रोवाइडिंग मैरिटाइम सपोर्ट देना है उनको, और जो भी मतलब आर्मी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट है जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह प्रोवाइड करने हैं, वो दीज टास्क वर क्रिस्टल क्लियर एंड दीज ऑब्जेक्टिव वर क्रिस्टल क्लियर एयरफोर्स, और इसके लिए काफी थॉरो प्लानिंग प्रिपरेशन हो चुका था। तो हुआ फिर वही कि जैसे हमने जिक्र किया था कि स्कर्मिशेस बढ़ती गई और नवंबर के बाद जो है टेंशन काफी बढ़ गया था दोनों कंट्रीज में, और 3 दिसंबर को वॉर का आगाज हुआ जो कि पाकिस्तान ने जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए थे हमारे वेस्टर्न फ्रंट में एयरफील्ड्स पे। तो उसके बाद जो है एयरफोर्स हमारे इंडियन एयरफोर्स कमेंस्ड ऑपरेशंस इमीडिएटली, और जैसे कि मैंने कहा था कि ये ऑपरेशंस उन्होंने बहुत ही थॉरली प्लान करे हुए थे और इनको जब कंडक्ट भी किया उन्होंने बहुत अच्छे मतलब इंटेंसिटी के साथ किया। आप ये समझिए कि जो इंडियन एयरफोर्स थी दे हैड अ प्रॉपर डोमिनेंस मतलब अबोव द पाकिस्तान एयरफोर्स, मतलब इतना डोमिनेंस था कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक तरह से डिफेंसिव मोड में डाल दिया था।
1: बात यही उठती है कि जब वो जानते थे कि हम इतनी सशक्त वायुसेना के साथ यहाँ हैं, तो भी उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हम पर हमला करें, पहले हमला करने वाली
3: बात तो ऐसा है कि इनफैक्ट उनका ये सोच है, उनकी अपनी डॉक्ट्रिन थी कि हम पहले हमला करके जो है इनको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तो उनकी सोच थी, लेकिन जब उन्होंने किया उससे पहले ही सिंस इंडियन एयरफोर्स वाज रेडी, तो जितने लाइक उस समय प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि जो एयरफील्ड्स जो थे आगे, उसके अलावा जो डेप्थ में भी हमारे जो एयरफील्ड्स थे, तो एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो पीछे मूव कर चुके थे।
1: अच्छा, यानी पहले से हमें आभास था कि अब हमला होने वाला है,
3: हमें मालूम था, इट वाज वेरी वेल मतलब सब कुछ पता था कि ये आज हो गया कल होगा, मतलब होना तो है। एंड पाकिस्तान ने किया वो उनकी डॉक्ट्रिन के हिसाब से किया था,
1: कि वो हमेशा से उनकी पॉलिसी रही है।
3: एंड हमारी पॉलिसी ये रही है कि हम जनरली कभी वी आर नेवर द फर्स्ट वन टू अटैक ऑन एनीवन, है ना। जैसा कि अब हम इस जिक्र कर रहे थे कि इस वॉर में दोनों फ्रंट पे लड़ाई हो रही थी, वेस्टर्न फ्रंट पे भी हो रही थी, ईस्टर्न फ्रंट पे भी हो रही थी। तो अगर हम जिक्र करें वेस्टर्न फ्रंट का, तो वेस्टर्न फ्रंट में आईएफ के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा फ्रंटेज है, मतलब रन ऑफ कच्छ से शुरू होके लद्दाख तक
1: जी।
3: इतना बड़ा मतलब उनके पास फ्रंटेज था जिसमें कि वो सारे के सारे उन्होंने ऑपरेशंस कैरी आउट किए, और इनकी एग्रेसिवनेस थी जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जिसके कारण जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में इन्होंने अपना कंप्लीट डोमिनेंस बनाया था। अच्छा, इसके कारण क्या होता है, जब एयर में डोमिनेंस होता है तो ग्राउंड फोर्सेस होती है, आर्मी होती है, उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है,
1: एक आत्मविश्वास बढ़ता है।
3: दूसरों को पता होता है कि हम एटलीस्ट ऊपर से हम सेफ हैं। है ना, तो जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है ग्राउंड पे, हम जब मूव करते हैं तो आर्टिलरी की जो फायरिंग आ रही होती है, एयरफोर्स की जो फायरिंग होती है, उसी से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है,
1: बचाव
3: हो जाता है। तो आईएफ ने काफी अच्छे ऑपरेशन इसमें वेस्टर्न फ्रंट पे कैरी आउट किए थे। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो ऑपरेशन थे उसमें उन्होंने कराची का की हमारी ऑयल इंस्टॉलेशन था उसमें अटैक किया था, रेड किया था। फिर रावलपिंडी में जो अटॉक की ऑयल रिफाइनरी थी उस पर अटैक किया था। मंगला डैम में पावर हाउस जो है डिस्ट्रॉय किया था, उस पर भी अटैक किया था। एंड इवन जो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस था पेशावर में और भी काफी जो बेसिस थे वहाँ पे रेड्स करे थे। एंड एक इंट्रोडक्शन मिशन्स होते हैं जिसमें कि जैसे जो कॉन्वॉयज जा रहे हैं, व्हीकल्स कॉन्वॉयज होते हैं, ट्रेन्स जो मूव कर रही होती हैं विद द मिलिट्री स्टोर्स एंड ऑल, है ना, इम्पोर्टेंट ब्रिजेस जो होते हैं, तो IAF हैड मेजर सक्सेस इन दीज आस्पेक्ट्स। एंड इवन मतलब दे वर एबल टू अटैक कराची हार्बर एरिया एंड नेवल एस्टेब्लिशमेंट एंड मनोरा। तो काफी अच्छे मतलब ये जो ऑपरेशंस थे जिसके कारण जो है पूरे वेस्टर्न फ्रंट में IAF हैड ए डोमिनेंस, प्रॉपर डोमिनेंस ऑफ द एरिया। देन एक और एयरफोर्स का जो एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराना। क्लोज एयर सपोर्ट का मतलब होता है जैसे हम आर्म फोर्सेस जब जारी होती है, आर्मी जब जारी होती है, जब उनको जरूरत होती है उस समय जो है एयरफोर्स मदद करती है। क्या अब बहुत बड़ा फेमस और हम सबको मतलब मेरे ख्याल से पता है वो बैटल ऑफ लोंगे वाला है।
4: जी जी,
3: जनरली जो है मॉडर्न मूवी के बाद तो बहुत ही फेमस हुई थी है। तो लोंगे वाला की मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा क्योंकि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल IAF ऑपरेशन। लोंगेवाला जो है जैसलमेर सेक्टर में लोकेटेड है और ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अप्रोच है पाकिस्तान से जैसलमेर की तरफ उसके ऊपर लोकेटेड है। तो इस वाइटल लोकेशन से जो है जैसलमेर का मतलब डिफेंस होता था। इसमें जो थी ये कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटी थी जिसमें 23 पंजाब रेजिमेंट की कंपनी ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। कंपनी कमांडर फेमस उस समय मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे जो भदन ब्रिगेडियर सब बने थे, महावीर चक्र अवार्ड मिला था जिन्हें। तो ये कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटी के ऊपर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा भीषण अटैक किया जिसमें कि पूरी एक पाकिस्तान की ब्रिगेड थी। मतलब आप इससे अंदाजा लगे कि एक कंपनी और एक ब्रिगेड में 12 कंपनी, तो एक कंपनी के अगेंस्ट 1:12 के रेशो में और साथ में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, तो कितना मतलब भारी अटैक आया। एंड कंपनी वॉज फाइटिंग वेरी ब्रेवली, होल्डिंग द फोर्ट, ठीक है, उनको आगे नहीं जाने दे रही थी। लेकिन जब आपको एक अंदाजा तो होता है कि 1:12 के रेशो में जब हम लड़ रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि जब हम नहीं इसके आगे नहीं लड़ पाएंगे, तो उससे क्या है जैसलमेर के लिए अप्रोच ओपन हो जाएगी, जैसलमेर विल बी थ्रेटन्ड। सो फाइनली आर्मी गेव SOS कॉल टू एयरफोर्स कि भाई ये ऐसा चल रहा है। एंड 5 December नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है एयरफोर्स केम फॉर द क्लोज एयर सपोर्ट। एंड आप ये देखिए बाय मिड डे एयरफोर्स हैड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड 15-16 टैंक्स ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने काफी भारी मात्रा में जो है पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे जो अटैक कर रहे थे उनको जो है उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया, जो उनकी व्हीकल्स थी उस पर नुकसान पहुंचाया, गन्स पे नुकसान पहुंचाया। एंड मतलब टू द एक्सटेंट कि ये जो अटैक था पीटर्ड ऑफ हो गया, मतलब जो है फेल हो गया,
4: असफल हो गया
3: और बहुत मेजर अटैक था एक्चुअली देखा जाए तो। ये IAF हैड टू इट्स क्रेडिट ऑलमोस्ट उसके बाद जो 2 दिन लगातार इंडियन एयरफोर्स उनके ऊपर हमले करती रही। उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 37-38 टैंक्स जो है बर्बाद किए, नष्ट किए। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेजर चीज होती है, मेजर जो है एक विक्ट्री होती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्लोज एयर सपोर्ट्स। ऐसे ही वेस्टर्न फ्रंट पर उन्होंने जो है IAF ने पाकिस्तान के काफी गन पोजीशंस, जो उनके व्हीकल्स थे, ट्रेन्स थी जो कैरी कर रही थी, उनको नष्ट किया। एंड पुंछ सेक्टर में कहूता लोकेशन है वहां पे पाकिस्तान का कंसंट्रेशन था जिसमें कि वो लोग अटैक का प्लान कर रहे थे अगले दिन पुंछ सेक्टर में। एयरफोर्स कैरिड आउट ए रेड ऑन दैट एंड दे डिस्ट्रॉयड द कंप्लीट पाकिस्तान आर्टी गन्स जो थी। एंड साथ ही साथ उन्होंने जो फोर्स थी जो अटैक करने के लिए आ रही थी उसको भी उन्होंने बहुत इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने वो अटैक कैंसिल कर दिया, नहीं कर पाए थे। तो ये क्या होता है, हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं क्लोज एयर सपोर्ट का, दिस इज हाउ द सिनर्जी एंड द कोऑर्डिनेशन, जॉइंट मैनशिप कम्स अप। जिसके कारण जो है मतलब आपको विजय प्राप्त होती है।
1: यानी इतना अद्भुत समन्वय जो था वो सन 1971 के ही युद्ध में देखने को हमें मिला सबसे पहली बार।
3: नहीं, उससे पहले भी अगर हम आपको याद हो हमने 47-65 में क्या था, ऑफकोर्स जो है हमेशा से जो है करती आ रही है, सपोर्ट करती आ रही है। आज हम थोड़ा उसको विस्तृत में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि 71 में जो है एफकोर्स वाज वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स, काफी
1: सशक्त भी हो गई थी ना,
3: सशक्त हो गई थी इसी कारण से ना। तो आज हम जो है उसका काफी जिक्र कर रहे हैं। तो सिमिलरली मतलब जो है आईएफ कैरिड आउट ऑपरेशंस इन हाजीपीर पास था, कारगिल था, छम सेक्टर था, मतलब हर जगह पे उन्होंने जो है काफी नुकसान पहुंचाया। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे मेंटेन्ड टोटल डोमिनेंस। अच्छा, इसके अलावा भी जो है इंडियन एयरफोर्स है और भी बहुत सारे तरीके से जो है इस वॉर में, देखिए एक तो उनका अपना रोल था, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स था, वो एयरक्राफ्ट से जो है मतलब जो डोमिनेंस ले रहे थे कि पाकिस्तान के एयरफोर्स को नहीं आने दे रहे थे। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स थे उसके ऊपर वो लोग जो है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है आर्म फोर्सेस को, नेवी को भी मतलब सपोर्ट कर रहे थे। तो उसमें इवन जो है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन जो काफी बड़ा घायलों को जो शिफ्ट करना, उसके साथ साथ जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट में जो है सामान पहुंचाने में, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी मदद से जो है जो ट्रूप्स का मूवमेंट है। एंड स्पेशली इस समय क्या हुआ था क्योंकि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर दोनों जगह एक्टिव थे, तो हुआ है ऐसा कि जो है ईस्टर्न सेक्टर से ट्रूप्स को है वेस्टर्न सेक्टर में मूव किया है। ठीक है, एंड वो पॉसिबल यही हुआ हो पाया बिकॉज ऑफ द एयरफोर्स।
1: सर अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक आपने पश्चिमी मोर्चे के बारे में बात की कि पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना ने अपना क्या योगदान दिया, अब आप मुझे ये बताइए कि इसी दौरान हमने पूर्वी मोर्चे पर भी लड़ाई की है तो यहाँ पर वायुसेना अपनी क्या भूमिका निभा रही थी।
3: सी, लड़ाई एक दिन शुरू हुई थी और आईएफ ने जैसे पश्चिम वेस्टर्न फ्रंट पे जो है उन्होंने रोल अदा किया, इन सिमिलर फैशन उनका रोल ईस्टर्न फ्रंट पे भी था। ईस्टर्न फ्रंट पे तो थर्ड को उन्होंने शुरू किया है एंड बिलीव मी फोर्थ को जो पाकिस्तान एयरफोर्स है जो बांग्लादेश में उस समय के इस पाकिस्तान में बिल्कुल इनएफेक्टिव हो गई थी, मतलब इंडियन एयरफोर्स हैड अ टोटल डोमिनेंस ऑफ दैट एरिया बाय नेक्स्ट डे।
1: अच्छा,
3: दैट काइंड ऑफ ऑपरेशंस दे कैरिड आउट।
1: तो सर ये भी ये बताता है कि उनका बांग्लादेश पर यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं था वहाँ की सरकार का, ना तो सैनिक के तौर पर या सैन्य तौर पर, ना आर्थिक तौर पर।
3: बिल्कुल सही कहा आपने और उस समय तक मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि अब हमारे बस की बात नहीं है इसको अपने साथ बना के रखना। एक तो क्या होता है वो डिमोरलाइजिंग फैक्टर आ चुका होता है, जो लोग लगातार वहाँ पे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो आर्म फोर्सेस रहे हो, दिस वाई फील की मतलब उनमें भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो आ ही गया होगा
1: जी, है ना। जिस तरह से सर अंग्रेजों को ये सन 42 या 40 से लग गया था कि अब देश छोड़ना पड़ेगा।
3: एग्जैक्टली, तो शायद वही बात थी। तो ईस्टर्न फ्रंट में अगर हम जिक्र करेंगे तो आईएफ कैरिड आउट सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस, उसमें उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट अगेन रोल प्ले किया था, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे, क्लोज एयर सपोर्ट के किए थे। और यहाँ सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँ कि उस समय अगर हम बांग्लादेश की टेरेन देखते हैं तो उसमें काफी सारी रिवर्स एंड नाला काफी ज्यादा है,
1: वो पूरा डेल्टा इलाका ही है।
3: एग्जैक्टली, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हेल्प जो थी आईएफ ने दी, दैट वाज बाय कैरिंग आउट हेलीबॉर्न ऑपरेशंस एंड एयरबॉर्न ऑपरेशंस। हेलीबॉर्न ऑपरेशंस का जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आर्मी है उसको हेलीकॉप्टर की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता है। अब ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है लेकिन जब दुश्मन नीचे से फायर कर रहा है उसके इलाके से आप जा रहे हैं, देखिए एयरफोर्स वाज एबल टू मेंटेन एयर डोमिनेंस, तो वो पाक एयरफोर्स को तो नहीं आने दे रही थी लेकिन नीचे आर्टिलरी की गन्स है, जो पाकिस्तान का सोल्जर है उसके पास भी एक राइफल भी है, है ना, तो
1: उनकी पहुंच में है,
3: उनकी पहुंच में है। इस टाइम पे जो है हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस कैरी आउट करना काफी मतलब एक साहस भरा कार्य था। और 71 में इंडियन आर्मी में एक तरह से देखा जाए तो पहली बार हेलीबॉर्न ऑपरेशंस लॉन्च किए थे जो है, एंड इससे बहुत मदद मिली जैसे मैंने पहले ही बोला कि रैपिड मूवमेंट में ग्राउंड फोर्सेस के। पूरा अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर में, तो हेलीबॉर्न सॉर्टीज मतलब जो है आईएफ ने कैरी आउट करी थी ऑलमोस्ट 400+।
1: क्या बात है
3: जी। है
1: जी।
3: और उसमें उन्होंने तकरीबन 3000 से भी ज्यादा जो है ट्रूप्स को जो पूरे फुली इक्विप थे उनको जो है मोबिलाइज किया। और अगर हम इक्विपमेंट देखें आर्टिलरी गन्स जो है एमिनेशन जो है भारी इतना काफी भारी इक्विपमेंट होता है उसको उन्होंने मतलब जो है मोबिलाइज किया था। और हेलीकॉप्टर्स भी उस समय मतलब ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स का बहुत ज्यादा थे, दे हैड मतलब सर्विसिबिलिटी वगैरह सब मिला के जो है उनके 10-12 हेलीकॉप्टर 14 हेलीकॉप्टर्स होते थे। तो मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद, देखिए जब रिसोर्सेज कम है हेलीकॉप्टर कम है तो उनको उतनी शॉर्टेज ज्यादा करनी पड़ती थी,
1: चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते।
3: तो आप ये देखिए हर एक चक्कर में उनको मतलब कितना ज्यादा एक्सपोजर है तो उतना ज्यादा खतरा है। तो ये जो
1: बार बार उड़ाना
3: जो पायलट थे उनकी हिम्मत देखिए आप,
1: बिल्कुल सर।
3: और वो कंटिन्यूअसली करते थे मतलब जो है कंटिन्यूअसली रहता था, इट इज नॉट दैट कि रुक के ब्रेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो मेजर एयरलिफ्ट किया था इन्होंने 4-5 GR की कंपनी थी उसको मतलब जो है पूरी बटालियन का एक्चुअली लिफ्ट किया था, कोलारा से सेलेक्ट करके एक जगह है वहां गए थे। तो 12 घंटे में इन्होंने पूरी की पूरी जो है बटालियन को हेली लिफ्ट किया था, ठीक है। और इसमें आप ये देखिए कि तकरीबन जो है 600 से ज्यादा ट्रुप्स थे, 12 टन से ज्यादा इक्विपमेंट था
1: सर। कितना 12 घंटे?
3: 12 घंटे में इन्होंने किया था।
1: क्या बात।
3: और इसमें कन्फर्म 66 से 70 सॉर्टीज लगी थी
1: जी।
3: तो उतनी बार वो लगातार जो है
1: उड़ान
3: भर रहे हैं, जा रहे हैं। और उस समय दुश्मन भी फायर कर रहा है, इट्स अ डेयरिंग ऑपरेशंस जो है,
1: बहुत पराक्रम की बात है सर।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो सिमिलरली दे कैरीड आउट अदर ऑपरेशंस आल्सो, जिसमें कि उन्होंने अगेन इंडियन ट्रुप्स को जो है मेघना रिवर क्रॉस कराने में मदद करी थी। और जो बिगेस्ट हेली लिफ्ट का जो ऑपरेशंस कैरी आउट किया था ब्राह्मण बारिया से नरसिंहगढ़ी की जगह है
1: जी।
3: तो इसमें उन्होंने तकरीबन जो है 1400 आर्म ट्रुप्स जो है, आर्म ट्रुप्स में क्या होता है कि पूरा जवान जो है पूरे इक्विपमेंट के साथ वेपन के साथ एमिनेशन के साथ होता है, तो उसको उतना वजन होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है और उसको उनको जो है उन्होंने क्रॉस कराया था। इट वाज अ मेजर ऑपरेशन कैरीड आउट बाय देम। सिमिलरली एक और जो काफी जिसमें मदद मिली थी दैट वाज अ पैरा ड्रॉप, जो पैरा बटालियंस होती हैं उसको यहाँ पे ड्रॉप कराया था। तो तंगेल का ऑपरेशन काफी फेमस है जिसमें एक पैरा बटालियन ग्रुप को पूरे ग्रुप को जो है तंगेल जो जगह है उसके नॉर्थ में इन्होंने ड्रॉप किया था, ठीक है। उंगली ब्रिज होता है जो जमालपुर तंगेल रोड पे था, उसको कैप्चर करने का टास्क था। ये जो ऑपरेशन किया गया था जिसमें पूरे की पूरी जो है पैरा बटालियन जो है एयर ड्रॉप हुई थी, उसमें 48 एयरक्राफ्ट लगे थे, मतलब कितनी बड़ी फोर्स थी जिसमें पूरे कपड़ा ट्रांसपोर्ट जो है हुआ था। एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसमें कि 800 से ज्यादा ट्रुप्स जो हैं को ड्रॉप किया गया था विद आर्म्स एमिनेशन एंड इवन लाइट व्हीकल्स जो जीप होती है ना वो भी ड्रॉप हुई थी।
1: क्या बात।
3: अब देखिए इसको जब प्लान किया जाता है तो जैसे मैंने बताया ना कि नीचे से जब ग्राउंड फोर्सेस हैं उनसे डर होता है, उनके अटैक का डर होता है। जब आप स्पेशली क्या होता है जब ड्रॉप हो रहा होता है पैरा ड्रॉप में आदमी ऊपर से छलांग लगाता है उससे वो सबसे वनरेबल होता है सोल्जर।
1: बिल्कुल सर।
3: क्योंकि वो अपना वेपन तो फायर कर
1: नहीं
3: सकता,
1: कर सकता
3: और उसको ये भी नहीं दिख रहा है। कि मैं कहां लैंड कर रहा हूं
1: जी,
3: उसको एक ये भी चिंता रहती है कहां लैंड करने वाला हूं। तो उस समय ही एक्सपोज कम्प्लीटली, तो वो जो है एनिमी फायर के लिए उस समय वो रहता है। तो इसलिए ये जो होता है इसमें प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि पाथफाइंडर एक ग्रुप जाता है जो लोकेशन होती है उसको वो लोग मार्क करते हैं ताकि प्रॉपरली जो है लैंड कर सके, उतर सके, ड्रॉप कर सके। तो ये ऑपरेशन में पहले पाथफाइंडर ग्रुप्स भी गए थे और इवन दुश्मन को चकमा देने के लिए उनको भुलावे में रखने के लिए एक और ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था।
1: अच्छा।
3: एक और जगह एयर ड्रॉप प्लान किया गया था जो कि वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर था ताकि उनको यह ना पता चले कि कहां एक्चुअली ऑपरेशन हो रहा है।
1: दुश्मन कंफ्यूज
3: जी, कंफ्यूज है।
1: सुनी हो
3: डिटेल में जो प्लान किया गया था ऑपरेशन था और जो है उसकी सक्सेस में आप ये सोचिए कितना बड़ा मतलब आईएफ का हाथ था, जो है रोल था उन्होंने किया, एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशंस। इसी तरह से और भी मतलब जो अगर हम देखें, आईएफ ने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे ईस्टर्न फ्रंट पे, उन्होंने स्पेशल मिशंस किए थे, रेड्स की थी, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है ढाका यूनिवर्सिटी पे, जो उनको पता चला था कि पाकिस्तानी ट्रुप्स हैं वहाँ पे, तो उसके कारण उन्होंने उसमें रेड किया था, एंड स्पेसिफिक टारगेट्स को, स्पेसिफिक लोकेशन को उन्होंने जो है रेड में डिस्ट्रॉय किया था।
4: हाँ
3: जी। इसी तरह से 14 दिसंबर को जो ढाका में जो गवर्नमेंट हाउस है, जो गवर्नर हाउस था
4: जी, जी,
3: उसका रेड बहुत फेमस है
4: जी, बिल्कुल।
3: उसमें जो गवर्नर साहब थे, जो सिविलियंस का, मिलिट्री ऑफिसर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो है उनके कॉन्फ्रेंस होने वाली
4: होने
3: थी, ये जानकारी मिली थी इंडियन आर्म फोर्सेस को, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का जो है इंडियन एयरफोर्स को टास्क दिया गया था। एंड जब वो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसके 30 मिनट के बाद जो है एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो है इंडियन एयरफोर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था, एंड उन्होंने उसको इतना ज्यादा बर्बाद किया था कि जो गवर्नर साहब थे डॉक्टर मलिक, एंड उनके कैबिनेट ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया था। दिस इज हाउ दे प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, है ना
4: जी। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि भारतीय सेना ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारी थल सेना को आगे बढ़ने में किस प्रकार सहायता दी। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी और भामासर से हम इस युद्ध में सेना के पराक्रम को आगे भी जानेंगे। कीजिए इंतजार कार्यक्रम के अगले एपिसोड का, और कार्यक्रम का नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। सर, इस कार्यक्रम में आप आज भी शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू पूर्वा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं।
4: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने पूर्वा खले। तो दीजिए इजाजत अब इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है रेडियो आजाद हिंद।
5: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। एक अंतराल के बाद हाजिर होते हैं अगला कार्यक्रम लेकर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे लेडी विद द लैम्प कही जाने वाली मदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिन्होंने सेवा के क्षेत्र में नर्स के तौर पर समाज में उत्कर्ष काम किए। श्रोताओं, विश्व नर्स दिवस भी इन्हीं की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और बात करते हैं सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली मदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ स्वाति
2: और मैं हूँ फराज।
1: श्रोताओं, 12 मई हर साल इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नाम है निस्वार्थ सेवा का,
2: ये नाम है सहानुभूति और दया का,
1: ये नाम है ममता और करुणा का,
2: ये नाम है नर्सिंग को सम्मान और मान दिलाने वाली,
1: जिन्होंने दुनिया की पहली परिचारिका के तौर पर अपनी पहचान बनाई,
2: जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक तो थी ही, साथ में थी एक समाज सुधारक, लेखिका और सांख्यिकीविद और महिला हितचिंतक के रूप में भी खास तौर पर पहचानी जाती हैं।
1: ये सब कैसे और क्यों कहलाई, इस बारे में उनके कामों का हम आगे जिक्र करेंगे।
2: जी हाँ, फ्लोरेंस सिटी के नाम पर रखा गया उनका नाम वास्तव में उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गया
1: और उनके सत्कर्मों की खुशबू इस दुनिया में कुछ इस कदर फैली कि सदी गुजर जाने के बाद भी उसकी महक आज भी दुनिया को महका रही है।
2: और ब्रिटिश इतिहास की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने जीवन काल में ही एक लीजेंड बन गई थीं।
1: लेडी विद द लैम्प कही जाने वाली मदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कार्यों ने क्रीमिया में युद्ध के दौरान मॉडर्न नर्सिंग के मार्ग को प्रशस्त किया
2: और लाइफ के बाकी समय में भी उन्होंने मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही अस्पतालों में विशेष तौर पर स्वच्छता अभियान जारी रखा।
1: श्रोताओं, माना जा सकता है कि हाथ धोने के फायदों को सबसे पहले उन्होंने ही प्रमाणित किया, जो आगे चलकर कई जगह फायदेमंद भी साबित हुआ। लेकिन कोरोना काल में सबसे ज्यादा बीमारी से बचने के लिए यह वरदान बन गया।
2: इस महान शख्सियत का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के माता पिता यूं तो इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन 12 मई 1820 को एक यात्रा के दौरान इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्म होने के कारण इनका नाम फ्लोरेंस रखा गया, जबकि इनकी बड़ी बहन पोर्थनोप का नाम भी इटली के ही एक शहर के नाम पर रखा गया था।
1: बिल्कुल, धनी परिवार में जन्मी फ्लोरेंस के परिवार के इंग्लैंड में दो घर हुआ करते थे, सर्दीले मौसम के लिए हैम्पशायर में और गर्मी के मौसम के लिए ली हर्ट्स में एक घर बनाया गया था।
2: बच्चियों के एक साल के होते होते परिवार के 1821 में इंग्लैंड वापसी हुई। रईसी थाटबार्ट में पली बड़ी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उनके पिता विलियम नाइटिंगेल ने, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के फेवर में थे, इसीलिए उन्होंने बेटियों को घर पर ही पढ़ाया लिखाया और आधुनिक और शास्त्रीय भाषाओं, इतिहास, दर्शन और गणित की शिक्षा दी।
1: बिल्कुल, इसके साथ ही क्योंकि फ्लोरेंस दूसरे बच्चों से जरा सी अलग थी, वो सामान्य बच्चों जैसे खेल खिलौनों और जिद और गुस्से से भी कोसों दूर थी, सहानुभूति, सेवा और दया उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी।
2: उनका ये गुण उस समय सभी को दिखाई दिया जब फ्लू महामारी फैली और इस दौरान बच्ची फ्लोरेंस ने बीमारी लगने के डर से बिना अपने परिवार और नौकरों की देखभाल की, और शायद नर्स बनने की इच्छा का बीज भी यहीं से पनपा था।
1: नाइटिंगेल परिवार में बच्चों की कम उम्र में शादी कर देने का रिवाज था, ऐसे में फ्लोरेंस की भी शादी की बातें उनके युवा अवस्था तक आते आते की जाने लगी, लेकिन उन्हें शादी की चर्चा होना भी अजीब सा लगता था। ऐसे में उन्होंने अपने परिवार से शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
2: परिवार के लिए फ्लोरेंस का शादी से इनकार करना ही अपने आप में गंभीर समस्या बना हुआ था। उस पर फ्लोरेंस ने अपने नर्स बनने की इच्छा भी जता दी थी और अपना पक्का इरादा भी जाहिर कर दिया।
1: बेटी की अजीबोगरीब जिद से परिवार पशुपेश में पड़ गया। इसके बाद परिवार के बड़ों ने बेटी को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फ्लोरेंस ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो दुनिया में गरीबों की और बीमारों की सहायता करने के लिए ही आई हैं और ऐसा करना उनके लिए ईश्वर का आदेश है।
2: और साफ साफ जता दिया कि वे अपना इरादा किसी भी हाल में नहीं बदलेंगी। बचपन से फ्लोरेंस इसी तरह की बातें कहा करती थी, लेकिन तब सभी इसे बचपना मानकर नजरअंदाज कर दिया करते थे। अब किशोर उम्र में संतों सी धीर गंभीरता के साथ दृढ़ निश्चयता देखकर सभी हैरान थे।
1: 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में उस समय नर्स बनना सम्मानीय कार्य नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी नाइटिंगेल की नर्स बनने की जिद ने बवाल मचा दिया। जो सुनता हैरान और परेशान हो जाता।
2: उनके माता पिता को उनकी ये इच्छा बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो सिर्फ यही चाहते थे कि बेटी अपनी शादी करके अपना परिवार बसा ले। जिद का खामोश तूफान दोनों तरफ से तेजी से बढ़ता गया
1: और एक दिन बेटी ने नर्स बनने के लिए खाना पीना तक छोड़ दिया। उनकी सेहत बिगड़ने लगी और वो घोर निराशा में घिरकर डिप्रेशन में चली गई। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें 3 माह के लिए जर्मनी जाने की अनुमति दे दी, जहां उन्होंने पादरी थियोडोर फ्लिडनर के अस्पताल और लूथनर डिकोनॉस के स्कूल में पढ़ाई की। जर्मनी में केसरबर्थ में अपना नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नाइटिंगेल ने सिस्टर्स ऑफ मर्सी के साथ अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए पेरिस का रुख किया,
2: जहां उन्होंने कैथोलिक धार्मिक आदेशों के तहत अस्पताल के कामकाज और नर्सिंग तकनीकों की बारीकियों को समझा। ये सब उस समय मेडिकल फील्ड में खास अहमियत रखते थे।
1: श्रोताओं, पेरिस में लिया गया हर अनुभव उनके लिए बहुत ही खास था, जहां उन्होंने अस्पताल मैनेजमेंट और नर्सिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी कि हर व्यवहारिक पहलुओं को समझा और ये अनुभव आगे चलकर उनके क्रीमिया युद्ध के दौरान भी काम आए।
2: इसके बाद वे इंग्लैंड लौट आईं और लंदन में सभ्य महिलाओं के लिए एक अस्पताल की अधीक्षक और प्रबंधक बन गईं। सिर्फ 33 साल की उम्र तक पहुंचते फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थीं।
1: और जब 1854 में क्रीमिया युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना बीमार और घायल सैनिकों की भारी संख्या से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
2: चिकित्सा सामग्री की कमी, भीड़भाड़ और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण कई लोगों ने शिकायत की। अखबारों में चिकित्सा देखभाल की दयनीय स्थिति के बारे में खबरें छपने लगी।
1: दरअसल 1853 से 1856 के बीच हुए क्रीमिया के युद्ध में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने हिस्सा लिया था। रूस की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अलायंस तैयार किया गया और इस युद्ध को पहला आधुनिक युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेलवे, टेलीग्राफ और न्यू लेवल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था।
2: और क्रीमिया युद्ध ऐसा पहला यूरोपीय संघर्ष था जिसकी तस्वीरें ली गई थीं। वो पहला युद्ध भी था जिसकी रिपोर्टिंग करते हुए युद्ध संवाददाता बिजली के तार से मैसेज भेज रहा था, जिसके कारण युद्ध की खबरें फौरन अगले दिन अखबार तक पहुंच जाती थीं। और यह पहला मौका था जब जनता को युद्ध से जुड़े ताजा हालात पढ़ने को मिल रहे थे।
1: वाकई ये तो कमाल था। लेकिन श्रोताओं, राष्ट्रीय आक्रोश, सेना की विफलताओं और नर्सों की कमी के कारण बीमार और घायल सैनिकों की बुरी हालत के बारे में पत्रकार विलियम हॉवर्ड रसेल की रिपोर्ट को द टाइम्स अखबार में बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया था और ये युद्ध ब्रिटिश मिलिट्री डिसेबिलिटी और सहयोगी घायल सैनिकों की दयनीय हालत के लिए भी पहचाना जाने लगा।
2: अखबार ने इसी खबर के साथ मेडिकल स्पेशलिटी रखने वाले लोगों, खासकर नर्सेस को सहायता करने का आह्वान किया था, जिसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया जाने की सारी प्रोसेस पूरी की।
1: युद्ध सचिव सिडनी हर्बर्ट ने नाइटिंगेल से घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए नर्सों के एक ग्रुप की लीडरशिप की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी और 4 नवंबर 1854 को नाइटिंगेल और 38 नर्सों का एक समूह ब्रिटिश सेना के शिविर में पहुंचा।
2: वहां पहुंचने पर फ्लोरेंस और उनकी टीम को एक तरह से डरावने मंजर का सामना करना पड़ा। गंदगी के बीच ढेरों कीड़े मकोड़े भरे हुए अस्पताल में खचाखच मरीज, अभी भी कीचड़ और खून से सने हुए सैकड़ों घायल सैनिकों के घाव इन्फेक्टेड हो चुके थे। कई हैजा जैसी बीमारियां से ग्रस्त सभी बड़ी ही बेसब्री से कई दिनों से इलाज का इंतजार कर रहे थे।
1: युद्ध के मैदान से ज्यादा अस्पतालों में मरने वालों की गिनती ज्यादा थी। दवा, भोजन, बिस्तर जैसी जरूरी सुविधाओं की भी कमी थी। कुल मिलाकर अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। उस पर अस्पताल के डॉक्टरों का रवैया फ्लोरेंस और उनकी टीम के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
2: ऐसे इमरजेंसी जैसे हालात में हेल्प करने पहुंची टीम के साथ डॉक्टरों का सलूक क्यों खराब था भाई?
1: कारण सुनकर आपको भी हैरानी होगी। जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स इन नर्सों को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो पुरुष थे और वो महिलाओं को नाकाबिल मानते थे, इसीलिए वो महिला नर्सों के साथ काम नहीं करना चाहते थे।
2: तो यहाँ भी महिलाओं को द्वयम दर्जे का मानकर उपेक्षित किया जा रहा था।
1: जी हाँ, लेकिन महिलाओं की बदतर स्थिति, उनके संघर्ष और हालात परिवर्तन पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ अस्पताल में जल्दी ही हालात बदलने लगे, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और हॉस्पिटल स्टाफ कम था। ऐसे में जल्दी ही फ्लोरेंस और उनकी टीम ने अपना काम संभाल लिया।
2: और जल्दी ही फ्लोरेंस की गाइडेंस में नर्सों ने मिलिट्री अस्पताल और उसमें एडमिट सैनिक मरीजों की हालत बदल कर रख दी। सबसे पहले इन्फेक्शन से निपटने के लिए साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, हर कमरे और हर मरीज की सफाई की गई।
1: यहीं पर फ्लोरेंस ने सबसे पहले हाथ धोने की महत्ता को समझाया और अपनी टीम को हर काम के पहले और हर काम के बाद हाथ धोने के निर्देश दिए, जिसने कामयाबी में बड़ी भूमिका तय की।
2: और आज तक हाथ धोना बीमारी के फैलाव को रोकने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक माना जाता है।
1: चूंकि अस्पताल में उस समय लाइट्स तो थी नहीं, मरीजों को देखने के लिए एक दीपक लेकर जाया करती थी और वो मरीजों की देखरेख करने के लिए रात रात भर पूरे अस्पताल में उसी दीपक की लौ को लेकर घूमा करती।
2: जहाँ कहीं भी बीमारी अपने सबसे खतरनाक रूप में फैली हो और बीमारी के बहाने मौत का शिकंजा मरीज को शिकार बनाने के लिए तैयार हो, वहाँ लेडी विद द लैंप जरूर दिखाई दे जाती और मौत को हार मानकर कदम पीछे कर लेने पड़ते।
1: कहते हैं मरीज को उनकी मौजूदगी ही ईश्वरीय साथ होने का एहसास कराती थी। इस एहसास का जिक्र क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिक मैकडोनाल्ड ने 1855 में अपने घर को लिखे एक पत्र में भी किया।
2: कहते हैं सिर्फ 6 महीनों के भीतर नाइटिंगेल और उनकी टीम ने अस्पताल का काया पलट कर दिया और उनकी गाइडेंस और मेहनत के बलबूते मृत्यु दर लगभग रुक ही गई थी। आंकड़े बताते हैं कि मृत्यु दर 40% से घटकर महज 2% रह गई थी।
1: और इस दौरान खुद फ्लोरेंस भी एक बार बुरी तरह बीमार पड़ गई, मौत की कगार तक जा पहुंची, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो स्वस्थ हो गए। उन्होंने स्कूटारी में ही युद्ध के खत्म होने तक अपना काम जारी रखा।
2: और यहीं रहते हुए फ्लोरेंस एक मशहूर नर्स बन गई। उनके बारे में गीतकारों और कवियों ने गीत और कविताएं लिखी, तो उनकी पेंटिंग, पोस्टर, प्रतिमाएं, मैट भी बनाए जाने लगे। उनकी बनाई लिथोग्राफी टेक्निक से बनी तस्वीर भी खासी पसंद की जाती थी।
1: लिथोग्राफी टेक्निक वही ना जो ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग तकनीक है
3: जी,
1: जिसमें एक चूना, पत्थर, धातु की प्लेट पर किसी भी ऑयली लिक्विड से चित्र बनाकर कागज पर छापा जाता है।
2: हाँ हाँ, वही चूना पत्थर पर लिखने पर बेस्ड लिथोग्राफी। ये तेल और पानी के न मिलने के सिद्धांत पर काम करती है और इसका आविष्कार 1796 में एलोर्ड्स सैनेफेल्डर ने किया था। आजकल प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए बड़े पैमाने पर ऑफसेट लिथोग्राफी का यूज होता है, किफायती भी है।
1: हाँ, तो क्रीमिया युद्ध के समय से ही सिस्टर फ्लोरेंस की प्रसिद्धि बढ़ चुकी थी, लेकिन सिस्टर फ्लोरेंस को अपनी तारीफें सुनना जरा सा भी नहीं पसंद था। यही कारण था कि जब अगस्त 1856 में युद्ध समाप्ति के बाद फ्लोरेंस वापस ब्रिटेन लौटी, तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया और चुपचाप डर्बीशायर में ली हर्ट्स में अपने घर पर रहने लगी।
2: लेकिन सच्चाई तो यही है, वे क्रीमिया युद्ध से एक हीरो बनकर ही लौटी थीं और उनके अपने अनुभवों का समाज को फायदा भी हुआ था।
1: फ्लोरेंस ने अपने सम्मान के दान में मिली राशि का सदुपयोग करने के लिए नाइटिंगेल फंड के नाम से राशि और एकत्रित की। बिना रुके काम करते रहने के लिए नाइटिंगेल कोष की भी स्थापना की गई। सन 1860 तक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दान की गई धनराशि से लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में दुनिया का पहला प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल स्थापित कर लिया था, जो था नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, और जिसका उद्घाटन 9 जुलाई 1860 को किया गया। उनकी प्रशिक्षित नर्सों ने ब्रिटिश अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी और नाइटिंगेल के नर्सिंग सिद्धांतों को पूरी दुनिया तक फैलाया।
2: और नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग ने नर्सिंग को एक पेशे के रूप में भरपूर प्रतिष्ठा दिलवाई और जिसका असर दुनिया भर में दिखाई पड़ा। और इसके बाद इसी की तर्ज पर अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह के स्कूल स्थापित किए गए।
1: उन्होंने अस्पतालों के वार्डों के डिजाइन में भी काफी बदलाव करने का सुझाव दिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोशनी, ताजी हवा के लिए लंबी और ऊंचाई वाली खिड़कियों को लगाने की सलाह दी गई।
2: साथ ही उन्होंने मेडिकल रिफॉर्म के लिए बड़े बड़े अभियान चलाना जारी रखा। उन्होंने खास तौर से ब्रिटिश सेना की हेल्थ सेक्टर में बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया और बदलाव किया। उन्होंने सैनिकों की हेल्थ के लिए शाही आयोग गठित करवाया और फ्लोरेंस के इन सभी प्रयासों से महारानी विक्टोरिया बहुत अधिक प्रभावित हुई।
1: जी हाँ श्रोताओं, यही वजह थी कि महारानी विक्टोरिया के साथ उनकी मुलाकात कई बार हुई और दोनों ने एक दूसरे को पत्र भी लिखे और पत्रों का यह सिलसिला नाइटिंगेल के अंतिम दिनों तक जारी रहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को महारानी विक्टोरिया ने एक नक्काशीदार ब्रॉच भी गिफ्ट किया था जिसे नाइटिंगेल ज्वेल के नाम से जाना जाता है।
2: 1907 में एडवर्ड 7 से ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त करने वाली नाइटिंगेल पहली महिला बनी। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नाइटिंगेल ने 1870 में ब्रिटिश रेड क्रॉस की स्थापना में सहयोग दिया। वह इस युवा संगठन की महिला समिति की सदस्य भी रहीं।
1: फ्लोरेंस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भाषण नहीं दिए, न ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और इतावली भाषाओं पर समान रूप से अधिकार रखने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल कई भाषाओं में धारा प्रवाह बोला करती थी। वो एक बहुत ही अच्छी लेखिका थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने तकरीबन 200 पुस्तकें, लेख और पुस्तिकाएं, साथ ही लगभग 1500 पत्र लिखे होंगे।
2: उनकी लिखी गई किताबों में एक किताब का जिक्र करना चाहूंगा, नोट्स ऑन नर्सिंग, जो जनवरी 1860 में प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक ने समय से पहले कई बातें समझाई जिसका उद्देश्य साधारण महिलाओं को अपने परिवार की देखभाल करने में मदद करता था।
1: जी हाँ, वैसे तो ये पुस्तक आम जनता के लिए नर्सिंग का एक व्यवहारिक और बेहतरीन परिचय था। इस पुस्तक की हजारों प्रतियां बिकी और ये आज भी मार्केट में उपलब्ध है।
2: 1865 से फ्लोरेंस लंदन में बस गईं। अपने जीवन के शेष समय तक वे स्वास्थ्य सेवा सुधार की एक सशक्त और आधिकारिक समर्थक बनी रहीं। उन्हें ब्रिटेन और दुनिया भर से कई सम्मान प्राप्त हुए।
1: क्या आप जानते हैं, काफी उम्रदराज होने के बावजूद वे काफी अस्वस्थ भी रहा करती थी, फिर भी जरूरत पड़ने पर राजनेताओं जैसे प्रतिष्ठित लोगों से मिल लिया करती। 90 वर्ष की आयु तक वे जीवित रहीं और सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 13 अगस्त 1910 को अपने घर में ही सोते समय निधन हो गया।
2: नर्स का यदि पूरा मतलब देखा जाए तो एन से नोबल यानी नेक इरादे वाले, यू से अंडरस्टैंडिंग, आर से रिस्पॉन्सिबल, एस से सिंपैथेटिक और ई से एफिशिएंट यानी अपने काम में कुशल।
1: ये सारे शब्द एक नर्स के गुणों, श्रेष्ठता, समझ, जिम्मेदारी, सहानुभूति और कार्यकुशलता को दर्शाते हैं जो मरीजों की सेवा और देखभाल के लिए समर्पित होते हैं।
2: ये सभी गुण फ्लोरेंस नाइटिंगेल में आसानी से दिखाई दिए। कहा जा सकता है कि नर्स की व्याख्या खुद फ्लोरेंस थी या फ्लोरेंस ही व्याख्या थी, जो भी हो, लेकिन उनका पूरा जीवन देखते हुए कहा जा सकता है फ्लोरेंस खुद नर्सिंग की चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी।
1: आज भी उनको उसी शिद्दत से याद किया जाता है और नर्सिंग पेशे से जुड़े लोग उनके जैसे आदर्श स्थापित करने का ही सपना संजोते चले आ रहे हैं।
2: इसीलिए हर साल नर्स सप्ताह को खास तरह से मनाया जाता है। लेकिन जानते हैं इस दिन को सेलिब्रेट करने का चलन कब से शुरू हुआ?
1: इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पहली बार अमेरिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के प्रतिनिधि डोरोथी सदरलैंड ने नर्सों को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। उनके इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर को साल 1953 में मान्यता प्रदान की।
2: इंटरनेशनल नर्सेस काउंसिल द्वारा 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से मनाया गया। 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिवस के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो गया।
1: श्रोताओं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑफिशियली तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा सन 1982 में की, लेकिन इसके साथ ही एक और घोषणा की गई, राष्ट्रीय नर्स सप्ताह मनाने की। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस उद्घोषणा पर हस्ताक्षर भी किए,
2: जिसके बाद से 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई और फिर इसे 6 से 12 मई तक राष्ट्रीय नर्स सप्ताह के रूप में विस्तारित किया गया। उसके बाद नर्सों, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज को एक साथ लाने वाले सेरेमनीज, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से इंटरनेशनल नर्सेज वीक आगे चलकर धीरे धीरे एक ग्लोबल इवेंट में तब्दील होता चला गया।
1: हर साल आईसीएन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के लिए एक खास थीम यानी कि एक खास सब्जेक्ट को चुनता है जो दुनिया भर में नर्सेज और हेल्थ केयर सिस्टम को अफेक्टिव करने वाली इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पर केंद्रित होता है।
2: खास थीम बनाने और विषय चुनने का उद्देश्य भी यही होता है कि इस खास दिन को बेहतर से बेहतर सेवा को बढ़ावा देना, जागरूकता बढ़ाने और हाई क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ साथ मरीजों के ट्रीटमेंट में ज्यादा से ज्यादा सुधार लाने में नर्सों की विशेष भूमिका की तरफ दुनिया का ध्यान दिलाना होता है।
1: और इस साल यानी कि 2026 की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। और ये विषय एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार को भी उजागर करता है, जब नर्सों को सहयोग, सम्मान, सुरक्षा, सशक्तिकरण मिलता है तो ये बेहतर देखभाल प्रदान कर सकती हैं और अधिक जीवन बचाने में मदद कर सकती हैं। सशक्तिकरण में उनका अपना स्वास्थ्य भी शामिल होता है।
2: जी हाँ बिल्कुल, देखिए ना, नर्सें अक्सर लंबी शिफ्ट में काम करती हैं, घंटों खड़ी रहती हैं, भावनात्मक दबाव भी बर्दाश्त करती हैं। ये इन्फेक्टेड या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की देखभाल करती हैं। निवारक रेगुलर हेल्थ चेकअप उन्हें अपने स्वास्थ्य संकेतकों के बारे में जागरूक रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत ट्रीटमेंट करने की मदद कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, इस तरह साल 2025 की थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज यानी कि ICN द्वारा घोषित यह थीम नर्सों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा में निवेश के महत्व पर केंद्रित थी।
2: 2024 की थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। इस थीम का उद्देश्य नर्सिंग में निवेश के आर्थिक और सामाजिक लाभों को उजागर करना था। हमारी नर्सें हमारा भविष्य ये थीम थी साल 2023 की।
1: 2022 की थीम चुनी गई थी नर्सें नेतृत्व करने वाली आवाज, नर्सिंग में निवेश करें और वैश्विक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए अधिकारों का सम्मान करें।
2: और 2021 की थीम चुनी गई थी नर्सें नेतृत्व करने वाली एक आवाज, भविष्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए एक दृष्टिकोण। ये खास थीम COVID-19 महामारी के दौरान नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान और भविष्य की स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने में उनकी भूमिका पर केंद्रित थी।
1: श्रोताओं, इसी तारतम्य में 2020 की थीम रही नर्सें नेतृत्व करने वाली एक आवाज, दुनिया को स्वास्थ्य की ओर ले जाना। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2019 की थीम नर्सें नेतृत्व करने के लिए एक आवाज, सभी के लिए स्वास्थ्य, ये रखी गई थी। ये विषय नर्सिंग पेशे की अहमियत, स्वास्थ्य सेवा में उनके नेतृत्व और 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य देखभाल में योगदान को उजागर करता है।
2: मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सेलिब्रेट करने की थीम चाहे जो भी हो, सबका मकसद सिर्फ यही होता है ताकि दुनिया नर्सों के समर्पण और कड़ी मेहनत को जान सके, पहचान सके, उसे सम्मान दे सके।
1: बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ना, चाहे बीमारी की रोकथाम हो, मरीजों का स्वास्थ्य लाभ हो और या फिर किसी भी तरह की हेल्थ एजुकेशन, सभी जगह नर्सों की भूमिका सबसे ज्यादा खास होती है। एक तरह से नर्स ही मरीज के मेडिकल मैटर्स पर नजर रखने से लेकर ट्रीटमेंट करने और देखभाल करने तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
2: और ये खास दिन नर्सिंग शिक्षा के लिए फंड जुटाने, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर से बेहतर बनाने और मरीजों की सेवा में पूर्ण समर्पण करने वाले मेडिकल स्टाफ की हेल्थ और रिस्पेक्ट करने की याद दिलाता है।
1: बिल्कुल सही, नर्सिंग के महत्व की याद दिलाने की जिम्मेदारी उठाने वाला प्राइम फैक्टर है नेशनल नर्सेस एसोसिएशन यानी कि NAA। इस खास दिन में हम नर्सों के बलिदानों, उनकी सेवाओं के बारे में सीखते हैं और समझते हैं। खास तौर पर महामारी के दौरान इनकी समर्पण भावना के बारे में हमने जाना।
2: 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा नर्सिंग और मिडवाइफरी पर वैश्विक रणनीतिक दिशा निर्देश 2021 से 2026 नीति जारी की गई थी। ये नीति रोजगार, शिक्षा, नेतृत्व और सेवा वितरण को कवर करती है।
1: वास्तव में नर्स मेडिकल स्टाफ की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके योगदान के बिना मरीज का स्वस्थ हो पाना मुश्किल है और बस यही याद दिलाता है इस खास दिन को।
2: इस साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है एक लक्ष्य और खास उद्देश्य के साथ। कोशिश की जाएगी नर्स जिन कठिनाइयों के बीच काम करती हैं, मसलन अत्यधिक टेंशन और स्टाफ की कमी, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और मदद करने के व्यवहारिक तरीकों को प्रोत्साहित किया जाए।
1: और इसी तरह दुनिया भर में रोगियों की देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नर्सों की प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और प्रभाव को स्वीकार और सम्मानित करना। इसके अलावा नर्सों को तत्काल वित्तीय सहायता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी फिजिकल मेंटल सेफ्टी की जरूरतों पर भी ध्यान देना है।
2: हम सैल्यूट करते हैं उन सभी नर्सिंग स्टाफ को जो दिन रात अपने पराए के भेद से परे रोगियों की सेवा में खुद को पूरी तरह समर्पित किए हुए हैं। हम आज के खास दिन विशेष रूप से याद कर रहे थे नर्सिंग पेशे को सम्मान दिलवाने वाली दुनिया की पहली नर्स सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। आज के दिन हम उनको पूरी दुनिया की तरफ से दिल से धन्यवाद देते हैं।
1: और इसी तरह हमें नर्सिंग और नर्सिंग से जुड़े सेवाधारियों के तौर पर फ्लोरेंस के रूप में एक ममतामयी तोहफा मिला है। और ये बिल्कुल सही बात है, बिना नर्सिंग स्टाफ के मेडिकल ट्रीटमेंट और अस्पताल की कल्पना भी मुश्किल सी ही मालूम पड़ती है। आखिर में इतना ही कि ममता करुणा दया की जीवंत मूरत, आप माँ नहीं लेकिन माँ से कम भी नहीं। बीमारों को देती हैं जीवन का दान, खामोशी से करती रहती हैं अपना काम। तो श्रोताओं, आज के लिए इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। और नर्सों के योगदान को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, नर्सों को रिस्पेक्ट दीजिए।

0: और मेरे साथ मेरे सहयोगी थे फराज, लेखन था नीना सिंह का। और इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए

नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक भारत के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे
3: भारतीय वायुसेना आकाश की विजेता।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: ओ दादू, ये क्या था? इतनी तेज आवाज और कितना तेज उड़ रहा था दादू। वो देखो ना, कितना छोटा दिख रहा है इतनी ऊपर, लेकिन आवाज अब भी कितनी तेज आ रही है।
2: वो कोई आम जहाज नहीं था, वो भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट था।
1: वायुसेना? दादू इसके बारे में बताइए ना, ये सेना युद्ध के समय किस तरह से काम करती है, क्या क्या काम करती है और कब कब काम करती है?
2: अरे अरे अरे रुचि बेटा, थोड़ा आराम से, एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगी मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा?
1: सॉरी दादू। अच्छा ठीक है, अब मैं एक एक करके आपसे सवाल करूंगी।
2: ये हुई ना बात, चलो अब बाकी की एक्सरसाइज कल करेंगे। तो आज बात करते हैं वायुसेना पर। पहले मैं बेटा बैठ जाऊं कहीं?
1: हाँ दादू बिल्कुल।
2: हाँ तुम भी बैठो बिटिया।
1: हाँ दादू मैं बैठ गई।
2: हाँ अब पूछो, तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल है?
1: सवाल ये है दादाजी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वायुसेना क्या है।
2: बिटिया भारतीय वायुसेना सिर्फ विमान उड़ाने वाली फोर्स नहीं है।
1: अच्छा?
2: ये देश की हवाई सुरक्षा की ढाल है। ये आसमान में तैनात वो ताकत है जो हर पल हर दिशा से आने वाले खतरे पर नजर रखती है। तुमने तीन सेनाओं के बारे में तो सुना है ना, जिसमें से दो के विषय में हम पहले बात भी कर चुके हैं।
1: थल सेना, नौसेना।
2: वेरी गुड। थल सेना जमीन की रक्षा के लिए, नौसेना समुद्र की रक्षा के लिए, और वायुसेना
1: आकाश की रक्षा के लिए। मतलब अगर कोई दुश्मन आसमान से हमारे ऊपर हमला करे तो उसे वायुसेना ही रोकती होगी।
2: बिल्कुल सही बेटा। और वायुसेना सिर्फ दुश्मन को रोकती ही नहीं, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देती है।
1: दादू भारतीय वायुसेना का कोई आदर्श वाक्य भी है क्या?
2: हाँ बिटिया, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम्, जिसका मतलब होता है महिमा के साथ आकाश को छूना।
1: वाह दादू ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका अर्थ और भी गहरा होगा, सही कहा ना मैंने?
2: हाँ हाँ बिटिया, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक प्रेरणा है। तुम जानती हो इस वाक्य को श्रीमद् भगवद् गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, उस समय अर्जुन देखते हैं एक ऐसा रूप जो तेजस्वी है, जो अनगिनत रंगों से भरा हुआ है, जो आकाश तक फैल रहा है, और उस अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन के मन में आश्चर्य भी होता है और एक गहरा भय भी।
1: मतलब वो दृश्य बहुत शक्तिशाली रहा होगा दादाजी।
2: हाँ बेटा, उसी भावना को ये श्लोक बताता है। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेक वर्णम् व्यात्ताननम् दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिम् नाविन्दामि शमम् च विष्णु।
1: इसका भाव क्या है दादाजी?
2: इसका भाव है बेटा, हे प्रभु आपका रूप इतना विशाल, इतना तेजस्वी है कि वो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। आपकी चमकती आंखें और विराट स्वरूप देखकर मन भय और आश्चर्य से भर जाता है और आत्मनियंत्रण भी डगमगा सा जाता है।
1: लेकिन दादाजी, इस श्लोक का वायुसेना के आदर्श वाक्य से क्या संबंध है भला?
2: बिटिया, जैसे भगवान का वो रूप असीम शक्ति और तेज का प्रतीक था, वैसे ही भारतीय वायुसेना भी अपनी ताकत, गति और तकनीक से दुश्मन को अभिभूत कर देती है। वायुसेना का उद्देश्य है आकाश में इतनी ताकत से उड़ना और पहरा देना कि कोई भी दुश्मन भारत की ओर देखने से पहले कई बार सोचे।
1: दादाजी मैं समझ रही हूँ, मतलब नभः स्पृशं दीप्तम् सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि वायुसेना की आत्मा है।
2: बिल्कुल बिटिया, ये उस ऊंचाई की पहचान है जहां सिर्फ ताकत नहीं हम भारतीयों का गौरव भी दिखाई देता है।
1: दादू, अब मैं जब भी आसमान में देखूंगी ना, मुझे वही दीप्त शक्ति याद आएगी।
2: और याद रखना बिटिया, जो आकाश को छूने का सपना देखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं।
1: दादू, पहले के जमाने में तो लोग तलवार और बंदूक से लड़ा करते थे, तो फिर ये वायुसेना कब और कैसे बनाई गई?
2: देखो बेटा, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी तरह समय के साथ युद्ध का तरीका भी बदल गया। पहले युद्ध जमीन पर ही हुआ करते थे, फिर तोपें और जहाज आए, और फिर युद्ध आसमान तक पहुंच गया। जब दुश्मन आसमान से हमला करने लगा तो जरूरत पड़ी एक ऐसी ताकत की जो आसमान में जाकर दुश्मन का मुकाबला कर सके।
1: अब समझी मैं। दादू, आपने बताया था कि वायुसेना बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर से वही सवाल कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये भी तो बताइए।
2: बिटिया, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी।
1: मतलब आजादी से पहले ही?
2: हाँ बिटिया, और इसकी पहली उड़ान हुई थी 1 अप्रैल 1933 को। उस समय वायुसेना बहुत छोटी थी, सिर्फ 6 अधिकारी और 19 वायु सैनिक थे।
1: मतलब बहुत छोटी सी शुरुआत थी दादाजी।
2: हाँ बेटा, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। उस समय जो विमान थे वे थे वेस्टलैंड वापिती, और इनसे बनाया गया पहला स्क्वाड्रन।
1: दादाजी, ये स्क्वाड्रन क्या होता है?
2: बेटा, स्क्वाड्रन मतलब विमानों और सैनिकों की एक टीम जो मिलकर मिशन पूरा करती है। कुछ ही सालों में 1936 से 1938 के बीच वायुसेना ने उत्तर पश्चिम के इलाकों में भारतीय सेना की मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने मीरान शाह उत्तरी वजीरिस्तान से उड़ान भरकर उस समय के अभियानों में सहयोग दिया।
1: मतलब ये शुरुआत से ही सारी सेना एक साथ काम कर रही थी।
2: हाँ बिल्कुल, फिर धीरे धीरे वायुसेना की ताकत बढ़ती गई, और ए फ्लाइट से सन 1936 में बी फ्लाइट बनी, और फिर सन 1938 में सी फ्लाइट, और इस तरह नंबर 1 स्क्वाड्रन पूरी ताकत में आ गया।
1: यानी धीरे धीरे एक पूरी टीम तैयार की गई थी।
2: हाँ बेटा, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय भारतीय वायुसेना सिर्फ एक ही सक्रिय यूनिट थी, लेकिन तब तक 16 अधिकारी और लगभग 600 से ज्यादा जवान इसमें शामिल हो चुके थे।
1: दादू, ये सेना हमारी रक्षा के लिए समय के साथ बनी, और इतनी छोटी शुरुआत से आज इतनी बड़ी ताकत बन गई दादाजी।
2: बिल्कुल बेटा, बहुत बड़ी ताकत बन गई है।
1: दादू, इतनी बड़ी वायुसेना को कौन संभालता है? इतने सारे विमान, अधिकारी, ये सारा सिस्टम मला कैसे चलता है?
2: बताता हूँ बेटा, अच्छा सवाल है। हर बड़ी ताकत को चलाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व जरूरी होता है। वायुसेना का सिस्टम भी ऐसा ही काम करता है। सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल, यही पूरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख होते हैं।
1: मतलब ये पूरे सिस्टम को चलाते हैं, और पूरी वायुसेना की कमान इनके ही हाथ में होती है।
2: बिल्कुल सही बेटा, लेकिन बिटिया, इतनी बड़ी सेना को एक इंसान अकेले नहीं चला सकता, इसलिए उनके नीचे अलग अलग अधिकारी होते हैं जो अलग अलग काम संभालते हैं।
1: वो कैसे दादाजी?
2: ये विभाग तय करता है बेटा कि कहां, कब और कैसे कार्यवाही करनी है। हर विभाग प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करता है। ट्रेनिंग विभाग में जवानों को, पायलट्स को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। तकनीकी विभाग विमान, मशीन और उपकरण सही हालत में रहें, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह लॉजिस्टिक्स, ईंधन, हथियार, खाना, जरूरी सामान सब समय पर पहुंचे, ये काम इस विभाग का होता है।
1: मतलब हर काम के लिए अलग अलग टीम होती है दादाजी।
2: बिल्कुल, यही वजह है कि वायुसेना इतनी सटीक और मजबूत तरीके से काम करती है। और सबसे जरूरी बात, पूरी वायुसेना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है बेटा।
1: मतलब ये सिर्फ सेना नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है दादाजी।
2: हाँ बिटिया, ये सिर्फ एक संगठन नहीं, ये देश की सुरक्षा की रीढ़ है। रीढ़,
1: दादू, जब कोई खतरा आता है तो वायुसेना कैसे काम करती है?
2: देखो बेटा, मान लो रडार पर कोई संदिग्ध विमान दिखाई देता है, तुरंत कंट्रोल रूम अलर्ट होता है, पास के एयरबेस को सूचना दी जाती है, पायलट्स को आदेश मिलता है, कुछ ही मिनटों में फाइटर जेट उड़ान भरता है और फिर हवा में जाकर उस खतरे को पहचानता है और जरूरत हो तो कार्यवाही करता है।
1: वाह दादू, ये तो फिल्मों के जैसा लगता है।
2: अरे बेटा, फिल्में तो हमारे देश के इन असली हीरोज से प्रेरणा लेकर बनती हैं।
1: दादू, आपने बताया था कि वायुसेना आसमान से देश की रक्षा करती है, वो कैसे भला? और इनके पास कौन कौन से जहाज होते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं, जरा ये भी तो बताइए।
2: बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। देखो, वायुसेना की असली ताकत है उसके आधुनिक विमान और घातक हथियार। सबसे पहले लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट्स के बारे में सुनो। ये लड़ाकू विमान वो जेट होते हैं जो सीधे दुश्मन से लड़ते हैं, जैसे भारतीय बेड़े की सुखोई 30 MKI। ये बहुत ताकतवर और लंबी दूर तक उड़ सकता है।
1: जी दादू, टीवी पर अक्सर इसके बारे में मैं सुनती रहती हूँ।
2: फिर है बेटा राफेल, जो बेहद ही आधुनिक तकनीक वाला बहुत सटीक हमला करता है। इसके बाद आता है सुखोई, जो भारत का स्वदेशी जहाज है और सबसे तेज और हल्के जेट में आता है।
1: मतलब ये आसमान में ही दुश्मन से लड़ लेते हैं दादाजी?
2: बिल्कुल, यही हमारे आसमान के पैनी नजर वाले योद्धा हैं बेटा।
1: दादू, भारतीय वायुसेना के बेड़े में और कौन कौन से जहाज हैं?
2: ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिनके बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ बेटा। इसके अलावा दो बेहद ही खास विमान भारतीय वायुसेना के पास हैं, C-17 ग्लोबल मास्टर तृतीय, जो भारी सामान ले जाने के लिए है, और C-130 जे सुपर हरक्यूलस, जो कि बेहद ही खास मिशन के लिए उपयोग किया जाता है।
1: ओह, मतलब ये सेना की मदद करते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, इसके अलावा HAL ध्रुव रेस्क्यू और सपोर्ट के लिए AH-64 अपाचे, दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निगरानी और रडार, इन विमानों का जखीरा भी हमारे पास है।
1: अच्छा दादाजी, एक सवाल और आता है दिमाग में।
2: पूछो बेटा।
1: क्या कुछ ऐसे विमान भी होते हैं जो सिर्फ नजर रखने का काम करते हो?
2: हाँ बिल्कुल बेटा, DRDO नेत्र और इवाक्स ऐसे ही विमान हैं। ये आसमान में आंख की तरह होते हैं, दुश्मन को पहले ही पहचान लेते हैं।
1: और हथियार?
2: वायुसेना के पास कई तरह के आधुनिक हथियार होते हैं बेटा, जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र, हवा से हवा में मार के लिए बहुत तेज और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है। वहीं लेजर गाइडेड बम, स्मार्ट बम, जो खुद लक्ष्य पहचान लेते हैं और सही जगह जाकर गिरते हैं।
1: साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग दादू।
2: यस इट इज बेटा। आज की वायुसेना सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक भी है। GPS सिस्टम, नाइट विजन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में गिनी जाती है बेटा। एक बात और बेटा, वायुसेना के पास कई तरह के विमान होते हैं।
1: जैसे?
2: जैसे कि फाइटर जेट्स, जो दुश्मन से लड़ने के लिए बहुत तेज और फुर्तीले होते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो सैनिक और सामान ले जाने के लिए उपयोगी होते हैं। हेलीकॉप्टर, जिनका उपयोग रेस्क्यू, मेडिकल सहायता, पहाड़ी इलाकों में सपोर्ट के लिए किया जाता है। और निगरानी विमान, जो दुश्मन पर नजर रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: दादाजी, क्या वायुसेना के पास आज के जमाने की ड्रोन और आधुनिक तकनीक भी जुड़ चुकी है?
2: हाँ बिटिया, क्योंकि अब वायुसेना सिर्फ लड़ती नहीं, दुश्मन को देखती है और जरूरतमंद को बचाती है और मदद करती है।
1: दादू, जब वो पायलट इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं या मौसम खराब होने पर कभी कभी तो किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में उन्हें ऊपर से जंप भी करनी होती होगी, तो क्या उन्हें डर नहीं लगता?
2: डर तो बेटा हर इंसान को लगता है, लेकिन सैनिक वो होता है जो डर के बावजूद अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: जो पायलट इतने तेज जेट उड़ाते हैं, उनके पायलट बनने के प्रशिक्षण की शुरुआत कैसे होती है, थोड़ा ये भी तो बताइए।
2: बताता हूँ बेटा, कोई भी पायलट बन सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और मजबूत इरादा।
1: ये तो मैं जानती हूँ दादाजी। आप ये बताइए, वायुसेना में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं?
2: बेटा, अगर तुम 12वीं के बाद जाना चाहो ना, तो एक एग्जाम होता है NDA, उसमें पहले पेपर देना होता है, फिर इंटरव्यू और फिर मेडिकल।
1: और अगर कोई कॉलेज के बाद जाना चाहे तो?
2: तब आता है CDS, यानी ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम देना होता है, फिर इंटरव्यू और बाकी सारी प्रक्रिया।
1: और दादू, वायुसेना का अपना भी कोई एग्जाम होता है क्या?
2: हाँ, बिल्कुल, उसे कहते हैं FCAT, यानी एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये खास वायुसेना के लिए होता है बेटा, जिससे तुम पायलट भी बन सकती हो और ग्राउंड ड्यूटी में भी जा सकती हो। लेकिन बिटिया, इन सब में एक चीज सबसे खास होती है, SSB इंटरव्यू।
1: वो इतना खास क्यों है दादाजी?
2: क्योंकि वहाँ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देखा जाता, वहाँ देखा जाता है तुम्हारा आत्मविश्वास, सोचने का तरीका और मुश्किल समय में तुम कैसे फैसले लेती हो।
1: मतलब वहाँ होती है इंसान की असली पहचान।
2: बिल्कुल, वही तय होता है कि तुम वर्दी के लायक हो या नहीं।
1: अच्छा दादू, किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट होने के बाद फिर क्या होता है?
2: असली सफर तो तभी शुरू होता है मेरे बच्चे, जब एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है और यहीं से तैयार होते हैं भारत के भविष्य के पायलट्स।
1: अच्छा दादाजी, ट्रेनिंग के कितने फेज होते हैं और क्या ये आसान होती है?
2: नहीं बिटिया, बिल्कुल आसान नहीं होती। ट्रेनिंग धीरे धीरे एक एक कदम करके होती है। सबसे पहले उन्हें किताबों से समझाया जाता है कि विमान कैसे उड़ता है, हवा में संतुलन कैसे बनाता है, रास्ता कैसे तय करते हैं। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान थ्योरी, एरोडायनामिक्स, नेविगेशन पढ़ाया जाता है।
1: मतलब पहले दिमाग की ट्रेनिंग होती है?
2: हाँ, और फिर आता है सबसे मुश्किल पार्ट, जिसमें पायलट ट्रेनिंग की शुरुआत छोटे छोटे विमान से होती है, धीरे धीरे बड़े और तेज जेट तक पहुंचने के लिए।
1: हो, मतलब धीरे धीरे एक्सपर्ट बनाते हैं। दादाजी, ये तो बड़ा मजेदार है। फिर अगले फेज में क्या होता है?
2: इसके बाद सिखाया जाता है कि अगर युद्ध हो जाए तो क्या करना है, यानी हथियार कैसे इस्तेमाल करने हैं, दुश्मन का सामना कैसे करना है।
1: मतलब असली जंग की तैयारी यहीं से शुरू होती है।
2: हाँ बेटा, यहाँ अपने जीवन को बचाने की तैयारी कराई जाती है। मानो कि अगर पायलट कहीं फंस जाए तो खुद को कैसे बचाए, समुद्र में, जंगल में, पहाड़ों में, हर जगह उन्हें जीना सिखाया जाता है बेटा।
1: मतलब उन्हें हर लिहाज से कठोर बनाया जाता है।
2: बिल्कुल बेटा, इसी ट्रेनिंग से एक आम इंसान एक मजबूत सैनिक बनता है, क्योंकि एक पायलट को सिर्फ उड़ना नहीं है बल्कि हर स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए।
1: अच्छा, अब तो आप जान गए होंगे कि मेरा अगला सवाल क्या होगा।
2: पूछो, मैं कैसे जानूंगा जब तक तुम बताओगी नहीं बेटा।
1: दादाजी, मेरा वही सवाल कि क्या लड़कियां भी फाइटर पायलट बन सकती हैं?
2: अच्छा, तो बेटा मेरा भी वही पुराना जवाब, आज की बेटियां तो सारा का सारा आसमान जीत रही हैं बेटा। महिलाएं अब फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, इंजीनियर, यहाँ तक कि ग्राउंड ऑफिसर भी बन रही हैं। वो कहते हैं ना कि आज की नारी सब पर भारी, वो सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि देश की रक्षा भी कर रही है।
1: दादाजी, मतलब मैं भी एयरफोर्स में जाकर एक फाइटर जेट उड़ा सकती हूँ ना, और एक वायु सैनिक भी बन सकती हूँ?
2: बिल्कुल बन सकती हूँ बेटा, जरूर, और बनोगी भी।
1: दादू, वायुसेना में कौन कौन सी पोस्ट होती है?
2: बिटिया, वायुसेना में इन्हें पोस्ट नहीं, रैंक कहा जाता है, रैंक।
1: और इसकी शुरुआत कैसे होती है?
2: फ्लाइंग ऑफिसर, यहीं से एक ट्रेनिंग का करियर शुरू होता है बेटा। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, फिर एयर मार्शल, और सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल।
1: मतलब जैसे जैसे रैंक बढ़ती है काम भी बदलता रहता है।
2: बिल्कुल बेटा, जितना ऊपर रैंक जाता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है।
1: ओह, मतलब हर रैंक के साथ भरोसा और जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है दादाजी।
2: बिल्कुल बिटिया, यही अनुशासन और जिम्मेदारी वायुसेना को मजबूत बनाती है।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: क्या वायुसेना सिर्फ युद्ध में ही काम आती है?
2: नहीं बिटिया, असली महानता सिर्फ युद्ध में नहीं सेवा में भी होती है। जब कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, लोग किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तब सबसे पहले वायुसेना उनकी मदद को पहुंचती है।
1: जैसे हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाना, खाना और दवाइयाँ पहुँचाना, ये भी वायुसेना करती है दादाजी।
2: हाँ बेटा, ये सिर्फ लड़ते नहीं लोगों की जान भी बचाते हैं।
1: आगे आने वाले भविष्य में वायुसेना कैसी होगी दादाजी?
2: आज की तुलना में कई गुना और भी शक्तिशाली होगी बेटा। और भी शक्तिशाली से मेरे कहने का मतलब है कि ड्रोन युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब भविष्य की वायुसेना का हिस्सा होंगे और हमारा भारत ज्यादा सुरक्षित होगा।
1: दादाजी, क्या वायुसेना में भी वीरता पुरस्कार मिलते हैं?
2: हाँ बिटिया, बिल्कुल मिलते हैं। अब तक देश के लिए बहुत से वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कईयों ने वीरता से देश के लिए युद्ध लड़े हैं, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र, वीर चक्र मिलते हैं। और ये बस मेडल नहीं है, बल्कि देश के लिए उन वीरों के बलिदान की असली पहचान है।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: आपने युद्धों की बात की, क्या वायुसेना ने कभी कोई बड़ा ऑपरेशन भी किया है?
2: बिल्कुल किया है बिटिया। एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, ऑपरेशन सफेद सागर।
1: ये कब हुआ था दादाजी?
2: देखो बेटा, ये ऑपरेशन हुआ था 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जब दुश्मन ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था।
1: इतनी ऊंचाई पर लड़ाई? वहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल होता होगा दादाजी।
2: हाँ बेटा, यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऑपरेशन में वायुसेना की भूमिका बहुत अहम थी। भारतीय वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई कि वो दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाए और भारतीय सेना की मदद करे। और इसके अलावा वायुसेना का एक और काम था, पहाड़ों में छिपे दुश्मन को बाहर निकालना।
1: लेकिन दादू, इतनी ऊंचाई पर हमला करना आसान तो नहीं रहा होगा?
2: बिल्कुल नहीं बिटिया, वहाँ हवा बहुत पतली होती है, तापमान बहुत कम होता है और लक्ष्य साफ दिखाई नहीं देता है बेटा। फिर भी हमारे वायुसेना के जाबाजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सटीक हमले किए।
1: अच्छा दादाजी, इस ऑपरेशन में कौन कौन से विमान इस्तेमाल किए गए थे?
2: इस ऑपरेशन में कई विमानों का इस्तेमाल हुआ बेटा, जैसे MiG-21, MiG-27, Mirage 2000। तुम्हें पता है इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मिराज 2000 की रही, जिसने सटीक बमबारी करके दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: इस ऑपरेशन की और भी खास बातें होंगी ना, वो भी तो बताइए।
2: खास बात तो यही है कि ये पहली बार था जब इतनी ऊंचाई पर एयर पावर का इस्तेमाल हुआ बेटा, और हमारी वायु वीरों को हर सेकंड खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस युद्ध में अद्भुत साहस और कौशल दिखाया।
1: मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ाई लड़ी दादाजी। ऑपरेशन सिंदूर भी तो इसी तरह के साहस का प्रतीक है ना?
2: हाँ बिटिया, यही असली वीरता है। ऑपरेशन सफेद सागर ने कारगिल युद्ध में भारत की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर हमारे गौरव की रक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। ये ऑपरेशन बताता है कि हम कोई भी सीमा पार करके दुश्मन को उसके घर में जाकर सबक सिखा सकते हैं बेटा।
1: दादू, अब समझ में आया कि वायुसेना सिर्फ आसमान में प्लेन्स नहीं उड़ाती, बल्कि जीत और हौसलों के पंखों से देश की रक्षा भी करती है।
2: बिल्कुल मेरी प्यारी बच्ची, जब देश को जरूरत होती है तो ये आकाश के योद्धा इतिहास रच देते हैं।
1: अच्छा दादाजी, ये पासिंग आउट परेड क्या होती है? मैंने कई बार पहले इसके बारे में सुना हुआ है।
2: पासिंग आउट परेड वो खास दिन होता है जब एक कैडेट की कठिन ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, और उसी दिन वो आधिकारिक तौर पर देश की सेना का हिस्सा भी बन जाता है।
1: मतलब ये उनका फाइनल एग्जाम जैसा होता है?
2: हाँ, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम नहीं होता, ये उनके संघर्ष, मेहनत और सपनों का जश्न होता है बेटा। इस दिन सभी कैडेट्स एकदम अनुशासन में एक जैसी चाल में परेड करते हैं।
1: अच्छा दादाजी, उनके परिवार वाले भी इसमें शामिल होते हैं क्या?
2: हाँ बेटा, माता पिता, परिवार सभी आते हैं। अपने बच्चों को वर्दी में देखकर उनकी आंखों में गर्व के आंसू होते हैं बेटा।
1: दादू, ये पल बहुत भावुक पल होता होगा ना?
2: हाँ बेटा, सबसे खास पल होता है। जब कैडेट को उसके विंग्स या रैंक मिलते हैं, उसी पल वो एक प्रशिक्षु नहीं बल्कि देश का रक्षक बन जाता है।
1: मतलब उस दिन उनका सपना सच हो जाता है और सारी मेहनत सफल हो जाती होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, पासिंग आउट परेड सिर्फ एक समारोह नहीं, ये उस वादे का दिन है जब एक जवान कहता है अब मेरा जीवन देश के नाम।
1: दादू, अब समझ में आया, ये सिर्फ परेड नहीं एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है।
2: और याद रखना बिटिया, वर्दी पहनना आसान नहीं है, इस सम्मान को तो ताउम्र निभाना होता है और वही असली वीरता है।
1: दादू, आपने बताया था कि वायुसेना हर समय आसमान पर नजर रखती है, लेकिन अगर अचानक कोई खतरा आ जाए तो क्या होता है?
2: जब भी आसमान में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो सबसे पहले उसे रडार सिस्टम पकड़ता है। अब तुम पूछोगे कि रडार सिस्टम क्या होता है दादू?
1: हाँ दादू, रडार सिस्टम क्या होता है?
2: रडार सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो बहुत दूर से ही विमान की दिशा, गति और ऊंचाई बता देता है।
1: मतलब बिना देखे ही सब पता चल जाता है?
2: हाँ, उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी स्थिति का आकलन करते हैं। अगर खतरा लगे तो तुरंत आदेश दिया जाता है स्क्रैम्बल।
1: स्क्रैम्बल, ये क्या होता है दादू?
2: इसका मतलब होता है तुरंत उड़ान भरना। पायलट कुछ ही मिनटों में पूरी तैयारी के साथ अपने लड़ाकू विमान लेकर आसमान में पहुंच जाते हैं बेटा।
1: इतनी जल्दी, ये कैसे हो सकता है दादाजी?
2: यही तो ट्रेनिंग और अनुशासन का कमाल है बेटा। पायलट हमेशा स्टैंड बाय मोड यानी पूरी तरह तैयार रहना ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सके।
1: दादू, जब पायलट उड़ान भर लेते हैं तो उन्हें पता कैसे चलता है कि जाना कहाँ है?
2: इसके लिए होता है ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, यानी जमीन पर बैठे अधिकारी पायलट को हर पल निर्देश देते हैं, जैसे किस दिशा में जाना है और कितनी ऊंचाई रखनी है और लक्ष्य कहाँ पर है।
1: मतलब पायलट अकेले फैसला नहीं लेते?
2: नहीं बिटिया, ये एक टीम वर्क होता है। रडार, सैटेलाइट, कंट्रोल रूम और पायलट सब मिलकर मिशन पूरा करते हैं।
1: और जब दुश्मन सामने आ जाता है तब क्या होता होगा?
2: तब पायलट पहले लक्ष्य को लॉक करता है, यानी अपने सिस्टम से दुश्मन की सटीक पहचान करता है। उसके बाद आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाती है।
1: दादू, ये तो बहुत खतरनाक होता होगा ना?
2: हाँ बिटिया, ये बहुत जोखिम भरा होता है, लेकिन पायलट को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है तेज निर्णय लेना, दबाव में शांत रहना और सटीक हमला करना।
1: एक शिकारी बाज की तरह सोच समझकर हर कदम उठाते होंगे।
2: बिल्कुल, और जब मिशन पूरा हो जाता है तो पायलट सुरक्षित वापस लौटते हैं। इसे कहते हैं मिशन सक्सेस।
1: दादू, अब समझ में आया वायु सेना के इन हीरोज को वायु योद्धा क्यों कहते हैं?
2: बिल्कुल बिटिया, वायु सेना की असली ताकत सिर्फ उसके विमान नहीं बल्कि उसकी सोच, तकनीक और टीम वर्क है।
1: सही दादू, जब तक ये आसमान के पहरेदार आसमान में उड़ान भर रहे हैं तब तक हम सब बेफिक्र रह सकते हैं।
2: हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो बेटा, मैं थक गया हूँ, घर चले?
1: चलिए दादू, घर चलते हैं।
2: चलो।
3: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे आकाश की विजेता भारतीय वायुसेना पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
2: और मैं दीपक नेमा।
3: इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुने कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आवाज के इस ऐतिहासिक मंच से आज फिर आजाद हिंद रेडियो के इस कार्यक्रम में मैं इतिहास
1: और मैं इतिहास की सतत साथ ही तारीख आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके समक्ष आज के हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को लाने जा रहे हैं जो समाज सेवा के पथ पर चलते चलते बस कुछ ही समय पहले इस दुनिया की मंजिल से कहीं आगे निकल गई हैं।
0: एक ऐसी महिला जिसने अपना सारा जीवन अपने देश और अपने समाज के नाम कर दिया था, स्वर्गीय निर्मला देशपांडे जी।
1: इतिहास, निर्मला देशपांडे जी ने अपना संपूर्ण जीवन गांधीवादी विचारधारा को समर्पित कर दिया था। उनके दैनिक कामकाज में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जो गांधी जी या विनोबा भावे जी के विचारों से पृथक हो।
0: बिल्कुल तारीख, अगर उनके दैनिक जीवन को याद किया जाए तो लगता है कि उनके जीवन में समाज या देश की सेवा के अतिरिक्त कोई और काम था ही नहीं। जीवन पर्यंत सिर्फ यही उनकी रुचि रही, यही उद्देश्य और यही आराधना।

0: निर्मला जी का जन्म नागपुर में विमला और पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के घर 19 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 11 वर्ष की उम्र से ही निर्मला जी को गुड़ियों से खेलने के बजाय अपने आसपास के लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। तब से जीवन के अंत तक बिना किसी पुरस्कार या पारिश्रमिक की आशा के वो अपना कार्य सतत करती रहीं। अपने विद्यार्थी जीवन से ही निर्मला जी गांधी जी के सादे जीवन और ऊंचे आदर्शों से बहुत प्रभावित थीं। एक बार जब उन्हें विनोबा भावे जी से मिलने का अवसर मिला तो निर्मला जी ने उस छोटी सी उम्र में ही विनोबा जी से देश सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। उस समय विनोबा जी ने उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने की सलाह दी और फिर एक दिन निर्मला जी ने एमए पूरा करते ही विनोबा जी के चरणों को अपनी सतत समाज सेवा के पथ का पहला पड़ाव बना लिया।
1: विनोबा जी के सानिध्य में आते ही निर्मला जी विनोबा जी और गांधी जी के अहिंसात्मक सिद्धांतों का पालन करने लगी। खादी पहनने, सूत कातने, शाकाहारी भोजन करने और सत्य का पालन करने जैसे नियम वैसे भी निर्मला जी के लिए कोई नए तो थे नहीं, क्योंकि ये नियम तो उन्हें अपने देशभक्त माता पिता से ही सीखने को मिले थे। निर्मला जी के पिता को मराठी साहित्य अनामिकाची चिंतनिका में उत्कृष्ट काम के लिए 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
0: जिस समय निर्मला जी ने विनोबा जी का सानिध्य प्राप्त किया उस समय विनोबा जी भूदान आंदोलन में व्यस्त थे। विनोबा जी ने निर्मला जी को जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम सौंपा वह था इस आंदोलन के अंतर्गत पढ़ने लिखने का काम। ये काम महत्वपूर्ण और उनकी रुचि का तो था, लेकिन वो जमीनी स्तर पर समाज सेवा करने के लिए छटपटाती रहती और जब भी उन्हें ऐसा कोई अवसर मिलता तुरंत उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ती।
1: फिर भी तारीख निर्मला जी ने भूदान आंदोलन के दौरान अपने आचार्य विनोबा भावे जी के विचारों को लिपिबद्ध किया और समय समय पर होने वाले उनके भाषणों को भी लिख लिया। उन्होंने नूतन नामक पत्रिका का संपादन भी किया जिसमें गांधी एवं विनोबा जी के विचारों का संग्रह एवं उनसे संबंधित लेख आदि हुआ करते थे। आंदोलन के दौरान निर्मला जी ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संदेश को लेकर भारत भर में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। निर्मला जी ने स्वीकार किया कि गांधीवादी सिद्धांतों का अभ्यास कठिन है, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कि पूर्ण लोकतांत्रिक समाज की प्राप्ति के लिए यही एक रास्ता है।
0: इतिहास मुझे एक बार का किस्सा सौंपना चाहते थे। उन्होंने अपने पास में बैठी निर्मला जी की ओर गौर से देखा और समाधान उन्हें अपने बगल में बैठा दिखाई दे गया। उन्होंने निर्मला जी से वार्तालाप किया और उन्हें इंदौर जाने के लिए राजी कर लिया। आखिर इंदौर के कस्तूरबा ग्राम को निर्मला जी से ज्यादा अनुशासित व योग्य प्रबंधक कौन मिल सकता था, और इस प्रकार निर्मला जी को शांति सेना का निर्देशक बनाकर इंदौर भेज दिया गया।

0: वहां पहुंचकर निर्मला जी ने अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए सर्वप्रथम एक ऐसा शांति शिविर स्थापित किया जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहां उन्होंने उन सभी महिलाओं को अक्षर ज्ञान के साथ सिलाई कढ़ाई का भी प्रशिक्षण दिया, साथ ही उन्हें गांधीवादी विचारों से भी परिचित कराया ताकि यही महिलाएं इन विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें। निर्मला जी के पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भी शांति सेना के कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आई। एक दो दफा जो दिक्कतें आई भी उन्हें निर्मला जी ने अपनी शांतिपूर्ण सूझबूझ के कारण सुलझा दिया।
1: इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात निर्मला जी ने बस्तर के जंगलों की ओर अपनी समाज सेवा यात्रा के मार्ग का अगला पड़ाव खोजा। वहां वे बस्तर के आदिवासियों के साथ रहीं और उनके साथ काम करने का अवसर पाया। बस्तर में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लगभग 4000 आदिवासी बच्चों और महिलाओं को साक्षर बनाया तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में स्वयं तथा बस्ती की सफाई जैसे मूलभूत ज्ञान से परिचित भी कराया, जिससे बस्तर का क्षेत्र पहले से अधिक साफ स्वच्छ एवं कुछ मूलभूत सुविधाओं से युक्त दिखाई दिया।
0: तारीख, निर्मला जी की गतिविधियां सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। ये गतिविधियां जनसंपर्क को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं जैसे एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ एशिया तथा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के माध्यम से एशिया के अन्य देशों में भी फैल गई थी। निर्मला जी की विश्व बंधुत्व में गंभीर आस्था थी। वो हमेशा से एक ऐसे विशाल विश्व परिवार की कल्पना करती थीं जिसमें हर स्त्री पुरुष बिना किसी रंग भेद के प्रेम और पारस्परिक सहिष्णुता के साथ रह सके। इसी सपने को अपने दिल में रखे हुए उन्होंने अन्य देशों में भी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। वो सदा भारत पाकिस्तान मैत्री के लिए प्रयत्नशील रहीं और इस हेतु उन्होंने कई दफा पाकिस्तान की यात्रा भी की। वे जीवन भर दोनों देशों में शांति के साथ आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की पक्षधर रहीं।

0: और इतिहास जैसा कि हर मनुष्य के जीवन में कई प्रश्न सामने आकर खड़े होते हैं, निर्मला जी के मन में भी हुए। जब एक बार उनके मन में संन्यास का पौधा अंकुरित हुआ, जब निर्मला जी अपने उस प्रश्न को लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंची, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि संन्यास तो पलायन का दूसरा नाम है। उन्होंने उन्हें आभास कराया कि संन्यास लेने पर तुम्हें समाज से दूर जाना होगा, जो कि ना तो सही है और ना तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुकूल। इस बात का अनुभव होते ही निर्मला जी ने संन्यास का विचार तुरंत त्याग दिया और समाज सेवा के कार्य में जुट गईं।
1: निर्मला जी को पंजाब और कश्मीर में हिंसा की चरम स्थिति पर शांति मार्च के लिए जाना जाता है। 1994 में कश्मीर में शांति मिशन और 1996 में भारत पाकिस्तान वार्ता आयोजित करना उनकी दो मुख्य उपलब्धियों में शामिल है। चीनी दमन के खिलाफ तिब्बतियों की आवाज को बुलंद करना भी इनके दिल के करीब था।
0: निर्मला जी ने अपना जीवन सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं, आदिवासियों और अवसर से वंचित लोगों की सेवा में अर्पण कर दिया। निर्मला जी ने हिंदी में अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें से एक को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा उन्होंने ईशा उपनिषद पर टिप्पणी और विनोबा भावे की जीवनी लिखी है।
1: निर्मला जी 1997 से 2007 तक राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहीं। 2007 में हुए भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उनके नाम पर भी विचार किया गया। उन्हें 2006 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनकी उम्मीदवारी रखी गई थी। 13 अगस्त 2009 को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज से वो सम्मानित हुईं।
0: बिल्कुल, इतिहास मुझे याद है निर्मला जी के वो शब्द जो उन्होंने बस्तर आदिवासियों से कहे थे, जो समस्या वार्ता से सुलझाई जा सकती है उसे सुलझाने का कोई और बेहतर उपाय नहीं हो सकता। हिंसा से हिंसा बढ़ती है और अगर कोई बात हिंसा से सुलझा भी ली जाए तो उसका हल स्थायी नहीं होता। विश्व में आदिकाल से अनेक युद्ध लड़े गए हैं, परंतु प्रत्येक युद्ध अगले युद्ध का बीजारोपण ही साबित होता है। अहिंसात्मक समाधान सदा स्थायी रहा है।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
2: अगर आपको 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
3: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
2: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद लंदन से न्यूयॉर्क आए। वहां उनका व्याख्यान, शिक्षा और पुस्तक रचना का कार्य शुरू हुआ। उनके व्याख्यान से सर्वत्र एक महान उत्साह की सृष्टि होती थी, जिसका वर्णन करते हुए न्यूयॉर्क के सर्वाधिक लोकप्रिय संवाद पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अपने 19 जनवरी 1896 के अंक में लिखा था,
1: आज के न्यूयॉर्क के समाज में स्वामी विवेकानंद नाम के किसी स्वामी ने जन मंडली को मुग्ध कर रखा है, और इन लोगों में धन एवं विद्वता का अभाव हो ऐसी बात नहीं। ये नाम है भारत से आए मटमैले रंग के एक सज्जन का, जो पिछले वर्ष भर से इस महानगरी में प्राच्य धर्म, दर्शन तथा साधना के कुछ रूपों का प्रचार करते हुए यशोकीर्ति की उपलब्धि करते रहे हैं। पिछली सर्दियों में 5th Avenue के एक प्रमुख होटल के स्वागत कक्ष में उनके भाषण होते रहे। स्वयं तथा अपनी विषय वस्तु के प्रति उच्चतर समाज की काफी स्वीकृति पा लेने के बाद अब वे सर्वसाधारण में प्रचार करने को उत्सुक हैं, और इसी उद्देश्य से हार्डमन हॉल में प्रति रविवार को निःशुल्क एक व्याख्यान की श्रृंखला चला रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रयास काफी सफल रहा है।
2: स्वामी जी की कक्षाओं तथा व्याख्यानों की जो प्रामाणिक प्रतियां उपलब्ध हैं, उनके लिए हम मुख्यतः गुडविन के ही ऋणी हैं। परंतु उस काल के व्याख्यानों का जो धारावाहिक लेखमाला ब्रह्मवादिन पत्रिका के 8 अंकों में प्रकाशित हुआ था, उसका कुछ अंश स्वामी जी ने स्वयं लिखकर भेजा था। कृपानंद ने उनका टंकन किया। इसके लिए कृपानंद ने श्रीमती बुल से आर्थिक सहायता लेकर $5 मासिक भाड़े पर एक टाइपराइटर ले लिया था।
0: कृपानंद ने ब्रह्मवादिन पत्रिका में लिखा था,
3: उनकी कक्षाओं में उपस्थित रहने वालों की सर्वदा बढ़ती हुई संख्या तथा उनके रविवारीय सार्वजनिक व्याख्यानों में आने वाली श्रोताओं की भारी भीड़ इस बात का सूचक है कि उनके उपदेशों ने लोगों के मन में कैसा व्यापक आग्रह पैदा कर दिया है। इसका सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण ये है कि वेदांत संबंधी साहित्य की मांग बढ़ती ही जा रही है, और ऐसे लोगों के मुख से संस्कृत शब्द उच्चारित हो रहे हैं जहाँ से हम उन्हें सुनने की बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा, पुरुष, प्रकृति, मोक्ष तथा इसी प्रकार के अन्य शब्द अमेरिकी भाषा में अपना लिए गए, और शंकराचार्य एवं रामानुज के नाम बहुतों के लिए हक्सले तथा स्पेंसर के समान ही सुपरिचित हो चले हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय भारत संबंधी पुस्तकों के पीछे दौड़ रहे हैं। मैक्स मुलर, कोलब्रुक, डायसन, बनोव तथा हिंदी दर्शन पर अंग्रेजी में लिखने वाले सभी लेखकों की किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं।
0: उन्हीं दिनों

0: करें और इस प्रकार भारत को अपने एक सर्वश्रेष्ठ संतान की जननी होने के गौरव से वंचित कर दें।
1: सिर्फ एक दो नहीं, अनेकों अमेरिकी वासियों ने स्वामी जी के बारे में, उनके व्याख्यानों और भाषणों के बारे में संवाद पत्रों, पत्र पत्रिकाओं या संस्मरणों में लिखा था। एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवियत्री श्रीमती एमा हवीलर विलकॉक्सी भी उनमें से एक थी। स्वामी जी से मुलाकात के बारे में याद करके उन्होंने लिखा था,
2: एक वर्ष पूर्व एक दिन शाम को मैंने सुना कि मेरे आवास से मात्र एक ब्लॉक की दूरी पर भारत से आए दर्शन के प्रचारक एक विवेकानंद नामक व्यक्ति का भाषण होगा। कौतूहलवश हम, यानी मैं और मेरे पति भी वहां गए और श्रोताओं के बीच बैठकर भाषण सुनते हमें 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमने अपने आप को एक अत्यंत सूक्ष्म, सजीव तथा अद्भुत जगत में उन्नीत महसूस किया और हम लोग व्याख्यान के अंत तक प्रायः सांस रोके मंत्रमुग्ध से बैठे रहे। व्याख्यान समाप्त हो जाने पर हम नए साहस, नई आशा, नए बल, नए विश्वास के साथ दैनंदिन जीवन में लौट गए। मेरे पति बोले, ईश्वर और जीवन के बारे में यही धारणा तो मैं ढूंढता फिर रहा था। और इसके बाद महीनों तक वे मुझे साथ लेकर स्वामी विवेकानंद के मुख से प्राचीन धर्म की व्याख्या सुनने और उनके अद्भुत मन से निस्तृत सत्य तथा आशाप्रद एवं शक्तिदायी विचारों का संग्रह करने जाते रहे।
3: उन दिनों अमेरिकी समाज आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हवीलर उन भयंकर दिनों को याद करके लिखती हैं।
2: वे उस महान आर्थिक संकट के भयंकर जाड़ों के दिन थे, जब बैंक फेल हो चुके थे, कंपनियों के शेयर फटे गुब्बारों के समान नीचे उतर रहे थे, व्यापारी लोग निराशा की अंधेरी घाटी से होकर गुजर रहे थे और पूरी दुनिया ही उलट पलट गई सी प्रतीत हो रही थी। कभी कभी चिंता और अनिद्रा में कई रातें बिताने के पश्चात पतिदेव मुझे साथ लेकर स्वामी जी का व्याख्यान सुनने जाते और फिर बाहर निकलकर जाड़े की अंधेरी रात में सड़क पर चलते हुए मुस्कुराहट के साथ कहते,
4: स्वामी जी बोल रहे थे ना कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे बड़ी शांति मिली, मेरा अशांत मन शांत हो गया है, अब कल से मैं अपनी सामान्य दिनचर्या कायम कर सकूंगा, अब मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। उस व्यक्ति में गजब का हीलिंग पावर यानी उपचार करने की शक्ति है, लोगों को अवसाद से, मानसिक तनाव से पल भर में उबार कर आनंद के द्वार पर खड़ा कर देते हैं।
3: हवीलर दंपत्ति सिर्फ भाषण सुनकर संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने इस अद्भुत धर्म का अध्ययन करना प्रारंभ किया। भारतीय दर्शन के वे कायल हो गए। बाद में उन्होंने लिखा,
2: विवेकानंद हमारे बीच में एक संदेश लेकर आए थे। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें किसी नए विश्वास में रूपांतरित करने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने ही विश्वास में प्रतिष्ठित रहो। मैं मेथोडिस्ट को एक बेहतर मेथोडिस्ट, प्रेसिबिटेरियन को एक बेहतर प्रेसिबिटेरियन और यूनिटेरियन को एक बेहतर यूनिटेरियन बनाना चाहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसने व्यवसायी को बल दिया, चंचल स्वभाव की सामाजिक महिला को थोड़ा रुक कर सोचने को मजबूर किया, कलाकार को नई प्रेरणा दी और पत्नी एवं माता, पति एवं पिता के प्रति लोगों में एक बेहतर एवं पवित्रतर कर्तव्य बोध का संचार किया।

0: दिसंबर का महीना खत्म हो रहा था। बड़े दिन यानी क्रिसमस के उपलक्ष में श्रीमती ओली बुल ने स्वामी जी को निमंत्रण भेजा। स्वामी जी आमंत्रण स्वीकार कर बोस्टन गए। वहां कैम्ब्रिज की महिलाओं द्वारा बुलाए जाने पर उन्होंने भारतीय नारी जाति का आदर्श विषय पर एक सुंदर व्याख्यान दिया। वहां की महिलाएं इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने स्वामी जी को बिना बताए कलकत्ते में उनकी माँ को धन्यवाद देकर पत्र लिखने का विचार किया। बालक ईसा और मैरी माता के एक चित्र के साथ उन्होंने भुवनेश्वरी देवी को पत्र लिखा।
1: जगत के कल्याण की जननी मेरी माता के दान स्वरूप ईसा मसीह के आविर्भाव का दिन हम आज उत्सव के आनंद में बिता रही हैं। अपने बीच में आपके पुत्र को पाकर आज हम आपका श्रद्धा के साथ अभिवादन कर रही हैं। आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से भारत में मातृत्व के आदर्श के संबंध में भाषण देकर उन्होंने हमारे नर नारी और बच्चों का महान उपकार किया है। उनकी मातृ पूजा श्रोताओं के हृदय में शक्ति व उन्नति की उच्चाकांक्षा जगा देती है। आपकी संतान में आपके जीवन व कार्य का जो प्रभाव प्रकट हुआ है उसकी सम्यक रूप से उपलब्धि करती हुई हम आपकी सेवा में अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट कर रही है। भ्रातृत्व व एकता के जो नियंता है उस ईश्वर का मंगल आशीर्वाद समग्र पृथ्वी पर फैल जाए। हृदय में इस आकांक्षा को लेकर आपका जीता जागता आदर्श उन्हें कार्य क्षेत्र में सदा अनुप्राणित करें, यही हमारी दुआ है। इस बात के साथ ही हमारी कृतज्ञता आप स्वीकार करें।
2: बोस्टन से डिट्रॉइट होकर स्वामी जी न्यूयॉर्क लौट आए। वहां उन्होंने वेदांत चर्चा और योग की शिक्षा के लिए एक स्थायी केंद्र बनाने का निश्चय किया।
0: इधर इंग्लैंड से बार बार निमंत्रण आने लगा। ये पहले से ही निश्चित था कि स्वामी जी इंग्लैंड से भारत लौटेंगे। तदनुसार शिष्य व भक्तों के साथ परामर्श करके स्वामी जी ने स्थायी रूप से न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। प्रसिद्ध धनी श्री फ्रांसिस एच लेगेट महोदय गुरुदेव की सम्मति व इच्छा के अनुसार इस सोसाइटी के सभापति बने। भगिनी हरिदासी को स्वामी जी ने आशीर्वाद देकर योग शिक्षिका नियुक्त किया। स्वामी कृपानंद, अभयनंद, योगानंद तथा कुछ ब्रह्मचारी प्रचारक नियुक्त हुए।
2: असाधारण दानशील कुमारी मैरी फिलिप, आर्थर स्मिथ, श्री व श्रीमती वाल्टर गुडायर तथा प्रसिद्ध गायिका कुमारी एमा थर्सबी आदि न्यूयॉर्क के नामी शिष्य व शिष्याएं उत्साह से समिति का कार्य चलाने लगे। शिष्य वर्ग की सम्मति व अनुरोध से स्वामी जी ने अपने गुरु भाई शारदानंद जी को शीघ्र इंग्लैंड की ओर यात्रा करने के लिए पत्र लिखा। इंग्लैंड से इस स्वामी को न्यूयॉर्क में भेजने का वचन देकर स्वामी जी ने 15 अप्रैल सन 1896 ईस्वी को फिर से लंदन की ओर प्रस्थान किया।
0: सन 1896 ईस्वी के 15 अप्रैल को स्वामी जी ने न्यूयॉर्क से व्हाइट स्टार लाइन के जर्मनिक नामक जहाज में लिवरपूल के लिए प्रस्थान किया। लिवरपूल से वे रीडिंग में स्थित स्टर्डी के मकान पर गए। इंग्लैंड पहुंचकर रीडिंग से अपने 20 अप्रैल के पत्र द्वारा उन्होंने हेल बहनों को लिखा।
3: यात्रा सुखद रही और इस बार कोई बीमारी नहीं हुई। समुद्र पीड़ा से बचने के लिए मैंने स्वयं ही अपनी चिकित्सा कर ली थी। आयरलैंड के बीच से होकर तथा इंग्लैंड के कुछ पुराने नगरों को देखते हुए मैं एक चक्कर लगाया और अब पुनः रीडिंग में ही ब्रह्म, माया, जीव, जीवात्मा और परमात्मा आदि के बीच हूं। दूसरे सन्यासी भी यहां हैं। इस समय हम लोग ग्रंथों के संपादन में लगे हुए हैं। रास्ते में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। यात्रा मेरे जीवन के समान ही अत्यंत नीरस, एक रस तथा गद्यमय रही। जब मैं अमेरिका के बाहर जाता हूं तभी उसके प्रति अधिक प्रेम उमड़ता है। जो भी हो, जीवन का अब तक जितना अंश बीता है उसमें वहां बीते कुछ वर्ष ही सर्वोत्तम रहे हैं।
0: अमेरिका से आचार्य देव का पत्र पाकर स्वामी शारदानंद बिना विलंब इंग्लैंड में उपस्थित हो गए थे और अप्रैल मास के प्रारंभ से स्टर्डी साहब के अतिथि के रूप में निवास करते हुए पूर्व स्थापित आलोचना समिति में धर्म का उपदेश दे रहे थे। स्वामी जी अप्रत्याशित रूप से उन्हें स्टडी साहब के मकान पर देख आनंद विभोर हो उठे। कहना ना होगा कि शारदानंद जी भी बहुत समय से लापता नरेंद्रनाथ को देखकर बहुत ही आनंदित हुए। आचार्य देव उत्सुकता से आलम बाजार मठ व दूसरे श्री रामकृष्ण भक्तों का कुशल समाचार जानकर निश्चिंत हुए।
2: शारदानंद और स्वामी जी ने लंदन के सेंट जॉर्ज लेन में कुमारी मुलर व श्री स्टर्डी के अतिथि के रूप में रहते हुए पूर्ण उद्यम व उत्साह से प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद के फिर वापस आ जाने का शुभ समाचार सुनते ही सैकड़ों स्त्री पुरुष उनका दर्शन करने तथा उनके उपदेश सुनने के लिए आने लगे। समाचार पत्रों में उनके कार्य प्रणाली की विस्तृत खबरें प्रकाशित होने लगी। मई मास के प्रारंभ से स्वामी जी नियमित रूप से शिक्षा दान व प्रश्नोत्तर कक्षाओं को चलाने लगे और ज्ञान योग पर भाषण देने लगे। मई महीने के बाद में उन्होंने भक्ति कर्म और योग के संबंध में कुछ उत्कृष्ट भाषण दिए। क्लब सभा समिति ड्राइंग रूम इत्यादि में भाषण देने के लिए वे प्रतिदिन बुलाए जाने लगे। श्रीमती एन ए बेसेंट द्वारा आमंत्रित होकर स्वामी जी ने उनके एवेन्यू रोड स्थित भवन में भक्ति पर भाषण दिया।
0: श्रीमती मार्टिन नाम की एक धनी महिला ने अगले दिन स्वामी जी को अपने घर पर भाषण देने के लिए बुलाया। उन्होंने वहां आत्मा के संबंध में भारतीयों की धारणा विषय पर एक भाषण दिया। 14 जून के द लंडन अमेरिकन नामक संवाद पत्र में छपा था,
4: स्वामी जी ने हिंदू धर्म को केवल जड़ या अंध पौतलिकता के अपवाद से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे ऐसे एक उन्नत व समुच्चल भाव में प्रतिष्ठित कर दिया है कि उसके प्रति मानव जाति की श्रद्धा हुए बिना नहीं रह सकती। बुधवार के दिन बारिश होते हुए भी काफी संख्या में भद्र पुरुष व महिलाएं श्रीमती मार्टिन का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुई थी। यहाँ तक कि राज परिवार के भी कुछ व्यक्ति गुप्त रूप से इस सभा में उपस्थित थे।
2: उन्हीं दिनों स्वामी जी के जीवन में एक स्मरणीय घटना घटी, वो है विश्व विख्यात प्रोफेसर मैक्स मुलर से मुलाकात होना।
0: विशेष रूप से आमंत्रित होकर स्वामी जी ने ऑक्सफोर्ड में जाकर 28 मई को विश्व विख्यात प्रोफेसर मैक्स मुलर के साथ साक्षात्कार किया। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इससे पहले 19th सेंचुरी नामक पत्रिका में श्री रामकृष्ण के संबंध में प्रकृत महात्मा शीर्षक से जो निबंध लिखा था, उसे पढ़कर स्वामी जी ने पहले से ही इनसे साक्षात्कार करने का निश्चय किया था। मैक्स मुलर साहब ने कहा,
5: श्री रामकृष्ण के संपर्क में आकर केशव चंद्र के धर्म मत के एकाएक परिवर्तन होने से सबसे पहले उसकी ओर मेरी दृष्टि आकृष्ट हुई। उस समय से ही उस महात्मा की जीवनी व उपदेश के संबंध में जहां पर जो कुछ मिला उसको मैं श्रद्धा तथा भक्ति से पाठ करता आ रहा हूँ। यदि आप मुझे आवश्यक साधनों का संग्रह कर दे सकें तो मैं श्री रामकृष्ण की एक जीवनी लिखने के लिए तैयार हूँ।
2: स्वामी जी बड़े हर्ष पूर्वक सहमत हो गए। कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर मैक्स मुलर द्वारा रचित श्री रामकृष्ण की जीवनी व उपदेशों नामक विख्यात ग्रंथ प्रकाशित हुआ। उस पुस्तक द्वारा स्वामी जी के पाश्चात्य देशों में प्रचार कार्य की यथेष्ट सहायता हुई थी।
0: भारतवर्ष के संबंध में प्रोफेसर मैक्स मुलर के असीम ज्ञान का परिचय पाकर स्वामी जी बड़े विस्मित हुए। भारतवर्ष के प्रति प्रोफेसर के प्रेम ने स्वदेशी प्रेमी सन्यासी को मुग्ध कर दिया। स्वामी जी ने उल्लासित होकर पूछा,
6: आप कब भारत जाएंगे? भारतीय जनता आपको सानंद स्वागत करेगी। आपने हमारे पूर्वजों के चिंतनों का अध्ययन किया है, वाह!
5: जरूर जाऊंगा, पर हो सकता है मैं वहां से वापस ना लौटूं। मेरा अंतिम संस्कार आप लोगों को वहीं करना पड़ेगा।
0: रात को आंधी पानी में भी वृद्ध प्रोफेसर स्वामी जी को विदा देने स्टेशन पर आए। स्वामी जी लज्जित होकर बोल उठे,
6: अरे आप, मुझे विदा देने के लिए आपने इतना कष्ट क्यों किया इस आंधी तूफान में?
5: आप जैसे व्यक्तियों से मिलने का अवसर रोज रोज नहीं मिलता।
2: इस मुलाकात के बाद दोनों की मित्रता प्रगाढ़ हो गई। स्वामी जी आजीवन मैक्स मूलर साहब के प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। हालांकि दोनों की फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, पर दोनों नियमित पत्र व्यवहार करते थे।
0: जिन अंग्रेज शिष्य व शिष्याओं ने स्वामी जी के कार्यों में आत्मजीवन उत्सर्गित किया था, उनमें से कुमारी मूलर, कुमारी नोबल यानी सिस्टर निवेदिता, श्री गुडविन, श्री स्टडी आदि का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरी बार इंग्लैंड में आकर स्वामी जी ने कैप्टन सेवियर तथा श्रीमती सेवियर को शिष्य के रूप में प्राप्त किया। धर्मपरायण सेवियर दंपत्ति उनके भारतीय कार्य के लिए आत्म उत्सर्ग करने को तैयार हो गए। श्रीमती सेवियर शिष्या बनकर भी स्वामी जी की मात्र स्थानिया थी। स्वामी जी उन्हें माँ कहकर पुकारते थे।
2: लंदन में रहते समय विभिन्न शिष्य और भक्तों के साथ स्वामी जी यूरोप भ्रमण करने गए थे। उन रोचक स्थानों में स्वामी जी के अनुभवों के बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

हमारी सुबह की सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं? सुबह हमारी जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से आनंद लीजिएगा ऋग्वेद की ऋचाओं के पाठ का कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से आप आनंद ले सकते हैं भक्ति संगीत का। सुबह 8 का वक्त होगा कार्यक्रम वतन का राग, जो कि आधारित होगा नंदलाल बोस पर। और 8:30 आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम आमने सामने। श्रोताओं, कल लुप्त प्राय प्रजाति दिवस है, तो उसी पर आधारित होगा हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें डॉक्टर सुदेश वाघमारे से अदिति गौड़ की खास बातचीत आप सुनेंगे। सुबह 9 का वक्त होगा वागर्थ का, और 9:30 आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम, जो कि आधारित होगा शहीद भगत सिंह के मात शैली के एक नाटक पर। दिन में 10 आप सुनेंगे परिक्रमा, और 10:30 का वक्त होगा कार्यक्रम आजाद हिंद का, जो कि आधारित होगा सरजू प्रसाद सिंह पर। दिन में 11 आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। कल ये कार्यक्रम विश्वविख्यात संतूर वादक शिव कुमार शर्मा पर आधारित होगा। दिन में 11:30 आप सुनेंगे हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये थे कल सुबह हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। और अब दीजिए अनुमति इस सभा से आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।